मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की नवी तिथि, तदनुसार 31 जुलाई 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री

0: इंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों के नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

कृष्ण की भक्ति हमें प्रेम और भक्ति से जोड़ देती है। हमें कुछ भी गलत, कुछ भी कहीं कठिनाई लगे तो हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए।

माँ की भक्ति में हमें शक्ति मिलती है, वो अपने बच्चों की मुरादें सुनती हैं और पूरी करती हैं।

0: नरेंद्र चंचल के गाए इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा कार्यक्रम में अहमदाबाद में सत्याग्रह का प्रयोग।

0: 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला और उन्होंने इसे अहिंसक आंदोलन का रूप दिया। यही अहिंसक आंदोलन उनका सत्याग्रह था। अफ्रीका में सफल होने के बाद सत्याग्रही आंदोलन का विशाल रूप लेकर गांधी जी भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़े और सफलता प्राप्त की। गांधी जी कब कब और कैसे सत्याग्रह का प्रयोग करते थे, ये तो उनकी छोटी लड़ाइयों से जाना जा सकता है। चंपारण और खेड़ा के बाद आज गांधी चर्चा में आप सुनेंगे अहमदाबाद में गांधी जी ने कैसे सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये वार्ता डॉक्टर कृष्ण स्वरूप आनंदी की है।
1: अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई में सत्याग्रह के सिद्धांत का विकास हुआ था। गांधी जी ने 1940 में खुद स्वीकार किया था, मैं अपने को

0: संगठित हड़तालों का एक निपुण संचालक मानता हूँ। इस दिशा में पहला सफल प्रयोग मैंने दक्षिण अफ्रीका में अत्यंत विपरीत परिस्थिति में किया था। अहमदाबाद में मैंने सत्याग्रह के शास्त्र का विकास किया है। मैं जानता हूँ कि हड़तालें अव्यर्थ या अदम्य बनाई जा सकती हैं। अहमदाबाद में गांधी जी को दूसरों की इच्छा से मिल मजदूरों की हड़ताल में शामिल होना पड़ा था। कुछ समय पूर्व जब अहमदाबाद में प्लेग का प्रकोप हुआ था, तब मिल मालिकों ने बुनकर मजदूरों को प्लेग बोनस देकर काम पर आने की ओर आकर्षित किया। कहीं कहीं यह बोनस मजदूरी के 70-80% तक था। महामारी के खत्म होने पर यह बोनस अचानक बंद कर दिया गया। इससे मजदूरों में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने कम से कम 50% का बोनस इस आधार पर मांगा कि महंगाई बढ़ रही है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल मालिक सेठ अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी से मिलकर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता करके समझौता कराने का अनुरोध किया। ध्यान देने की बात है, इससे कुछ दिन पहले अम्बालाल साराभाई ने ही उदारतापूर्वक दान देकर गांधी जी के साबरमती आश्रम को बंद होने से बचाया था। आवश्यक जांच पड़ताल और गहन सामूहिक विचार विमर्श के बाद यह तय पाया गया कि मिल मालिक मजदूरों को 35% बोनस देंगे, किंतु मिल मालिक मुकर गए। मिल मालिकों ने मजदूरों के सामने यह शर्त रखी थी कि वे 20% बोनस पर काम करने को राजी हो जाएं, अन्यथा तालाबंदी कर दी जाएगी। मजदूरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी मिल मालिकों की इस गलत बयानी और वादा खिलाफी से काफ़ी क्षुब्ध हुए थे। मजदूरों ने शांतिपूर्ण ढंग से महात्मा गांधी और अम्बालाल साराभाई की बहन सुश्री अनुसुईया बेन के नेतृत्व में हड़ताल शुरू कर दी। कुछ दिनों तक हड़ताल पर रहने के कारण मजदूरों की आर्थिक दिक्कतें बढ़ती ही जा रही थीं। 35% बोनस की मांग को लेकर मजदूरों का जो सत्याग्रह चल रहा था, उसमें मिल मालिकों ने 20% के बोनस का लालच देकर मजदूरों की हड़ताल तोड़ने की कोशिश की। मजदूरों की मूल और वाजिब मांग 35% बोनस की थी। कहीं यह भी न चला जाए, इस संशय में पड़कर मजदूर डगमगाने लगे। यहाँ तक कि बहुत से काम पर वापस लौटने को तैयार हो गए। मजदूरों ने प्रण करके सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अब प्रतिज्ञा भंग देखकर नेता के रूप में गांधी जी को हार्दिक क्लेश हुआ और मजदूरों के इस पतन पर उपवास प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने। इस उपवास के संबंध में गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया था, उसके कुछ अंश यहाँ उल्लेखनीय हैं। हम इस निश्चय पर पहुँचे कि 35% की वृद्धि उचित मानी जा सकती है। अतएव विराट सभा में मैंने घोषणा की कि मिल मजदूर 35% वृद्धि मंजूर करेंगे। और यहाँ ये ध्यान में रखने योग्य है कि मजदूरों को महामारी के कारण 70% वृद्धि मिलती थी और उन्होंने अपना यह इरादा जाहिर किया था कि बढ़ती हुई महंगाई के आधार पर वे 50% से कम वृद्धि मंजूर नहीं करेंगे। परंतु उनसे कहा गया कि वे अपने 50% और मिल मालिकों के 20% के बीच की इस दर को मंजूर करें। बिल्कुल संयोग की बात है कि मैंने जो दर निश्चित की वह दोनों के बीच थी। थोड़ी बुदबुदाहट के बाद सभा ने 35% की वृद्धि लेनी स्वीकार की। इसके साथ ही ये भी मान लिया गया था कि जिस क्षण मिल मालिक पंच की मार्फत फैसला कराना स्वीकार कर लें, उसी क्षण मजदूर भी वैसा ही करें। जो प्रतिज्ञा शपथ पूर्वक ली गई है, मिल मजदूरों द्वारा उसका भंग होना मेरे लिए असह्य है। इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मजदूरों को 35% वृद्धि नहीं मिलेगी अथवा जब तक वे हार कर घुटने नहीं टेक देंगे, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूँगा। गांधी जी के इस उपवास का जादुई असर हुआ। मजदूरों में एकाएक स्फूर्ति आ गई और वह एक एक करके यह घोषणा करने लग गए कि जब तक उनकी मांग मान नहीं ली जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। गांधी जी के उपवास और मजदूरों के उत्साह ने मिल मालिकों की संवेदना को झकझोर दिया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, जिसने मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि की मांग स्वीकार कर ली।
1: अब सुनिए गांधी जी की प्रार्थना प्रवचन का एक अंश, जिसमें उन्होंने शांति मार्ग पर चलने का आह्वान किया है।

0: अंश का पाठ विजय चौधरी के स्वर में।
1: गांधी जी ने शांति मार्ग के विषय में कहा, हमने इस तरह से मानना शुरू कर दिया है कि हम सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। होना तो ये चाहिए कि अगर हम मुसीबत में थे तो न मुसलमान बुजदिल रहते, न हिंदू रहते, न सिख बुजदिल रहते। हमको फिर किसी का डर नहीं रहता। बुजदिल हम डर के मारे बन जाते हैं। डर छोड़ देना चाहिए मुसलमानों को, डर छोड़ देना चाहिए हिंदू का और सिख का, सिखों को हिंदुओं का और मुसलमानों का डर छोड़ देना चाहिए। हम बनना चाहते हैं कोई बड़ी मिलिट्री ताकत, फिर हम बन सकते हैं। और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, और जो है भी वो हैवानियत का रास्ता है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। मैं ये बताना चाहता था कि किस तरह हुकूमत की हैसियत से हम एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की जो गलतियां ही निकालते हैं वो ना करें और अपनी गलतियों को पहाड़ जैसी बनाकर देखें। ना हम दूसरों की गलतियों का जवाब अपनी गलतियों से दें। अगर आप दोनों आपस में ये शिक्षा लागू कर दें कि मैं एक मुक्का मारूं तो आप दो मारें, तो इसमें बड़ापन क्या है? हम तो ये कहें कि आप जितने बड़े होंगे हम उससे दुगने बड़े होंगे। हिंदुस्तान की शांति का मार्ग अभी नहीं बना, वो तब बनेगा जब हम किसी से लड़ेंगे नहीं।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अहमदाबाद में सत्याग्रह का प्रयोग। इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए मदन मोहन सिंह से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत, विषय है कृषि वानिकी से लाभ।
1: डॉक्टर मदन सेन सिंह जी, आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, खेती बाड़ी जानकार आदमी हैं, सीआर सनैनी इलाहाबाद में
2: जी।
1: तो भैया आज आपसे बातचीत हुए कि जे भी हमारे किसान भैया रे खेती के साथे साथे वानिकी करे चाहते, मतलब वन लगावे चाहते, पेड़ पौधा लगावे चाहते
2: जी, जी, जी।
1: तो उनका कोने बातन पर ध्यान दे का है ताकि भाई खेती के साथे साथे जो पेड़ पालो लगावे की बात है, कृषि वानिकी की बात
2: जी, जी, जी।
1: उनके बड़े मुफीद रहा है, ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ हो, पर्यावरण का भी सुरक्षा हो, भाई माटी की संरचना भी बनी रहे।
2: जी जी जी। कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो अपेक्षाकृत तेज बढ़ने वाले हों, जिससे आप अपने लाभ हेतु कम समय में अधिक उपज प्राप्त कर सकें।
1: जी,
2: कृषि वानिकी में रोपण हेतु सीधे तने वाले, कम शाखाओं वाले, विरल छत्र व शाख तरासी सहने वाले वृक्ष प्रजातियों का चयन में प्राथमिकता देनी चाहिए।
1: हाँ।
2: कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों से बहुत लाभदायक होता है। यह जड़ें भूमि में जाकर नीचे से लाभदायक पदार्थ ऊपर लाती हैं, जो कृषि फसलों को फायदा पहुंचाती हैं, तथा वृक्षों की मूसला जड़ों की बढ़त इस प्रकार हो कि वह जल से खनिज लवणों को अवशोषण व फसलों की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करके अधिक से अधिक उत्पादन दे।
1: अच्छा डॉक्टर भैया, एक बात यह आवत है कि आखिर में कौन पेड़ है प्रकृति होनी चाहिए जेकर वृक्षारोपण करें?
2: वृक्षारोपण जैसे आपका है, ये सागौन है, पॉपुलर है, ये सब पौधों का लगाना चाहिए। एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पौधा लें इसके अंतर्गत दो दली बीज वाले पौधे अगर लगाएंगे तो उसमें एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके जड़ें नीचे जाएंगी और दो दली बीज में जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन जो नाच रही है उसको पौधे फिक्सेशन कर लेते हैं, और जो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में फिक्स कर लेती है, आगे कोई फसल अगर हम बोते हैं तो उसमें नाइट्रोजन हमको भरपूर मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को दो दली वाली वृक्षों का चयन करना चाहिए।
1: अच्छा भैया, जैसे अपने क्षेत्र में गंगा जमुना का दुआबा है तो वहाँ कौन वृक्षों का रोपण करें?
2: उसमें किसान को देख चाहिए भाई, उसको ऐसा वृक्ष चाहिए जो उसको लकड़ी का काम भी आवे, चारा के भी काम आवे। तो तराई क्षेत्र के लिए चारा पत्ती के लिए आपका जैसे आपका बबूल है, बेर है, कचनार है, नीम है, सुबबूल है इत्यादि ईंधन के लिए, तथा बबूल, टाक, यूकलिप्टस, जामुन, सुबबूल, बिलायती बबूल आदि, तथा इमारती लकड़ी के लिए बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम और जामुन का चुनाव करना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर भैया, एक बात यह हो कि जैसे इलाहाबाद से थोड़ा अलग हटके ज्यादा दूर ना है शंकरगढ़ या उसके आगे का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड तक फैला हुआ है, ऐसा में पथरीली जमीन यह है, बहुत उपजाऊ पर ना आया है, तो हुआ भी का वृक्षारोपण हो सकता?
2: जी जी, वृक्षारोपण हो सकता है, लेकिन उसके लिए चयन हमको देख के करना पड़ेगा किस पौधे का चयन करें। जैसे विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सुबबूल है, बबूल है, कचनार है, सहतूत है, ढाक

0: ईंधन के लिए अर्र है सहतूत, बबुल, सुई बबुल, सीरस, महुआ। चारा पत्ती के लिए एक आता है वृक्ष होता है झाड़ी नुमा अंजन, सीरस, तथा इमारती लकड़ी के लिए सागौन, शीशम लगाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करने के लिए जहाँ आपका पथरीली ज़मीन हो, कोशिश ये करना चाहिए किसान भाई, अगर उनको नहीं मिला तो बांस के पौधे भी बड़ा उपजाऊ बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं।
1: बांस का तो बढ़िया खेती हो रही बात है और लाभ भी होता है।
0: जी जी।
1: अच्छा भैया, जैसे ज़्यादातर किसान ऐसा ना है जो उनकी समतल क्षेत्र में आए और खेती करत है और साथ ही साथ चाहते हैं कि भाई मेड़ डाँड पर या जो थोड़ी बहुत जमीन खाली पड़ी बा उसमें वृक्षारोपण करें,
0: जी जी,
1: तो ताकि भाई उनके खेत में जो उन फसल उगा था उनका छान हमारे नुकसान न हो
0: जी जी,
1: और उनका बागवानी से भी लाभ हो, तो इमा का कुछ कैसे करते
0: हैं? हाँ, इसके लिए किसान को ये करना चाहिए कि खेत को पूरा उपयोग कर अधिकतम वह विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वह लगाए गए पेड़ को बेच कर धन प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ही चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ईंधन प्राप्त कर गोबर को कंडा बनाकर जलाने से बचा सकते हैं। अक्सर ये देखते हैं किसान जो दो चार जानवर रखते हैं उनका कंडा होता है उसका उपली पात कर वो जो है खाना बनाने के यूज में करते हैं। लेकिन अगर किसान अगर फसल के साथ साथ अगर पेड़ पौधों का अगर किनारे किनारे अगर फसल के रोपे तो उसका कार्य ये होता है कि उनको जो गोबर जो हम ईंधन जलाने के काम में आते हैं वह जो हमारी लकड़ी जो किनारे किनारे पौधे हैं उसको झाड़ झंखार से हम भोजन करने के यूज में हम कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये रहा था कि भाई देखें छोटी छोटी नदी भी यहाँ आसपास में जैसे सही नदी है
0: जी जी,
1: ओकरे अगल बगल में देखें तो दोनों पार्ट पे किलोमीटर दो किलोमीटर जंगल ही
0: जी जी,
1: तो वहाँ कथक वृक्षारोपण करें?
0: नहीं, वहाँ पर भी देखिए किसान हमारा कोशिश ये करता है जहाँ खेत में लगाता है तो गेहूं, धान, गन्ना आदि फसलों के साथ साथ वहाँ जो है सागौन लगाने पर अतिरिक्त उपज प्राप्त हो सकती है उसको।
1: अच्छा।
0: सामान्यतः 40 वर्ष में सागौन का पौधा तैयार होता है। सागौन के बीच से पत्तियाँ, छाल, फल आदि जैसे वन संपदा प्राप्त होती है। सागौन की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, वह टिकाऊपन के कारण इसका उपयोग निर्माण कार्यों, दरवाजों, खिड़कियों, फ्रेम, फर्नीचर, रेलगाड़ी के डिब्बे तक भी इसका उपयोग किया जाता है। सागौन का पौधा खेत में बड़ी सरलता से लगाया जा सकता है। इन पौधों को सबसे अच्छा ये है कि इन पौधों को जानवर भी नहीं खाते, जैसे हमारा किसान इसमें जानवर से बहुत परेशान है, इनकी सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सागौन के पेड़ पर रहने वाले पक्षी खेत के शत्रु कीट पतंगों जैसे चूहे आदि को नष्ट कर अपनी फसल की रक्षा करते हैं। खेत की मेड़ पर लगाए गए सागौन पौधों में अलग से सिंचाई व खाद देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती क्योंकि खेतों में दिया गया पानी व खाद सागौन अपने आप मिल जाता है। इसलिए सागौन का पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलन भी स्थापित कर सकता किसान और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी प्राप्त कर सकता।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्र में इकलिप्टस सफेदा का
0: जी जी जी
1: बड़ा प्रचलन बाटे।
0: जी जी
1: भाई, यो सुने में आवा था कि ज़्यादा पानी सोखा था
0: जी जी
1: जमीन का नुकसान करा था,
0: जी
1: तो एक वृक्षारोपण कितना सही बा कितना गलत है?
0: नहीं नहीं, सही मतलब वहाँ के लिए तो गलत है जहाँ पानी की समस्या है। इसका सबसे अच्छा ये है कि यह तेजी से बढ़ने वाला है, हल्के छत्र वाली प्रजाति है,
1: जहाँ सीपेज क्षेत्र बाटे जो उनकी नहर के
0: किनारे वहाँ पर इसको इसका अगर
1: जहाँ पानी लगा रहा था वहाँ रोपण की जाए,
0: इसका रोपण अगर कर दे तो जो है ये काफी लाभदायक होगा और काफी अच्छा होगा।
1: और जहाँ पानी की समस्या
0: वहाँ पर इसको रोपने की किसान कोशिश न करे, उसके अलग जो है शीशम लगा दे, बबूल लगा दे, सागौन लगा दे, ये आपका जो अच्छा काम करेगा।
1: अच्छा भैया, बांस बसवारी अपने यहाँ का घर गांव का शोभा भी बा
0: जी,
1: और जरूरत
0: भी
1: पड़ रहा था, चाहे छान का बात हो चाहे घरे का बात
0: जी,
1: हो या कोई और उपयोग हो, बांस का उपयोगिता भी रहा था, तो ये कहाँ लगाओ जाए इसका भैया, कैसे एक देखभाल करें?
0: नहीं, बांस तो देखिए आप हर किसान जो है गाँव में अपना जैसे तालाब के किनारे लगाता है ऐसे जगह लगा, लेकिन इसमें वैज्ञानिक तरीके से बांस की पौध रोपित करने के उपरांत यह पौधा ऐसा है कि 6 से 7 वर्षों में एक बेड़ी के रूप में ले लेती है। इसके उपरांत इस बेड़ी में 3 वर्ष से अधिक आय के बांस को प्रत्येक वर्ष निकाल लेना चाहिए। कुछ कल्ले बेड़ी में छोड़ देना चाहिए। इन कल्लों को सामान्यतः बाहर की ओर छोड़ा जाता है। 1 वर्ष से कम उम्र के अपरिपक्व कल्लों को विदोहन नहीं करना चाहिए, मतलब कहना चाहिए मतलब 1 वर्ष के नीचे का पौधे को नहीं लेना चाहिए। किसी भी दशा में कल्लों को भूमि की सतह से 3 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं काटना चाहिए। जहां सघनता हो गई हो वहां सघनता वाले कल्लों को हटा देना चाहिए, भले ही इसमें वर्तमान वर्ष के कल्ले रह जाएं। यदि कम उम्र के कल्ले टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो उसको भी मुड़ा हुआ भाग काट के हटा देना चाहिए। जुलाई अक्टूबर तक कोई भी विदोहन कार्य नहीं करना चाहिए। बांस की बेड़ी के ऊपर मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए ताकि नया राइजोम सुर से प्रभावित न हो।

0: हल्की छाया में बांस की बढ़त देखी गई कि बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ तक किसान हम देखते हैं कि वो जहाँ उनका बगीचा रहता है किनारे एक जगह जहाँ घूर बनाते हैं वहाँ पर अपना वो लगा देते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अपने क्षेत्र में कुछ उसरीली जमीन
0: जी
1: भी
0: जी
1: है
0: जी जी
1: जिनमें ना तो खेती हो इसके बढ़िया ना तो
0: जी जी
1: बागवानी,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: का कोनो ऐसा पेड़ है जिकरे रोपण से जमीन भी उपजाऊ हो जाए,
0: जी
1: किसान
0: जी
1: का फायदा भी हो?
0: जी उपजाऊ के जैसे हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र में है उसमें जो है उसरीली, वहाँ आंवला की खेती सफल होता है, आंवला लगाए
1: आंवला
0: किसान।
1: लगाए के
0: हाँ
1: बढ़िया
0: आंवला लगाए,
1: खेती के
0: बांस
1: साथ
0: भी
1: साथ।
0: लगा सकते हैं, बांस भी चूंकि इतना जो
1: अच्छा,
0: नहीं
1: तो
0: बांस
1: उनका
0: भी हो
1: लाभ है
0: सकता है
1: होए भाई।
0: जी, आंवला भी लग सकता है
1: डॉक्टर साहब,
0: उसरीली
1: आप
0: जमीन
1: हमारे
0: के लिए।
1: कार्यक्रम में आए, बहुत बढ़िया जानकारी देना, आप बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी।

0: कृषि वानिकी से लाभ। अभी आप सुन रहे थे मदन मोहन सिंह से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर दीपक अग्रवाल को। विषय है बच्चों में डायरिया, कारण, लक्षण और उपचार।
1: श्रोताओं, बच्चों में डायरिया बहुत सामान्य बीमारी है। अक्सर आपको देखा होगा कि डायरिया हो जाता है बच्चों में, जो हर किसी के माँ बाप को परेशान करती है। श्रोताओं, आज आपको इस बीमारी के संबंधित कुछ बातें बताएंगे। सब बीमारी में पहले होता कारण, किस कारण से डायरिया हो रहा है ये समझना जरूरी है। जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, ध्यान दीजिए, बच्चों को माँ का दूध बहुत जरूरी है। कोई बच्चों में अगर माँ का दूध मिल जाता है तो बच्चे अपने आप ही पेट को ठीक रखते हैं, उनकी जो बीमारी है कम हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध की पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है, इन्फेक्शन कम होता है और बच्चे को बीमारी से लड़ने की मजबूती आती है। मतलब हमारा कहने मतलब ये, बच्चे को माँ का दूध जरूरी पिलाना, खासकर शुरू के 6 महीने में। अगर 6 महीने से माँ का दूध पी लेता है तो बच्चे को डायरिया करीब के शुरू के दिनों में नहीं होगा। दूसरा कारण है, मान लीजिए माँ का दूध कम पड़ रहा है या बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो चुका है, तो कभी कभी बच्चे माँ के दूध के अलावा भैंस का है, गाय का दूध है, डिब्बे वाले जो फार्मूला मिल्क बोलते हैं उसको पीना चाहते हैं। आप दूध जरूर पिलाइए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जो भी कटोरी चम्मच से हो उससे दूध पिलाइएगा, क्योंकि हम लोग बोतल मना करते हैं, निपल मना करते हैं, कि बोतल और निपल में संभावना चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन के बहुत होते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कभी के बोतल से दूध पिलाने में निपल किसी चीज़ से छू जाता है, फिर पहुँचता मुँह में, मुँह से उसको इन्फेक्शन होता है, डायरिया हो जाता है। मतलब मैंने करें मतलब ये श्रोताओं कि जो भी दूध पिलाइए साफ़ सुथरा हो, बोतल साफ़ हो, अगर हो सके तो बोतल दूध ना पिलाइए बल्कि उसको कटोरी चम्मच से दूध पिलाइए। तीसरा कारण है मौसम में बदलाव, जैसे कि ठंड के दिनों में ठंड का डायरिया हो जाता है, गर्मी में गर्मी डायरिया होता है। मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस पावर है, जो उसकी अपनी शक्ति कम हो जाती है, उस वजह से डायरिया हो जाता है। दूषित पानी और वह खान पान मुख्य कारण है डायरिया का। आपने देखा अगर माली जरा सा भी कोई खान पान में अगर लापरवाही हो, कटे हुए फल खा ले कोई, या खुली हुई जो चाट वाट बिकती है जिसपे साफ सफाई ना हो वो खा ले, या दूषित पानी पी लें, तो उससे डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है। तो श्रोताओं, ये कुछ कारण थे जो मैंने बताया आपको। अब आपको बताते हैं क्या क्या लक्षण हैं जिससे कि आप डायरिया पहचान सकते हैं। शुरुआती दौर में बच्चों में हल्का हल्का पेट में दर्द होता है, ऐठन होती है, उल्टी, दस्त और सुस्ती होने लगती है। फिर अब अगर डायरिया नहीं ठीक हो पा रहा तो शरीर से पानी निकलने लगता है। जब पानी निकलता है तो पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि दस्त में पेशाब कम और पानी निकलने लगता है लैट्रिन से जा रहा, और उस लैट्रिन के जरिए पानी निकलने से बच्चों में जितने भी शुगर है या मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो ज़रूरी तत्व हैं, वो कम होने लगते हैं। इससे धड़कन बढ़ जाती है, आँखों नीचे गड्ढे बढ़ जाते हैं और त्वचा बड़ी सूख जाती है, और अगर इसका उपचार ना करें तो बेहोशी हो जाती है। मतलब हमारे कहने मतलब ये कि अगर जरा से डायरिया में अगर आपने लापरवाही की तो ज़रूरी तत्व शरीर से निकलने लगते हैं, खासकर पानी, ज़रूरी तत्व निकलते हैं जिससे बच्चे बेहोश या बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। अब आपको बताते हैं उपचार। देखिए श्रोताओं, मैंने आपको बताया अभी कि माँ का दूध ही सबसे सर्वोत्तम दूध होता है। अगर डिब्बे वाला दूध पिलाना पड़ भी जाए तो मैंने आपको बताया कि उसमें कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करिए, साफ सफाई रखिए, घर के बिस्तर, कपड़े इत्यादि साफ सफाई रखिए, खासकर जो पानी हो आपके घर में, कोई

0: नहीं आता उसको उबाल के छान के पिलाइए। सबसे सस्ता उपाय होता है बच्चों में पानी के लिए, आप कोई बर्तन, आप साफ़ सुथरा बर्तन ले करके पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालिए और फिर उसको साफ कपड़े से छान करके पिलाइए। सबसे शुद्ध सबसे सस्ता पानी यही है। कटे हुए फल खाद्य सामग्री जो बाहर बिकती है उसको कभी भी मत प्रयोग करें। एक रोटा वायरस वैक्सीन आ गई है जो कि सरकार की तरफ से लग रही है, जो कि लगती है बच्चों में 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में। ये लगवाइए तो उससे रोटा वायरस टाइप की डायरिया नहीं होगा, क्योंकि रोटा वायरस इन्फेक्शन ऐसा है जो कि अक्सर बच्चों में हो जाता है और 19% डायरिया रोटा वायरस होते हैं। इसके बावजूद भी डायरिया अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने सब कुछ उपाय कर लिया नहीं ठीक हो पा रहा है, तो ORS का पाउडर आप घर में रखे रहिए, जिसको थोड़ा थोड़ा घोल घोल कर पिलाइए। एक गिलास पानी में एक पाउडर घोल लीजिए पिलाइए। मान लीजिए घर में आपके ORS पाउडर नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे सस्ता उपाय है कि एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, उबला हुआ ठंडा पानी, उससे 2 चम्मच घर की चीनी पीस के मिला दीजिए, चुटकी भर नमक मिला दीजिए, ज़रा सा खाने वाला सोडा जो घर में होता है ज़रा सा अंदाज से मिलाइए, कुछ बूंद मिलाइए नींबू की, घर का ORS तैयार। और इसको पिलाइए तो जिससे इसको डिहाइड्रेशन ना हो, पानी कमी ना हो और बच्चे को कोई भी गलत बात ना होने पाए। इसके बाद भी अगर ना आराम मिले तो अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें, उसके निर्देशानुसार इलाज शुरू कर दें।
1: बच्चों में डायरिया, कारण, लक्षण और उपचार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दीपक अग्रवाल को। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आज रात 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा, 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुनिए 7 बजे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए 7:45 पर जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, 12:15 पर शाहिद परवेज का सितार वादन और रात 10 बजे पद्मा तलवालकर का ख्याल गायन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज।

9:50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम सुनिएगा। दिन में 11 बजे सुनिएगा रूपक, साहित्य के उन्नायक मुंशी प्रेमचंद। 11:30 पर सुनिए यूथ एक्सप्रेस। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का समय होगा 12:30 और 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर सरोज सिंह की वार्ता, प्रेमचंद के कथा, संसार की स्त्रियां, पीड़ा से प्रतिरोध तक। साथ ही होगा पहल

2:30 पर सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे नन्ही तुरिया कार्यक्रम। 5:15 पर योजनों का कार्यक्रम होगा यौवाड़ी।

6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुनिए हेलो पंचायत घर। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा और रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए कहकशा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, 12:15 पर शाहिद परवेज का सितार वादन और रात 10:30 पर पद्मा तलवालकर का ख्याल गायन सुनिएगा। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: घटनाक्रमाणां नियमितानुवीक्षणाय नागरिकानां हितसंरक्षणसम्बद्धानाम् उपायानां शीघ्रकार्यान्वयनाय च एकीकृतसमन्विततन्त्रस्य निर्माणम् आहूतवान्। उच्चतमन्यायालयेन राष्ट्रराजधान्यां सद्य एव जातेषु छात्रविरोधप्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचितचिकित्सायै दिल्ली प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं जंतर मंतर इत्येतस्मिन् स्थले दिल्ल्याः अन्येषु स्थानेषु च प्रदर्शनरत छात्रेषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोग संबद्धां याचिकां शृणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह पुरुषाण दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरंच भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदक ही पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से लिए गए भजन। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विवाह फिल्म के इस खूबसूरत भजन के साथ। आवाज पमेला जैन की, बोल और संगीत रविंद्र जैन का।

पामेला जैन के स्वर में अभी आपने सुना ये विवाह फिल्म का खूबसूरत सा भजन। बोल और संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम का अगली भक्ति रचना सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में चंबल की कसम फिल्म का, बोल साहिर के संगीत खयाम का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए हम दोनों फिल्म का ये खूबसूरत सा भजन, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर के बोल और संगीत जयदेव का।

लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति रचना के साथ फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी से प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे 29 जुलाई को ही पारित कर दिया था। विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा।
1: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।
2: विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद ने कल ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने 29 जुलाई को ही इसे पारित कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है।

0: उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक बड़े श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। ये युवा देश के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल लखनऊ के जनभवन से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और अन्य तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर जिले में 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गाजीपुर में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की अपील की।
3: मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा, तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी।
1: श्रावण मास कल से शुरू हो गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और DGP राजीव कृष्ण ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कल समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत की।
4: न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर जो व्यवस्थापना के बिंदु है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु है, डिप्लॉयमेंट के बिंदु है, उन विषयों पर चर्चा हुई।
1: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण UP रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। जल्द ही यूपी रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
5: यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8,000 से अधिक विवाद के मामलों में 2,173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई।

0: आई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान हुआ है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: बागपत जिले के छपरौली कस्बे के कुरैशियान मोहल्ले में कल शाम एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर जाने से मलबे के प्रशासन की मदद से मलबे को हटाकर दो शवों को बाहर निकाला गया, जबकि गंभीर तौर पर घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रेफर होने के बाद इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। प्रदेश में कई जिलों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, राग भूपाली तोड़ी।

0: combined total to 388 kilogram, setting a brand new Indian national record. Born on September 6, 1997 in Bal Sachandar village, Amritsar, Punjab, Lovpreet Singh comes from a humble family. Inspired by local weightlifters, he began weightlifting in 2010 at the age of 13 under the guidance of local coaches. Despite financial hardships, his determination and disciplined training helped him progress steadily through the junior and senior ranks. Commonwealth Weightlifting Championship 2022 Gold, Commonwealth Games 2022 Bronze, Commonwealth Weightlifting Championship 2021 Silver, 5th place in the Asian Championship 2026 with a personal best performance of a total of 386 kilograms. And now, Glasgow Commonwealth Games 2026, a silver medal for India. The gold was secured by New Zealand's David Andrew Lithi with a total of 389 points. While on one hand, India got a reason to rejoice at midnight, on the other hand, India also found a reason of heartbreak in Martina Devi's performance in the women's 86-kilogram finals. The 20-year-old Manipuri prodigy Martina Devi Maibam finished 5th overall on her Commonwealth Games debut. The performance of the Indian weightlifters at Glasgow Commonwealth Games 2026 has been nothing short of exemplary. This journey started with Mirabai Chanu getting us the gold in women's 48-kilogram category. Then came Gyaneshwari Yadav getting us the silver in women's 53-kilogram category. Then came Bindya Rani Devi getting us the bronze in women's 58-kilogram category. After that, there was Harjinder Kaur getting us the silver in women's 69-kilogram category. After that, there was Rishikanta Singh, who got us the silver in men's 60-kilogram category. Raja Muthupandi got us the silver in men's 65-kilogram category. Ajaya Babu got us the silver in men's 79-kilogram category. And then came Lovpreet Singh, who got silver in men's 110-kilogram category.
1: एथलेटिक्स में सारी निगाहें थी नीरज चोपड़ा, शॉटपट में तेजिंदर सिंह तूर और 5000 मीटर में पारुल चौधरी पर। सुबह के सत्र का केंद्र थे भारत के लाडले जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, 2018 गेम्स के स्वर्ण पदक धारी, पिछले गेम्स में चोट की वजह से नहीं आ पाए थे। ओलंपिक के विजेता, विश्व विजेता, एशियन गेम्स के विजेता, अलंकरण ही अलंकरण, लेकिन बीते समय चोट के शिकार रहे। करीब 9 महीने मैदान से दूर रहे वो। वापसी के बाद प्रदर्शन में अपनी पुरानी की खोज में दिखते रहे हैं। यहाँ इस स्पर्धा में मुकाबला खासा तगड़ा है उनके लिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम, श्रीलंका के रोमेश थरांगा और हमवतन रोहित और यशवीर तो हैं ही। नीरज, रोहित यादव और यशवीर सिंह तीनों ने ही क्वालीफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। हाँ, जो दूरी उनके भालों ने नापी वो कागज पर उतनी शानदार नहीं लग रही। नीरज ने दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर भाला फेंका, जबकि 85 से ऊपर तो वो जब चाहे तब फेंक दिया करते थे। ऑटोमेटिक

0: क्वालिफिकेशन मार्क था 84 मीटर, तो उनका ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ठहरिए, 18 क्वालिफायर्स में से कोई भी ये मार्क हासिल नहीं कर पाया। नीरज ने बाद में कहा कि तेज हवा और ठंडक सभी भाला फेंकने वालों के लिए कठिन माहौल पैदा कर रही थी।
1: The throw was okay, like 79 meter throw, and the goal was to go in the final and give my best in the final. So I'm happy with the throw. Yeah, conditions are not best for javelin throwers. Not only cold, but it's really windy, and wind was also not in the front. Sometimes it's from side, and it's really hard to process. Like where we have to throw. We are happy that we all three Indians are in the final.
0: तो अब निगाहें रहेंगी final में कि नीरज वहाँ पर उनका भाला लक्ष्य भेदने में सफल रहे। लेकिन कल का सबसे यादगार प्रदर्शन आया डिस्कस थ्रो में, महिलाओं की चक्का फेंक। सीमा कालीरम्मा ने अपना हालिया शानदार प्रदर्शन जारी रखा और कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में सीमा और निधि रानी के रूप में भारतीय चुनौती थी। शुरू से ही वो तीसरे और चौथे स्थान पर रही और सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर की दूरी नापी तो निधि का चक्का 57.10 मीटर तक गया और ये स्थिति उन दोनों ने अंत तक बनाए रखी। हालांकि इसके बाद के सारे थ्रो सीमा के फाउल हो गए, लेकिन तब भी ये जो प्रयास तीसरा था वो उन्हें कांस्य पदक दिला गया। निधि रानी चौथे स्थान पर आईं। सीमा एक जीवंत उदाहरण है स्त्री शक्ति की ताकत का। मातृत्व के कारण उन्होंने अवकाश लिया, कुछ दिन बिल्कुल अभ्यास से दूर रहीं, उसके बाद वापसी की, मैदान पर आई और अपनी पुरानी लय हासिल की, बल्कि उससे बेहतर। साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल, डॉक्टरेट कर रही हैं। सलाम है सीमा आपको। नीरज के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थे तेजेंद्र सिंह तूर। शॉटपट में पदक की उम्मीद के साथ उतरे, दो बार के एशियाई गेम्स और एशियाई चैंपियन। उनके साथ थे समरदीप सिंह गिल। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, तूर ने कोशिश तो बहुत की लेकिन गोला 20 मीटर के आसपास ही जा पा रहा था उनका। तीसरे प्रयास में 20.27 मीटर फेंका उन्होंने, जो उनका कल का सबसे अच्छा थ्रो रहा, लेकिन ये काफी नहीं था पदक के लिए। वे पांचवें स्थान पर रहे तो समरदीप सिंह गिल को ये संतोष अवश्य रहेगा कि उन्होंने भी 20 मीटर की दूरी पार कर ली। उनका बेस्ट थ्रो रहा 20.23 मीटर और वो सातवें स्थान पर आए। स्वर्ण नाइजीरिया के चुक वेयमबुका ने जीता 21.07 मीटर के थ्रो के साथ। 200 मीटर में अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल चक्र में ही बाहर हो गए। 20.65 सेकंड का समय और उनसे बहुत पीछे था। कुल मिलाकर वो 17वें स्थान पर रहे। सुबह के सत्र का शानदार प्रदर्शन रहा पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में। प्रवीण चित्रावल दूसरे स्थान पर रहे 16.41 मीटर की कूद के साथ, तो उनके साथी सलवा प्रभु तीसरे स्थान पर आए 16.26 मीटर के साथ और उन्होंने ट्रिपल जंप में पदक की आशाएं जागृत कर दी हैं। 400 मीटर में क्वालिफाई करने वाले विशाल टीके कल सेमीफाइनल में 46.33 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 14वें स्थान पर सरक गए। पारुल चौधरी एक दिन पहले 3000 मीटर स्टीपल चेस की दौड़ को भुलाने के इरादे से मैदान में उतरी, लेकिन ये रेस उनका दर्द और बढ़ा गई। 15.08.56 सेकंड के साथ वो 13वें स्थान पर रही। हाँ, डेकथलॉन में तेजस्विन शंकर ने कल 5 स्पर्धाएं पूरी कर ली और पदक की होड़ में बने हुए हैं 4339 अंकों के साथ। अपनी प्रिय लॉन्ग जंप स्पर्धा में तो वो टॉप पर रहे और दिन समाप्त होने तक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर आज ये प्रदर्शन जारी रख पाते हैं तो निश्चित और पर पदक उनका इंतजार कर रहा है। और भारतीय दल से उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर।
2: I think it's a great start to the Commonwealth Games. We've already secured 15 medals so far, and the next 3 or 4 days we have some very interesting bouts coming up. There are 8 or 10 of the boxers who made it to the semi-finals. There are weightlifters, and then of course there's the mega event of javelin and the track and field as well. So looking forward to a healthy tally of the Commonwealth Games for the closing ceremony.
3: On day 8, India's historic debut in para-track cycling at the Glasgow Commonwealth Games was highlighted by an inspiring performance from 16-year-old sensation Lisha Das. Hailing from Tezpur, Assam, the class 11 student took to the track at the Sir Chris Hoy Velodrome to become the first ever para-athlete from Assam to qualify for the Commonwealth Games. Competing in the high-octane women's C4-C5 4,000-meter individual pursuit qualification round, her debut marked a monumental step forward for Indian paracycling on the world stage, despite missing out on a spot in the final medal rounds.
0: In खेलों में साइकिलिंग की

0: स्पर्धा में सिर्फ ट्रैक साइकिलिंग ही है, रोड रेसेस और माउंटेन बाइक शामिल नहीं है। सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग का कल पहला दिन था और 6 स्वर्ण पदक दांव पर थे। भारत भी इनमें से एक पर अपना दांव लगा रहा था। पुरुष टीम स्प्रिंट, भारतीय टीम 6 और देशों के मुकाबले थी। 3 साइकिलिस्ट वेलोड्रोम ट्रैक का एक एक लैप पूरा करते हैं लगातार एक एक करके। टीम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अंतिम पायदान पर ही आ सकी। एवरेज स्पीड रही 58.195 किलोमीटर प्रति घंटा। रोनाल्डो सिंह लाइटोन जंप, डेविड बेकहम और रोनजीत सिंह यांगलेम। अंतिम आना भी इस मायने में दिलासा देता है कि भारतीय साइकिलिंग अब विश्व स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। आज खेलों का नवा दिन खासा सरगर्म रहने वाला है। बॉक्सिंग में 10 पदक पहले ही पक्के हो चुके हैं लेकिन पदक का रंग बेहतर करने के इरादे से सभी 10 बॉक्सर्स कल सेमीफाइनल में रिंग में उतरेंगे। महिलाओं में प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, प्रिया, साक्षी और लवलीना बोरगोहेन। और पुरुषों की बात करें तो उसमें सचिन होंगे, नरेंद्र होंगे, अंकुश होंगे और होंगे जादूमणि। देखना है इनमें से कितने बॉक्सर्स फाइनल में प्रवेश पाते हैं। मुक्केबाजी में भारत की उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह।
1: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
2: इन जूडो देयर विल बी द मेंस 60 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन विच हर्ष सिंह विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देयर विल बी वुमेन्स 52 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 in which Shraddha Kadubal Chopade shall be representing India. There will be men's 66 kilogram round of 16 in which Rohit Basir Majgul shall be representing India. Then there will be women's 48 kilogram event quarterfinals in which Ashwita Day will be representing India. Then there will be women's 57 kilogram quarterfinal event in which Yamini Maurya shall be representing India.
0: Athletics mein decathlon ki spardhaen jari rahengi. Tejaswin Shankar padak ki hod mein baki bachi 5 स्पर्धाओं में उतरेंगे। मिक्स 4x400 रेले होगी जिसमें अंशु बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर और विशाल टीके, 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी मैदान में उतरेंगे।
2: In track cycling, there will be men's 4,000 meter individual pursuit event in which Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekha shall be representing India. There will be men's Keirin first round events in which Ronaldo Singh, David Beckham and James Singh will be representing India. In lawn ball, the men's pair sectional play event shall be happening in which Navneet Singh and Dinesh Kumar will be representing India. There will be women's single sectional play in which Nayanmoni Sekia shall be representing India.
3: बहुत प्रैक्टिस किया है, 6 घंटा कंपलसरी है, कभी ज्यादा भी होता है। अभी इस मुकाम में पहुंचा है कि ताकि हम लोग इंडिया के लिए कुछ कर सके।
2: It's time now to have a look at the latest updated medal tally at the end of day 8 of Glasgow Commonwealth Games 2026. On the first spot is Australia with 51 gold, 24 silver, 35 bronze, their total number of medals being 110. On the second spot is England with 15 gold, 30 silver and 20 bronze, their total number of medals being 65. And on the third spot is Canada with 15 gold, 13 silver and 17 bronze medal, their total being 45. India presently is on the 10th spot with a total of 17 medals, which includes 3 gold medals, 10 silver medals and 4 bronze medal. That is all that we had with all the updates that we had to bring to you on day 8 of the ongoing Glasgow Commonwealth Games 2026. This program was brought to you by our producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bharadwaj, my co-commentator and anchor Anupam Pathak and myself Sakshi Mandwal. That is all that we had for you for now. Thank you so much for listening in. Goodbye. Namaskar.
4: The Commonwealth Games.
5: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन राग भोपाली तोड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समाचार प्रभात बस कुछ ही पलों में।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
3: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन

0: अब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं।

0: स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
1: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकते हैं।

0: दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सजा, सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इतिहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों से कल तक समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। सीमा कलीरमना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। कल राज्यसभा में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। बुध के रोज लोकसभा में इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। इस बिल में मुख्तलिफ अहम जाब्ते शामिल किए गए हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त किए जाने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। मामलात को जल्द निपटाए जाने को यकीनी बनाने की खातिर ये बिल हर रियासती हुकूमत और मरकज के सिरे इंतजाम इलाके को इख्तियार देता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले और वजीर आजम के दफ्तर के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले से भारत के हर शहरी का ताल्लुक है और इस मुल्क का हर शहरी जाती तौर पर इससे मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 गुज़श्ता दहाई में यकसर तब्दीली वाली साबित हुई है। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर सिंह ने मोदी हुकूमत के पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों और पेपर लीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के अज़्म का इरादा किया। बहस में शामिल होते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजव्वजा तरामीम पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों को रोकने में मुअस्सर साबित नहीं होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआईएम और दीगर ने भी इस बिल पर बहस में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निज़ाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज में तालीम और इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात करना लाजिमी हो गया है। वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: कौम आज इनकलाबी मुजाहिदे आज़ादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम

0: का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को कत्ल कर दिया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जलियांवाला बाग कत्लेआम की तलख यादें उधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम का नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में 3 बड़े मजाहिब और 9 आबादियाती निज़ाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी की शहादत को मनाने के लिए पंजाब में उनकी जाए पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी उधम सिंह के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने उधम सिंह को गैर मामूली जुरत और बहादुरी की एक अलामत करार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो यकुम अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और वो सभी एहतियाती इकदाम कर रही है।
2: गुजरात में मानसून की सूरत हाल संगीन है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज 13 ज़िलों के लिए बहुत शदीद बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन ज़िलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें वस्ती और जनूबी गुजरात, नीज, अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। अहमदाबाद और नवसारी समेत बहुत से मुतासर ज़िलों में स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने ज़िला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं, ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज़ी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: जम्मू कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा NH-44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है, ताकि समरोली मेलाढ़ा के नज़दीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर भाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निसफ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नज़दीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई खराब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तशवीश पैदा कर दी है। केरल में 14 ज़िलों में से 11 ज़िलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज़ फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निमटना है। इसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीका कार फराहम करेगा, जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आज़ादाना जहाजरानी को तहफ़ फराहम करना, तजारत के बैनुल अक़वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद आबनाए बाबल मंदब, बहरे अहमर और खलीज अदन में मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ़ की कोशिशों का एक हिस्सा है, जो बैनुल अक़वामी कानून के जाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान,

0: बूटी और सोमालिया शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी अवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका वो मुस्तहिक है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। ये धमाका बज़ाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। अहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिलीं। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर खनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं, जिनमें 40 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन ख़वातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा ख़वातीन मुजाहरीन पर फायरिंग भी की। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जबकि सीमा कलीरमना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया 110 तमगों के साथ पहला मकाम बरकरार रखे हुए है, जबकि भारत 17 तमगों के साथ 10वीं पोजिशन पर है। भारत ने सोने के 3, चांदी के 10 और कांसे के 4 तमगे जीते हैं। इससे पहले कल दिन में नीरज चोपड़ा ने मर्दों के नेजा फेंकने के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और रोहित यादव के अलावा यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में एथलीट सीमा कलीरमना को खवातीन के डिस्कस थ्रो मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने सीमा कलीरमना की इस हुसूलयाबी के लिए तारीफ की है और कहा है कि ये उनकी लगन, सख्त मेहनत और इस्तेकामत का एक वाज़ेह सबूत है। आज़रबाईजान के बाकू शहर में 17 साल तक की उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शेरावत को ख्वातीन के जुमरे के फाइनल में अमरीकी पहलवान से हारने के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि कमना बाबल और करीमा ने कांसे के तमगे जीते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए सलामती की खसूसी मीटिंग तलब की। मजकूरा मीटिंग में मगरबी एशिया के बहरान और भारतीयों के तहफ़ के अलावा तवानाई और खाद के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तारीखी आलमी बहरी सफर से वापस लौटी तीनों अफवाज की खवातीन अफसरान की वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की इज्जत अफजाई। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। शुमाली भारत में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, ये खबर सभी अखबारों में नुमाया है। इस दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है। रोजनामा इनकलाब की एक अहम शह सुर्खी है, दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने की असलाहत मुहिम तेज़, इसके तहत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने

0: اقوام حماس اور دیگر مسلح گروپوں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 48 گھنٹے میں گجرات کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس پر، یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। सावन की पहली बूंद धरती की प्यासी नहीं, दिलों की उदासी भी बुझा देती है। पेड़ों पर नए पत्ते, आंगन में कजरी और दिल में सावन की उमंग, यही तो है सावन। गर्मी के बाद जो ठंडक सावन लाता है वो रिश्तों में भी आ जाए तो क्या बात है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे सावन प्रकृति और परंपरा के पर्व की। सावन का महीना सिर्फ एक कैलेंडर का महीना नहीं है, ये प्रकृति के जागने और हमारी परंपराओं के जुड़ने का समय है। तपती गर्मी के बाद सावन में धरती फिर से हरी हो जाती है, खेतों में धान की फसल लहराती है, रिमझिम फुहार, मेढक की टरटर, कोयल की कूक, पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं। त्योहारों का मौसम आ जाता है। सावन का महीना शिव का महीना माना जाता है। महिलाएं परिवार की खुशहाली के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। लाखों भक्त गंगा जल लेकर पैदल शिव मंदिर जाते हैं। सावन में तीज का त्यौहार, पेड़ों पर झूले, हाथों में मेहंदी, हरे हरे कपड़े, सावन के गीत, चारों तरफ कजरी, हरे रामा बेला फूले आधी रात जैसे गीत कानों में सुनाई देने लगते हैं। हरी भरी डालियां, ठंडी हवा, रिमझिम बारिश, पेड़ों पर पड़े झूले, बरसात की ठंडक और मन की उमंग दोनों को बढ़ा देते हैं।

सावन में बारिश नहीं, यादें बरसती हैं। कजरी की तान और झूले की डोरी सावन में हर चीज मोह लेती है। सावन कहता है रूठना भी जरूरी है ताकि मनाना और भी खूबसूरत लगे। हरा भरा सावन मन में बसी पहचान, शिव की भक्ति, बहन भाई का मान, बूंद बूंद में भक्ति, कड़ कड़ में शिव, यही तो है सावन का असली रंग। हम बात कर रहे हैं सावन प्रकृति परंपरा के पर्व की। आगे बढ़ते हैं, सावन के त्योहारों की बात करते हैं। नाग पंचमी, मान्यता है श्रोताओं की प्रकृति के रक्षक नागों को दूध चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। घर के दरवाजे पर गोबर या मिट्टी से नाग का चित्र बनाते हैं। दूध, फूल, धूप, अगरबत्ती से नाग देवता की पूजा की जाती है। हम प्रकृति के इस जीव का सम्मान करते हैं। श्रोताओं, सावन में आता है त्यौहार रक्षाबंधन का। ये त्यौहार सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भाई बहन के रिश्ते का पर्व।

इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। उपहार देकर मिठाई खिलाकर यह पर्व मनाया जाता है। इस तरह हम प्रकृति से, परंपराओं से जुड़ते हैं और यहीं से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। आस्था से मुश्किलें आसान होती है और यही बात सावन हमें, प्रकृति हमें यही सिखाता है कि बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी जरूर आते हैं।

हरा भरा सावन, मन में भक्ति का रंग, कजरी की तान सुहानी, झूले की डोरी मनमानी, बूंद बूंद में शिव का, कड़कड़ में प्यार, यही तो है सावन का त्यौहार। जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हर दिन प्रसारित किया जाता है 8:45 पर।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज से, आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम आया सावन झूमके।

खानदान फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: गत दिनों बरेली में ब्रज विज्ञान भारती की ओर से आयोजित विज्ञान शिक्षा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से छात्रों ने अपनी अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। इसके साथ ही

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: गत दिनों बरेली में ब्रज विज्ञान भारती की ओर से आयोजित विज्ञान शिक्षा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से छात्रों ने अपनी अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। इसके साथ ही अन्य लोगों से बड़ी संख्या में वृक्षारोपण की अपील भी की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एनडीए सरकार बनने के बाद जिस तरह से विकास हुआ है उससे देश की जनता खुश है, आम आदमी की आय बढ़ी है। छात्रों में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली कैंट छावनी में खगोलीय लैब बनाई गई। इस लैब का उद्घाटन रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता ने किया। तकनीकी उपकरण से लैस इस लैब के जरिए बच्चे ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जुटा सकेंगे। मुख्य अधिशासी अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड डॉक्टर तनु जैन ने कहा कि छात्रों में हमेशा ब्रह्मांड को लेकर काफी उत्सुकता होती है और इसी उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली छावनी परिषद ने इसकी शुरुआत की है।
2: साइंटिफिक टेम्पर ऑफ स्टूडेंट्स डेवलप करने के लिए एक हमारा प्रयास है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं हम उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की हमने लैब्स यहाँ डेवलप करी है। हमने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया और बेसिक इक्विपमेंट्स भी लगाए जिससे कि बच्चों को ये पता रहे कि कौन से इक्विपमेंट्स का क्या मतलब होता है।
1: बरेली में महाभारत कालीन लिलौर झील पर्यटन के लिए नई डेस्टिनेशन बनने जा रही है। गत दिनों झील पर आयोजित कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने झील पर किए जाने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। नौका विहार टॉय ट्रेन के बाद इस झील के किनारे सरकार ने पर्यटकों के रुकने के लिए कॉटेज भी बनवाए हैं। इसके साथ ही इस झील पर मल्टीपर्पज हॉल व टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लगभग 3 करोड़ की लागत से इन कार्यों का पूरा किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर इस झील पर आए थे तो यक्ष के साथ उनका संवाद यही हुआ था, इसलिए इस झील का काफी महत्व है। अब इस झील को जीवांत करने के बाद पर्यटन मंत्रालय इसे सैलानियों के लिए बेहतर बना रहा है। पशुओं में संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुक्त टीकाकरण पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने टीकाकरण की शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर टीमों को रवाना किया। पूरे प्रदेश के 18 मंडलों में ये अभियान चलाया जाएगा जिससे कि पशुओं में संचारी रोगों को बचाया जा सके। टीकाकरण अभियान को लेकर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानव ही नहीं बल्कि पशुओं की भी चिंता करती है। जिस समय पर ये टीकाकरण शुरू किया गया है ताकि पशुओं में खुरपका मुंहपका जैसे संक्रामक रोग ना फैल सके। 22 जुलाई को बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित परियोजनाओं और अन्य शिकायतों की गहन समीक्षा की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पार्टी द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन में भी शिरकत की।
0: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
3: भगवान शिव की आराधना के लिए विख्यात श्रावण मास का प्रारंभ गुरुवार से हो गया है। यह मास पर्यंत शिव भक्त अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक विभिन्न शिवालयों में करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास शिव को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए सावन मास के प्रत्येक शिवालयों में जलाभिषेक किए जाते हैं। जनपद सीतापुर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों में सावन मास में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सीतापुर मुख्यालय स्थित श्यामनाथ मंदिर समेत बिस्वा के पत्थर शिवाला और नैमिषारण्य समेत अन्य स्थानों पर स्थित शिवालयों और मंदिरों में पूरे सावन मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस अवसर पर मंदिरों में विविध आयोजन समेत मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन में पवित्र नदियों अथवा जलाशयों का जल भरकर भक्तगण विभिन्न शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया को श्रावण कहा जाता है और श्रावण ले जाने वाले भक्तों को श्रावणिया कहा जाता है। सावन में श्रावणियों की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया है।
4: इसमें लगातार पुलिस द्वारा पहले बैठकें की गई, सभी

0: जो संचालकों से बात हुई है, जो कावड़ संस्थान और चलाते हैं कमेटियाँ, हम सबसे बात हुई है, जितने मंदिर है उसके सबके हमारी ड्यूटी कल सुबह से रहेगी, पोस्टर पार्टी हमारी रहेगी, सेक्टर जोनल स्कीम में मजिस्ट्रेट और सीओ की ड्यूटी लगा दी है, बहुत शांतिपूर्वक पूरा कावड़ को मुहैया कराया जाएगा।
1: नजूल भूमि समेत सरकार के स्वामित्व वाली इमारतों और प्लाटिंग पर अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपतकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जा चुका है। इस अभियान में जहां प्लाईवुड फैक्ट्री जैसी प्रसिद्ध इमारत को कब्जेदारों से मुक्त कराया गया है, वहीं ऐतिहासिक रंपा महल को भी खाली कराया गया है। पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मृतक पत्रकार की पत्नी ने विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हत्याकांड में शामिल वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मृतक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि इस हत्याकांड में शामिल गुनाहगारों को जेल के पीछे भेजा जाए और घटना का निष्पक्ष खुलासा हो। करीब 2 वर्ष पूर्व पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की शरेआम गोली मारकर असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सीतापुर में पहुंचकर महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुना और उनके कल्याण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सदर तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सुजीता कुमारी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है, किंतु महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला कल्याण को सर्वाधिक महत्ता देते हुए वे अपने स्तर से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वे बिना किसी शर्म संकोच और भय के अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें और उनके निस्तारण के लिए प्रयास करें। यदि जिला स्तर पर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे महिला कल्याण विभाग समेत राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला आयोग महिलाओं के हितों के लिए सदैव अग्रसर रहता है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से आइए सुनते हैं।
1: मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।

0: और उनके साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। इसी गोरखपुर के उनके घर के पीछे मुबारक खान शहीद ईदगाह को देखकर ही उन्होंने अपनी कहानी ईदगाह जैसे शाहकार और उसके किरदार हामिद को तराशा। हजरात आइए अब खोलते हैं दास्तान की तीसरी गिरह। ये नौजवान धनपत राय का उर्दू अदब की दहलीज पर पांव जमाने की कोशिशों का दौर था। अपने तिलस्मी कलम के लिए उन्होंने खुद को नवाब राय के नाम से मुखातिब किया और मजदूरों और दहकानों के हालात, मजबूरी और बेबसी को उनकी कलम ने बड़ी बेबाकी से बयान करना शुरू किया। लेकिन हुजूर, वो कहते हैं ना, सच की राह पर चलने वालों की राहों में आजमाइशों के बेशुमार कांटे होते हैं। अब जिक्र करते हैं सन 1908 का, जब नवाब राय का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन शाया हुआ तो बरतानिया हुकूमत के ऐवानों में मानो जलजला सा आ गया। उनके इस मजमुए में हुब्बुल वतनी की एक ऐसी आतिश छुपी थी जिसे अंग्रेजी हुकूमत बर्दाश्त न कर सकी और नवाब राय को बागी करार देकर सोज़े वतन की हजारों कॉपियों को कलेक्टर ने जब्त कर लिया और भरे बाजार में आतिश ज़दा कर दिया गया। अब हुजूर, हुकूमत ने इस ज्यादती के बाद ये समझा कि उन्होंने एक बागी कलमकार की कलम को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन ये उनकी सरासर भूल थी, क्योंकि जब एक गिरह बंद होती है तो अभी तो दूसरी गिरह खुलती है। उनकी इस ज्यादती ने नवाब राय को तो खामोश कर दिया, लेकिन प्रेमचंद को नई जिंदगी बख्श दी। उस दौर में जमाना मैगजीन के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम ने, जो कि उनके खैर ख्वाहों में से थे, उन्हें तजवीज किया कि वो प्रेमचंद के नाम से लिखें और फिर इस तरह लम्हे का वो गुमनाम धनपत राय सोज़े वतन के नवाब राय से प्रेमचंद बन गया। तो दास्तान की अगली गिरह खुलने वाली है, दिल थाम के सुनिए सामईन के आगे क्या हुआ। आइए अब आपको याद कराते हैं सन 1921 का वो जमाना जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था और उन्होंने तमाम अहले वतन से अपील की थी कि वो लोग सरकारी नौकरी से दस्तरबरदार हो जाएं। ये फरवरी 1921 के असहयोग आंदोलन यानी कि तहरीके तर्क मवालात की एक कड़ी थी। प्रेमचंद उस वक्त महकमाए तालीम में डिप्टी सब इंस्पेक्टर थे। घर में दो छोटे बच्चे, बीमार बीवी और खराब हालात के बावजूद उन्होंने गांधी जी की अपील से मुतासिर होकर फौरन सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। घर में चूल्हा जलना दूभर हो गया, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के सीने में तो हुब्बुल वतनी की चिंगारियां भड़क की शोला बन चुकी थीं। दरअसल प्रेमचंद ने मुश्किल हालात देखे नहीं थे, बल्कि खुद जिए थे। यही वजह है कि आज भी उनके अफसाने सिर्फ पढ़े नहीं जाते, जिंदा हकीकत की तरह हमारे आसपास देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। फैज अहमद फैज का एक बेहद मशहूर शेर जैसे मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी की अक्कासी के लिए ही लिखा गया है।
1: मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबा ली है उंगलियां मैंने।
0: सामईन, वो दास्तान ही क्या जहाँ हर वक्फे पर एक नई रस्म, नई बज्म, नया तिलस्म और नई अय्यारी से सामना न हो। तो आइए अब अगली गिरह में इस अदीब के अफसानवी किरदारों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो दास्तान गोई के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनकी दास्तानों के कुछ किरदारों से। तो साहिबान, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अफसाना कफन के बेबाक, निकम्मे, ढीठ, बेबस और अय्यार घीसू और माधव से। आपको याद तो होंगे ना, आइए अफसाना कफन के इन किरदारों से मिलते हैं। अपनी घरवाली की फौत होने पर चंदे में मिले कफन के पैसों को भी नशे में उड़ाने वाला घीसू कहता है,
2: कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर में जल ही तो जाता। ये जो मरने वाली ने हमें पूरी कचौरी खिलाई है, इसका पुण्य उसे जन्नत में जरूर मिलेगा।
1: हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी थी, मरने पर भी हमें सुलह करवा गई। ये दुनिया बड़ी अजीब है।
0: सामईन, आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं प्रेमचंद के शाहकार नॉवेल गोदान की धनिया से। होरी की मौत का वक्त अनकरीब है, गुर्बत का ये आलम है कि घर में एक थैला भी नहीं है, लेकिन पंडित जी कहते हैं,
2: गोदान करो वरना आत्मा भटकेगी।
0: धनिया अपनी पटी हुई साड़ी के पल्लू को कमर में लपेटकर आंचल से तीन आने निकालकर पंडित के मुंह पर मारती है और रोती हुई चिल्लाती है, महाराज घर में न गाय है न बछिया, बस अब यही तीन

0: दाने हैं, इन्हीं का गोदान है, ले लो और जान बख्श दो। तुम जैसों का पेट तो किसान की मौत से भी नहीं भरता। समय धनिया की शक्ल में प्रेमचंद ने समाज के घिसे पिटे आडंबरों और रीति रिवाजों में चकड़ी एक ऐसी औरत की तस्वीर खींची है जो गरीब है मगर उसकी हिम्मत और हौसले को सलाम है। कोई जमींदार या रस्मों के हवाले से मां लेटने वाला पंडित भी उसे पस्त न कर सका। धनिया कहती है, जब पानी सर से गुजर जाए तो डर कैसा। सामईन अब तसव्वुर कीजिए एक ऐसे किसान की लाचारी और बेबसी का जो आपकी आंखें नम कर जाएगा। पूस की रात के किरदार हल्कू के दर्द और बेबसी का, उस कपकपाती ठंड को महसूस कीजिए जो एक किसान अपनी फसल को, अपने असासे को अपनी औलाद की तरह महफूज करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता है, जी जान एक कर देता है, लेकिन वो हार जाता है हालात से। उस माहौल को महसूस कीजिए उस एक सर्द कपकपाती रात में जब अपने कुत्ते जबरा को गले से चिमटाए हल्कू बैठा है और उसकी बीवी रोते हुए आकर बताती है, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये सुनकर हल्कू रोता नहीं है बल्कि एक ठंडी सांस भरकर कहता है,
1: फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, कम से कम ठंड में इस खुले आसमान के नीचे रात को सोना तो नहीं पड़ेगा ना।
0: यानी बेबसी को ही हल्कू ने राहत का दूसरा नाम दे दिया, अपने हालात से लड़ने का हथियार ढूंढ लिया था। दरअसल प्रेमचंद के ये किरदार जिंदा हैं, आज भी हमारे आसपास। किसान, गरीबी, भूख, बेबसी, हर दौर की वो कड़वी हकीकत है जिसे आप और हम नकार नहीं सकते। चलते फिरते आम जिंदगी में आपको घीसू, माधव, धनिया और हल्कू अलग अलग नामों और किरदारों से कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे।
2: मुंशी जी के किरदारों को आज के इस अहद हाजिर के मुआशरे में सरे बाजार खड़ा करके देखते हैं कि क्या वो मुंतकिल हो चुके हैं या आज भी हमारे और आपके दरमियान सांस ले रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उनके मशहूर और मारूफ नॉवेल सेवा सदन की सुमन का। सामईन, वो सुमन और उसके जैसी मजबूर खवातीन आज भी आपको मजामीन नौ के पर्दे पर या कारखाना तिजारत के उन ऐवानों में कहीं न कहीं मिल जाएगी जहां आज का बेरहम मुआशरा उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसकी इस्मत और उसके फन की बोली लगाता है। जो जहनी कश्मकश और जो कर्ब सुमन ने उस दौर में झेला था, उसी कर्ब से आज के समाज में भी कई सुमन गुजर रही हैं। बस अगर बदला है तो नाम और पैरहन भर। वो कर्ब आज भी लादवा है। और अब सामईन जरा तसव्वुर कीजिए मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल रंग भूमि के उस गदागर सूरदास के बारे में जिसके पास महज एक शिकस्ता अराजी का टुकड़ा है। वो नाबीना सूरदास अपनी उस अराजी के लिए पूरे निजाम हुकूमत से टकरा जाता है। वो कहता है, फतह वो नहीं जो अग्यार को मगलूब कर दे, फतह तो वो है जो अपने ईमान को शिकस्त ना होने दे। और सामईन आखिरकार वो इसी माराए आराई में अपनी जान कुर्बान कर देता है। सामईन आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज वो नाबीना सूरदास कहाँ है। है सामईन, है। आज वो सूरदास आपको शहरारों के किनारे अपने पुश्तैनी अराजी सरमायादारों के हाथों छिनते हुए देखने वाले उन मफलूकुल हाल दिकान की सूरत में मिलेगा। सूरदास की बेअमा जंग आज का हर वो शख्स लड़ रहा है जो साहिब इख्तदार के आगे सरबसजूद होने से इनकार कर देता है। सामईन इकराम, यकीनन हम और आप मुंशी जी की नॉवेल निर्मला की किरदार निर्मला को भला कैसे फरामोश कर सकते हैं। दहेज की लानत की वजह से जिसका अख्त उसकी उम्र से दुगने बुजुर्ग मुंशी तोताराम से कर दिया जाता है, वही निर्मला सामईन जो घुट घुट के अपने ही शबाब के कफन में लिपट कर रहलत फरमा जाती है। जी हाँ, आज भी कोई न कोई निर्मला कहीं न कहीं निकाह के सुतूर पर अपनी उम्र, अपनी शक्ल सूरत और अपने वालिद की बिसात का सौदा करती हुई किसी अनचाहे असीर में घुट घुट कर जी रही है। दरअसल हम आज भी उसी समाज में जी रहे हैं जहाँ बेटी की विलादत पर वालिद की पेशानी पर शिकन मलाल आ जाती है। और अब जरा इस कसीरुल मजा मगर अशकामेज अफसाने को याद कीजिए। बड़े भाई साहब, जी हाँ वही बड़े भाई साहब जो शबो रोज कुतुब पीने में गर्क रहते हैं और इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं मगर तजर्बात की अजमत का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और उनका खुद भाई लहो लाभ में मसरूफ रहकर भी अव्वल आ जाता है। बड़े भाई साहब फरमाते हैं, किताबी कीड़ा होना अलग शय है और मुआशरे के नफ्स को समझना जुदा बात है। सामईन आज वो बड़े भाई साहब आपको हर उस दरसगाह तिजारत के बाहर मिल जाएंगे जहाँ पर नौनिहालों के जहन पर आज

0: फीसद नंबरों का बारे गरा मसलत कर दिया गया है। ये अंधी दौड़ें आज भी जारी हैं। आज के इस मुसाबकत के दौर में अपने लख्त जिगर को एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ा रहा है जहां सनदें तो बहुत कसीर मिल रही हैं, मगर अखलाकियत और आगाही कहीं पीछे छूट गए हैं। सच तो ये है सामईन, मुंशी प्रेमचंद ने जो तहरीर किया वो महज एक सदी कबल का गुजरा हुआ कल नहीं था, वो हमारा अहले इमरोज भी है और आने वाला कल भी। जब तक हमारे माशरे में अमीरी और गरीबी का बोध रहेगा, जब तक जज्बात का सौदा बाजार मिस्र में होता रहेगा, प्रेमचंद का एक एक किरदार जिंदा जावेद रहेगा, हमारी चश्म से झांकेगा, हमारे जमीर को झिंझोड़ता रहेगा, कचोटता रहेगा। तो चलिए सामईन, अब किरदारों की दुनिया से बाहर आते हैं, मुंशी प्रेमचंद की एक और जद्दोजहद के बंधन में बंदी की रह खोलते हैं, जो इस खुदगर्ज और तिजारती दुनिया और एक दरवेशाना मिजाज मुसन्निफ के बीच की जंग की अक्कासी करती है। प्रेमचंद ने कौम की आवाज बुलंद करने के लिए सन 1930 में अदबी जरीदा हंस निकाला, लेकिन इस जुनून शौक ने उन्हें माली मसाब के एक ऐसे दलदल में गिरा दिया जहां से बाहर निकलना मुहाल था। इस गिरह को सुलझाने की खातिर उन्होंने सिनेमा नगरी का भी रुख किया, मगर वहाँ की नुमाइश और सरमायादारी उनके सावगो मिजाज को रास न आई। आलीजा अब दिल थाम के बैठिए जनाब, क्योंकि इस दास्तान कलमकार की आखिरी गिरह के बंद खुलने जा रहे हैं, जो जिंदगी और मौत के दरमियान का सफर तमाम करेगी। बात 1936 की है, लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई, जहां मुंशी प्रेमचंद को पहला सदर मुंतखब किया गया। वहां पर वो बिजली की तरह कौंधे और फिर शेर की तरह दहाड़े।
1: हमें अदब का मेयार बदलना होगा, अब हमारा अदब मजदूरों के माथे के पसीने में चमकेगा।
0: मगर सामईन, अफसोस, मुसलसल बीमारी और मुफलिसी की मार ने उनके जिस्मो जान को निहायत लाफुलागर कर दिया था। 8 अक्टूबर सन 1936 की वो एक सर्द सुबह थी जब इस अजीम कलमकार ने इस दुनियाए फानी में अपनी आखिरी सांसें ली और जिंदगानी की ये फानी गिरह हमेशा हमेशा के लिए खुल गई।
2: जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते।
0: तो सामईन महफिल, ये थी दास्तान उस मुकद्दस कलमकार की जिसकी जिंदगी की हर गिरह ने उसके अंदर एक नए किरदार को जन्म दिया। जमाने के हाकिमों ने उनकी अदबी खिदमात के लिए यूं तो उन्हें कोई तमगा नहीं दिया, लेकिन अवाम और बंगाल के अजीम मुसन्निफ शरद चंद चट्टोपाध्याय ने उन्हें नॉवेल सम्राट के लाफानी तख्त पर बिठा दिया। उनका जिस्म भले ही खाक में मिल चुका है, मगर उनकी लाजवाल तहरीरें और उनका तिलस्म आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनके अफसाने आज भी हर उस इंसान के दिल पर हुकूमत करते हैं जिसके सीने में धड़कता हुआ एक दिल है और जिंदा जमीर मौजूद है। प्रेमचंद का एक अफसाना आज इस वक्त भी मेरे हाथों में मौजूद है और इसके औराख पलटते हुए मुझे गुलजार का एक शेर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं, कुछ आसार मिलते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए तरुण नंदी के स्वर में ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तरुण नंदी को। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं की हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। आज सदन की कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा है कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री जैन ने कहा कि आकाशवाणी ने एक विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में पहचान बनाई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा उधम सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डोरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: आज शिलोंग में 135वें डूरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के 3 क्लब शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं। इनके साथ ही मुंबई फुटबॉल क्लब भी ग्रुप ई का हिस्सा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा आज दोपहर होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी आज शिलोंग के पोलो ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेंगी। अनुमिता दास, आकाशवाणी न्यूज़, शिलांग।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे बड़े लेखक, उपन्यास सम्राट, कहानियों और उपन्यासों में समाज के कड़वे सच को बिना किसी दिखावे के पेश करने वाले, महलों के नहीं झोपड़ियों के लेखक, जिनके किसान, मजदूर और गरीब मुख्य पात्र शोषित वर्ग के दर्द को गहराई से बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा में बताने वाले लेखक की हम बात करेंगे। जी हाँ, यथार्थ का अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की हम बात कर रहे हैं। 31 जुलाई 1980 में लमही गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्मे, जिनका जीवन बहुत संघर्ष में बीता। माँ का देहांत जल्दी हो गया, सौतेली माँ मिली, घर की तंगी के कारण ट्यूशन पढ़ाना और पढ़ाई पूरी करना ये बहुत बड़ा काम था। इनका लेखक बनना भी एक बहुत संघर्ष की कहानी है। नवाब राय के नाम से 1901 में पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उर्दू में लिखी गई, उस समय नाम था नवाब राय। 1908 में कहानी सम्राट सोजे वतन आया, इसमें देशभक्ति की कहानियां थीं। अंग्रेज सरकार को ये संग्रह पसंद नहीं आया और सारी प्रतियां जला दी गईं। सोजे वतन जब्त होने के बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम रखा और हिंदी में लिखना शुरू किया। बड़े घर की बेटी ये हिंदी की पहली कहानी थी। 1901 में नौकरी छोड़कर पूरी तरह लेखन में समर्पित हो गए। उनका मानना था साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाना है।

मुंशी प्रेमचंद ने महल की कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने आम आदमी को नायक बनाया। गोदान पूस की रात में किसान की पीड़ा को लिखा निर्मला सेवा सदन, बड़े घर की बेटी में स्त्री की समस्या, ठाकुर का कुआं, सदगति में जाति और भेदभाव के बारे में, वहीं गमन रंगभूमि में भ्रष्टाचार के बारे में। अपनी पुस्तक में उन्होंने बोलचाल मिलाकर ऐसी भाषा बनाई जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों समझ जाए। नवाब राय से प्रेमचंद्र बनने तक का सफर 15 साल का था। उन्होंने कलम को हथियार बनाया और भारतीय समाज की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी।

मुंशी प्रेमचंद ने मृत्यु विषय पर प्रसिद्ध कहानियां लिखी। मृत्यु के पीछे ये कहानी सामाजिक जिम्मेदारियों, आदर्शों और पारिवारिक संघर्षों को दर्शाती है। वहीं मृतक भोज इस कहानी के माध्यम से मृत्यु के बाद होने वाले रूढ़िवादी और खर्चीले रीति रिवाजों पर कड़ा प्रहार करते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार रहे और अत्यधिक आर्थिक तंगी

बीमारी से जूझ रहे थे। मृत्यु के समय उनकी उम्र केवल 56 वर्ष थी। सबसे मार्मिक कहानियों में से एक कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, जो सीधे तौर पर मृत्यु और संवेदनशीलता से जुड़ी है। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी अंतिम सांस ली। खराब स्वास्थ्य और अचानक मृत्यु के कारण वे उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए। अधूरे उपन्यास को उनके बेटे अमृत राय ने पूरा करके प्रकाशित करवाया। उस उपन्यास का नाम मंगलसूत्र था। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने अभूतपूर्व योगदान से साहित्य का स्तर ऊंचा उठाया, उसे समृद्ध किया और समाज को एक नई दिशा दी। इसी के साथ कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं।

यथार्थ का अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, आज हमने बात किया मुंशी प्रेमचंद के बारे में वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रश्मि भारती के स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना जगत बहादुर और साथी के स्वर में ये कजरी। इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद।

स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मुंशी प्रेमचंद पर आधारित रूपक साहित्य के उन्नायक। आलेख है रणविजय सिंह सत्यकेतु का, वाचन स्वर है अतुल कुमार यादव और निखत सिद्दीकी के, संपादन है विनय श्रीवास्तव।

0: 31 जुलाई 1880 श्रावण शुक्ल षष्ठी शनिवार को लम्ही में गुरु सहाय राय के पोते के जन्म पर महिलाएं सोहर गा रही थीं। हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग के शुभ संयोग में बच्चे के आगमन पर गांव घर में खुशियां छाई हुई थीं। पिता अजय राय और माता आनंदी देवी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। चाचा महावीर ने गर्व से कहा, हमारे घर नवाब पधारे हैं।
1: सावन का महीना भारतीय संस्कृति में नवजीवन, करुणा, हरियाली और सृजन का प्रतीक माना जाता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि वृद्धि, विकास और मंगल की सूचक है। मानो प्रकृति स्वयं एक ऐसे साहित्य मनीषी के आगमन की तैयारी कर रही थी, जिसकी लेखनी किसानों की मेहनत, मजदूरों के श्रम, स्त्रियों की पीड़ा, दलितों की वेदना और सामान्य जन के संघर्ष को अमर कर देगी।
0: सचमुच धनपत राय उर्फ नवाब राय उर्फ प्रेमचंद का आगमन परिवार, समाज और साहित्य के लिए आवश्यक बारिश की तरह साबित हुआ, जिसने समझदारी के सूखेपन को एक रस बौछार से खत्म करने में महती भूमिका निभाई। अपनी सर्जना से वैचारिक हरियाली फैलाने वाले प्रेमचंद को हालांकि जीवन भर कष्टकारी और चुनौती भरे बादलों की टकराहटों का सामना करना पड़ा, लेकिन सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ा।
1: संघर्षपूर्ण और अभावग्रस्त जीवन को कलात्मक आधार देकर बाहर भीतर के यथार्थ को साहस और प्रतिबद्धता के साथ उद्घाटित करने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। जीवन की विसंगतियों, समाज की रूढ़ियों, धर्म के पाखंडों, राजनीति के कुचक्रों को ठीक ठीक पहचानने के साथ प्रेमचंद ने अपने विचार और व्यवहार से उन पर करारा प्रहार किया। मनोरंजन में डूबे, प्रशस्तियों में खोए साहित्य को हकीकत का आधार दिया।
0: बालक धनपत को कहानियां सुनने का बहुत शौक था, जिसे उनकी दादी पूरा करती थीं। कहानियां सुनने के बीच में वह सवाल भी खूब किया करते थे। दादी समझ गईं कि धनपत बहुत जिज्ञासु हैं।
2: धनपत, दादी कह रही थी कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो।
3: जी बाबूजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, नई बातें सीखना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी कहानियां जानना चाहता हूँ।
2: ठीक है, कल ही तुम्हारा दाखिला करवा देता हूँ, ध्यान लगाकर सीखना।
3: जी बाबूजी, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा।
1: 7 वर्ष की आयु में बालक धनपत राय का दाखिला पास के मदरसे में करवा दिया गया, लेकिन अगले ही वर्ष परिवार में मातम छा गया। धनपत की माँ आनंदी देवी दुनिया से चल बसी। इतना ही नहीं, कुछ ही समय बाद धनपत को पालने वाली दादी का भी निधन हो गया। जल्द विवाह होने से बहन ससुराल चली गई, बालक धनपत अकेला रह गया।
0: घर चलाने के लिए पिता अजय राय ने दूसरा विवाह कर लिया और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे धनपत राय की शादी भी करवा दी। लेकिन धनपत को न सौतेली माँ से प्यार मिला, न ही पत्नी से अपनापन हासिल हुआ। घर में रोज रोज झगड़े होने लगे। इसी बीच पिता भी दुनिया छोड़ गए। 17 साल के धनपत राय पर परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई।
1: छोटे से जीवन की इस उठापटक में धनपत का मैट्रिक का रिजल्ट खराब हो गया, आगे की पढ़ाई छूट गई। ऐसे में धनपत ने बनारस के एक वकील साहब के बेटे को पढ़ाना शुरू किया। उसके एवज में उन्हें 5 रुपए महीना मिलता था, 3 रुपए घर भेजता, 2 रुपए में अपना काम चलाता। कुछ समय बाद चुनार के एक मिशनरी स्कूल में 18 रुपए महीने की पगार पर पढ़ाने का काम मिला। इसके अलावा एक छात्र को 5 रुपए माहवार पर पढ़ाना शुरू किया।
0: जब धनपत 20 साल के हुए, बहराइच के सरकारी जिला विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में 20 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। 3 महीने बाद प्रतापगढ़ के सरकारी जिला विद्यालय में उनका तबादला हो गया। फिर इलाहाबाद में ट्रेनिंग के बाद कानपुर ट्रांसफर हुआ, जहां वह 1905 से 1909 तक रहे।

0: यहाँ उन्होंने 1906 में फतेहपुर की शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जो बाल विधवा थी। इस क्रांतिकारी कदम के लिए धनपत राय को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा।
1: अरे ये तो सरासर गलत है, अनैतिक है। अरे विधवा से विवाह, धर्म और संस्कृति का सरासर अपमान है।
2: अरे भैया हमारे समाज लिए कलंक है भाई, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए।
3: अरे तो इतना उबल काहे रहे हो भैया, सुना है लेखक है, खुले विचारों का है।
1: अरे तो क्या हम बंद विचारों के हैं? अरे रीति रिवाज तोड़ना कैसे खुला विचार हो गया?
2: अरे भैया देख लो एक बात बता दें, विशुद्ध भारतीय परंपरा का मखौल उड़ाना है अगर खुला विचार है तो हमको नहीं चाहिए।
3: अरे तो अब क्या कर लेंगे, शादी तो हो ही गई है, और ये भी बात है बहुत सख्त आदमी है, हिलेगा नहीं।
4: कई मायनों में कानपुर प्रवास धनपत राय के लिए युगांतकारी सिद्ध हुआ। वहां उनकी मित्रता जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से हुई, जिन्होंने धनपत राय के कई लेख, कहानियां और धारावाहिक उपन्यास प्रकाशित किए। हालांकि उसके पहले भी वो नवाब राय के नाम से असरारे माबिद, हम खुरमाओ हम सवाब, कृष्णा जैसे उपन्यास लिख चुके थे। गुलामी का दौर था, आजादी के प्रयास जारी थे। 1907 में नवाब राय ने भी देशभक्ति से भरी कहानियों का संग्रह सोजे वतन निकाला, जो अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आया। हमीरपुर के कलेक्टर जेम्स सैमुअल स्टीवेंसन ने राजद्रोह के आरोप में सोजे वतन को प्रतिबंधित कर सारी प्रतियां जला डाली।
5: क्या तुम ही नवाब राय हो?
6: जी मैं ही नवाब राय हूँ।
5: सोजे वतन तुमने लिखा है?
6: जी मैंने ही लिखा है।
5: सरकारी आदमी होकर भी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते हो?
6: मेरा काम केवल लोगों को सही राह दिखाना है।
5: शराब सरकार बहादुर की नजर में ये राजद्रोह है। तुम्हारी किताब लोगों में विद्रोह फैला रही है, इसलिए इसे जब्त किया जाता है। सिपाहियों इसके कमरे की तलाशी लो, सोजे वतन की सारी प्रतियां जला डालो।
0: सोजे वतन की 500 प्रतियां जब्त कर जला डाली गईं। उस समय धनपत राय उर्फ नवाब राय हमीरपुर में डिप्टी स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। जिला कलेक्टर को नाराज करने का मतलब नौकरी से हाथ धोना था, लेकिन लिखना छोड़ देना भी उन्हें गवारा नहीं था। तब मुंशी दया नारायण निगम की सलाह पर धनपत राय ने नवाब राय की जगह प्रेमचंद नाम अपनाया। इसी के साथ उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी में लिखना शुरू किया। प्रेमचंद के रूप में हिंदी को अपना सिरमौर लेखक मिला, जिसने साहित्य की दशा और दिशा ही बदल दी। यही नाम भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी पहचान बना।
4: प्रेमचंद ने रूढ़ियों के लिए समाज को झकझोरा, पाखंड के लिए धर्माधिकारियों को ललकारा, दलितों के उत्थान की आवाज बुलंद की, स्त्रियों की दशा सुधारने की राह दिखाई। राजाओं, सामंतों, पंडितों, पुरोहितों और पटवारी अधिकारियों को शोषक दिखाकर मजदूर, किसान, दलित, शोषित, विधवा, अशक्त स्त्रियों को अपनी कहानियों और उपन्यासों का मुख्य पात्र बनाया। साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे समाज का दर्पण और परिवर्तन का साधन बनाया। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियां लिखकर लोगों को मनुष्यता, न्याय और संवेदना का पाठ पढ़ाया।
0: एक साधारण अध्यापक असाधारण लेखक बन गया। संघर्ष और मुश्किलों के आगे वह टूटा नहीं, बल्कि समाज को राह दिखाने वाला सामर्थ्यवान किस्सागो बन गया। रूढ़ियों, अतार्किक रिवाजों की मुखालिफत कर सार्थक साहित्य के निर्माण को अपना धर्म बना लिया।
4: देश में आजादी के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। महात्मा गांधी ने सरकार का सहयोग छोड़ने का आह्वान किया। प्रेमचंद ने उस पर अमल किया। खुद अस्वस्थ होने, दो बच्चों और गर्भवती पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
0: इसके बाद साहित्य का निर्माण ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय हो गया। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है, जिस

0: प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं में उस दौर के समाज सुधारक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम और प्रगतिवादी अभियानों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, अंधविश्वास बनाम आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता जैसी सभी प्रमुख समस्याओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई।
1: 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रेमचंद ने भाषा और साहित्य के उद्देश्य पर सटीक बातें की, जो आज भी मानक और प्रासंगिक है।
2: भाषा साधन है, साध्य नहीं। अब हमारी भाषा ने वो रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से ये निर्माण कार्य आरंभ किया गया था वो क्यों कर पूरा हो। जो दलित हैं, पीड़ित हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्यकार का फर्ज है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वो निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।
3: कौन?
4: बाबूजी, मैं हल्कू।
3: अरे हल्कू, कैसे हो भाई?
4: हर तोड़ मेहनत के बावजूद न खेत सुरक्षित है न फसल। बाबूजी, तब भी भूखा था, आज भी भूखा हूँ। क्या मेरी कहानी कभी नहीं बदलेगी?
3: कहानी अकेले समाज नहीं बदलती हल्कू, वो समाज को सोचने पर विवश करती है। लेकिन यदि लोग सोचना समझना छोड़ दें तो कहानी कैसे बदलेगी भला? अरे निर्मला, तुम इतनी दूर सकुचाई क्यों खड़ी हो? क्या बात है?
5: दहेज की आग में जीवन जल रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, मेरी पीड़ा जस की तस है भैया जी।
3: जब तक बेटी बोझ बनी रहेगी, विवाह में सौदेबाजी होती रहेगी, तब तक तुम्हारी कहानी नहीं बदल सकती निर्मला। लोभ और दिखावा जीवन को नष्ट कर देते हैं, चरित्र को गिरा देते हैं।
6: सर, नमस्कार।
3: ओहो, प्रोफेसर मालती, क्या हाल है?
6: संतोषजनक नहीं है।
3: वो क्यों भला? अब तो महिलाएं पढ़ लिख कर ऊंचे और जिम्मेदार पदों पर पहुंच रही हैं।
6: हाँ, मगर उन्हें सिर्फ अपना विकास दिखाई दे रहा है, सेवा और त्याग को तो पितृसत्ता की चोचले समझती हैं। अच्छी नौकरी, आला परिवेश के कारण उनका इनकलाब सिर्फ आलेखों, गोष्ठियों और मंचों तक सीमित हो गया है। अब धनिया, झुनिया, सिलिया के दुखों और संघर्षों से उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है।
3: हमारी वास्तविक स्त्री शक्ति तो खेतों, खदानों और कारखानों में खप रही है, हाट बाजारों में, मेलों में, बिखरे बालों, मैले कुचैले कपड़ों और पसीनों से लथपथ। माँ बहनों के प्रति जब तक सम्मान और जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, विकास की कोई भी झलक अधूरी रहेगी। उनकी स्थिति में बेहतरी के लिए यहाँ उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मोहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ है।
1: प्रेमचंद की लेखनी ने देश को सिर्फ कहानियां और उपन्यास नहीं दिए, बल्कि सोचने की दृष्टि दी, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिया।
7: आप लोग कृपया शांत हो जाइए। हमारे सम्मानित अतिथि

0: ही सभागार में मौजूद हैं। आप सबके प्रश्नों की पर्चियां हमें मिल गई हैं, अब एक एक कर हम उनके जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले प्रेमचंद के चहेते लेखक और उनके मित्र जैनेन्द्र कुमार से प्रश्न पूछते हैं। जैनेन्द्र जी, प्रेमचंद को आप किस रूप में जानते हैं?
1: देखिए, प्रेमचंद महान यथार्थवादी थे। वैचारिक दृढ़ता और मानवीय संवेदनाओं के मामले में उनका कोई सानी नहीं, वे साहित्य के पुरखा हैं।
0: इसे थोड़ा और स्पष्ट करें।
1: प्रेमचंद साहित्य में

0: और मानवीय संवेदनाओं के मामले में उनका कोई सानी नहीं, वे साहित्य के पुरखा हैं।
1: इसे थोड़ा और स्पष्ट करें।
0: प्रेमचंद साहित्य में केवल समस्याओं का उल्लेख नहीं करते, बल्कि उन समस्याओं की तह तक जाकर मानवीय मन के सत्य को छूते हैं।
1: एक साहित्यकार के बारे में उनके क्या विचार थे?
0: लेखन के उद्देश्य के बारे में उनके दृष्टिकोण से मैं बेहद प्रभावित रहा। वह स्पष्ट कहते थे कि साहित्यकार को जीवन की सच्चाइयों से पर्दा हटाने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
1: अच्छा जैनेन्द्र जी, एक शब्द में प्रेमचंद को आप क्या कहेंगे?
0: भारत का मैक्सिम गोर्की।
1: और अब सवाल प्रेमचंद साहित्य के अध्येता डॉक्टर इंद्रनाथ मदान से। मदान जी, प्रेमचंद जी ने कहानियां क्यों लिखी?
2: देखिए, प्रेमचंद ने पाठकों के मनोरंजन या वासना संबंधी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहानियां नहीं लिखी। उनके लिए कला का स्तर बहुत ऊंचा था, जहां कहानियां और उपन्यास जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को व्यक्त करने के साधन थे।
1: अच्छा, वो आदर्श और यथार्थ का संतुलन कैसे करते थे?
2: प्रेमचंद का साहित्य एक ओर जहां शोषित और पीड़ित वर्ग की समस्याओं का यथार्थ चित्रण करता है, वहीं वो समाज में नैतिकता, सेवा, त्याग और पवित्रता का आदर्श भी स्थापित करते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, प्रेमचंद स्त्रियों के बारे में क्या सोचते थे?
2: प्रेमचंद स्त्री के कामुक या विलासिनी रूप की अपेक्षा उस छवि को महत्व देते हैं जो परिवार और समाज की धुरी है। मेरे अनुसार प्रेमचंद के साहित्य में आदर्श, त्याग, सेवा और पवित्रता ही नारी का वास्तविक आदर्श है।
1: आप प्रेमचंद को किस रूप में देखते हैं?
2: प्रेमचंद ऐसे यथार्थवादी और प्रगतिशील रचनाकार थे जो साहित्य को समाज परिवर्तन और जन जागरूकता का माध्यम मानते थे।
1: बिल्कुल। सौभाग्य से अब हमारे बीच प्रेमचंद की धर्म पत्नी शिवरानी देवी मौजूद हैं, जो खुद भी अच्छी लेखिका हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि वो प्रेमचंद को किस नजर से देखती हैं। शिवरानी जी, कृपया बताइए।
3: मैं तो उनकी सहधर्मिनी रही अच्छा ही कहूंगी। खैर, मजाक की बात अलग है। वास्तव में प्रेमचंद बेहद सादा जीवन जीने वाले, संवेदनशील और स्त्रियों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे।
1: अच्छा, उनकी पसंद क्या थी?
3: उन्हें धन दौलत की बजाय ज्ञान प्राप्त करना और समाज सेवा करना बहुत प्रिय था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद वो अपनी छोटी मोटी कमाई भी अक्सर जरूरतमंदों में बांट देते थे।
1: और उनका स्वभाव कैसा था?
3: अगर आप उनके स्वभाव की बात करें तो मैं तो बस यही कहूंगी कि वे केवल एक लेखक नहीं थे, वो आम लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाले इंसान थे। दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाया करते थे।
1: वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे?
3: अगर मेरे प्रति उनके व्यवहार की बात है तो मैं तो समझती हूँ कि मुझे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व मानते थे। घर परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में मेरी राय का वो पूरा सम्मान करते थे।
1: आपको कभी लगा नहीं कि वो पितृसत्ता के पोषक हैं?
3: नहीं, कभी नहीं। अपनी प्रसिद्धि के साए में कभी मुझे उन्होंने दबने नहीं दिया। मैं खुद एक लेखिका थी, स्वतंत्रता सेनानी भी रही। प्रेमचंद जी मेरी इस साहसी और स्वतंत्र छवि का बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे। मैं एक साधारण शिक्षक की बीवी थी, मुझे घर की स्थिति का भान था, उसे संवारना मेरी जिम्मेदारी थी।
1: पर घर संवारना तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है।
3: देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं खूब समझती हूँ। इतना जान लीजिए, आधुनिकता का मतलब सहभागिता को भुला देना नहीं है। बालक और किशोर प्रेमचंद ने अपनी दादी, अम्मा और बहन से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सौतेली माँ और पहली बीवी ने उन्हें अच्छी तरह से सिखा दिया। यही फर्क है जिसे प्रेमचंद जीवन भर नहीं भूले। आप भी मत भूलिए।
1: बिल्कुल सही कहा, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अब हम प्रेमचंद के बेटे अमृत राय जी से जानना चाहेंगे कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। कलम का सिपाही लिखकर उन्होंने अपना पक्ष हम सबके सामने रख दिया है।

0: फिर भी आज उनके मुख से ही सुनेंगे। अमृत राय जी,
1: बिल्कुल, प्रेमचंद जी कोई शांत या समझौतावादी लेखक नहीं थे, बल्कि एक योद्धा थे। उनकी कलम ने हमेशा समाज की बुराइयों, शोषितों की पीड़ा और सामाजिक असमानता के खिलाफ हथियार की तरह काम किया था।
0: अच्छा, उनमें कुछ कमियां भी थी?
1: देखिए, हर इंसान में कुछ कमियां जरूर रहती हैं। अपनी कमियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाला ही तो महान बनता है।
0: बिल्कुल।
1: उनकी जीवनी में मैंने प्रेमचंद को केवल महिमा मंडित ही नहीं किया है, बल्कि उनकी कमियां, उनके आर्थिक संघर्ष और उनके जीवन की असफलताओं को भी पूरी ईमानदारी से सबके सामने रखा है।
0: अच्छा, वो कितने साहसी थे?
1: बिल्कुल साहसी थे, साथ ही साथ प्रेमचंद में अपने सिद्धांतों के लिए किसी का भी विरोध करने का साहस था। यहाँ तक कि वे महात्मा गांधी के विचारों से भी असहमति रखने पर अपनी बात मजबूती से रखते थे, जबकि गांधी जी के आह्वान पर ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी।
0: अच्छा, उनका जीवन कैसा था?
1: बिल्कुल सादा और आम लोगों जैसा था, लेकिन उनके विचार, सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और साहस उन्हें असाधारण बनाते थे। इसीलिए मैं उनको आज भी असाधारण आम आदमी कहता हूँ।
0: अच्छा, वो हिंदी उर्दू दोनों में सक्रिय थे, कैसे सामंजस्य बिठाते थे?
1: प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु थे। दोनों भाषाओं के उत्थान और उनकी एकता के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए तो दोनों तरफ के लेखक माने गए हैं। उनकी लगभग सारी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों में ही उपलब्ध हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता को सौंपा जाना भी उनकी सर्वस्वीकार्यता और विश्वसनीयता का प्रमाण है।
0: बिल्कुल।
2: हिंदी में लिखी प्रेमचंद की पहली कहानी सौत दिसंबर 1915 में प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में छपी और पहला कथा संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। 1918 में हिंदी में पहला उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ, जिसकी अपार लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया।
3: नौकरी छोड़ने के बाद 18 मार्च 1921 को प्रेमचंद गोरखपुर से बनारस वापस चले गए और जीवन के आखिरी क्षणों तक साहित्य सेवा में लगे रहे। इस बीच उन्होंने सरस्वती प्रेस स्थापित किया, हंस पत्रिका शुरू की, जागरण, मर्यादा और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया।
2: हर नई रचना के साथ उनका लेखन निरंतर उच्च स्तर प्राप्त करता रहा। उन्होंने निरंतरता के साथ प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। उन्होंने करीब 300 कहानियां लिखी।
3: प्रेमचंद ने 3 नाटक भी लिखे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। वो सफल निबंधकार भी थे। टॉलस्टॉय की कहानियां, गॉल्सवर्दी के 3 नाटकों हड़ताल, चांदी की डिबिया, न्याय और रतननाथ सरसार के उपन्यास फसानाए आजाद का भी अनुवाद किया।
2: सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेमचंद 1934 में बंबई पहुंचे। अजंता सिनेटोन प्रोडक्शन हाउस में पटकथा लेखन का काम स्वीकार किया, इस उम्मीद से कि 8000 रुपए का वार्षिक वेतन उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। फिल्म मजदूर की पटकथा लिखी और मजदूर नेता का छोटा रोल भी किया, लेकिन व्यापारियों और मिल मालिकों ने फिल्म पर रोक लगवा दी। दुर्योग रहा कि उनके खुद के सरस्वती प्रेस में मजदूरों ने हड़ताल कर दी।
3: बेहद संवेदनशील और ईमानदार रचनाकार को बॉम्बे फिल्म उद्योग का गैर साहित्यिक व्यवसायिक वातावरण पसंद नहीं आया। अनुबंध के 1 साल पूरा होने से पहले ही प्रेमचंद ने 4 अप्रैल 1935 को बॉम्बे छोड़ दिया। बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक हिमांशु राय ने मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अंततः प्रेमचंद बॉम्बे से बनारस लौट आए।
2: लेकिन सिनेमा के दिग्गज निर्देशकों ने प्रेमचंद की रचनाओं को पूरा सम्मान दिया। उनके देहांत के 2 साल बाद 1938 में सुब्रमण्यम ने उपन्यास सेवा सदन पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने भूमिका निभाई थी। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। शतरंज

0: के खिलाड़ी और सदगति। रणाल सेन ने कफन कहानी पर तेलुगु में फिल्म बनाई। गोदान और गबन उपन्यास पर भी फिल्में बनी। 1980 में उपन्यास निर्मला पर टीवी धारावाहिक बहुत लोकप्रिय हुआ।
1: बॉम्बे छोड़ने के बाद प्रेमचंद इलाहाबाद में बसना चाहते थे, जहां उनके बेटे श्रीपत राय और अमृत राय पढ़ाई कर रहे थे। यहीं से हंस प्रकाशित करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन आर्थिक स्थिति और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें हंस को भारतीय साहित्य परिषद को सौंपना पड़ा और बनारस लौट जाना पड़ा।
0: 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में सर्वसम्मति से प्रेमचंद को अध्यक्ष चुना गया। भाषा, साहित्य और लेखक के उद्देश्य पर दिए गए प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण को आज भी मानक माना जाता है। इस वक्त तक प्रेमचंद भारतीय साहित्य के शीर्षस्थ रचनाकार मान लिए गए थे।
1: संघर्ष और शरीर की भी एक हद होती है। आर्थिक परेशानी में फंसे प्रेमचंद की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। शरीर थक गया था, कोई उपचार काम न आया। आखिरकार 8 अक्टूबर 1936 को आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी के दिन हिंदुस्तानी साहित्य के महान कथाशिल्पी ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली।
0: धार्मिक सामाजिक पाखंड, राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, छुआछूत, स्त्रियों के साथ नाइंसाफी, गरीबों किसानों के शोषण के खिलाफ बेखौफ कलम चलाने वाले भारत के चितेरी रचयिता प्रेमचंद ने गरिमापूर्ण संघर्ष और ईमानदारी के रास्ते दिखाए, जिन पर चलकर मनुष्य होने का कर्तव्य निभाया जा सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद पर आधारित रूपक साहित्य के उन्नायक। आलेख था रणविजय सिंह सत्य केतु का, भाषण स्वर थे अतुल कुमार यादव और निखत सिद्दीकी के, संपादन थे विनय श्रीवास्तव, प्रतिभागी थे विनय श्रीवास्तव, अभय कांत तिवारी, अभिनव प्रज्ञ पांडे, वंदना राठौर, रीता रानी, कंचन पांडे, रितेश शुक्ल, दुर्गेश यादव और ओम श्रीवास्तव। प्रस्तुति थी दीपक कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग प्रयागराज। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो बस मौसम नहीं होते, वो अपने साथ एक पूरा एहसास लेकर आते हैं। अगस्त का महीना कुछ ऐसा ही होता है ना दोस्तों। प्रयागराज में कहीं हल्की सी बारिश हो रही होती है, कहीं अचानक तेज फुहार देखने को मिलती है और कहीं सड़कों पे पानी की चमक, चाय की वो गर्मा गर्म प्याली और उस पर बारिश की टप टप, और फिर वो अपना शहर वाला अंदाज। अरे भाई, 5 मिनट पहले ही तो धूप थी और अब ये बादल कहाँ से आ गए। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ आसमान से बारिश नहीं होती, नोटिफिकेशंस की भी बारिश होती है। जो हमारे सोशल मीडिया मैसेजेस होते हैं, लिंक्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, ईमेल पर जो अलर्ट्स आते हैं, अननोन नंबर से कॉल आते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाया जाता है, और फिर एक दिन अचानक से कोई ऐसा मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लाखों रुपए जीते हैं। कभी कोई कहता है आपका KYC एक्सपायर हो गया है, तो कोई कहता है बस इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, कोई कहता है 10,000 लगाइए और अगले महीने 20,000 पाइए, और कोई कहता है क्रिप्टो, बिटकॉइन या स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर ऐसी चमकदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख देते हैं कि लगता है भाई इससे बेहतर चांस आगे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। यही वो जगह है जहां हम थोड़ा रुकना चाहते हैं, हमें थोड़ा

सोचना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्या द्विवेदी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट यूथ प्रोग्राम यूथ एक्सप्रेस। आज की हमारी बातचीत बेहद जरूरी है, बेहद खास है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वाइबिंग है, क्योंकि हम उस जेनरेशन का हिस्सा हैं जिसकी पढ़ाई ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन है, बैंकिंग ऑनलाइन है, दोस्ती भी ऑनलाइन है, और आज तो करियर अपॉर्चुनिटीज भी ऑनलाइन है। यानी हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन के उस पार है, और जब हमारी जिंदगी डिजिटल होती है ना, तो हमारा अलर्ट रहना भी और ज़्यादा अलर्ट होना ज़रूरी हो जाता है डिजिटल युग में। आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या हम स्मार्ट हैं? क्या ये सिर्फ स्मार्टफोन पर चलना जानते हैं? क्योंकि साइबर क्राइम का सबसे खतरनाक हिस्सा ये भी होता है कि आपके कंप्यूटर में वो कहाँ पे है, किस तरीके से बैठा है, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार साइबर क्राइम की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद एक लिंक खोलते हैं, खुद कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं, खुद किसी अननोन व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और खुद जल्दी में कोई पेमेंट कर देते हैं, और वहीं से शुरू होता है एक अलग दुनिया का सफ़र। यानी असली लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है, असली लड़ाई आपकी जल्दबाजी से है, डर और भरोसे के साथ है। और यही वो वजह है कि आज हमारे साइबर क्राइम को हैकर की हुडी और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठी किसी विलन की तरह नहीं देखना है। आज साइबर क्राइम हमें, साइबर क्रिमिनल कभी हमें फ्रेंडली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर आता है, तो कभी बैंक ऑफिशियल बनकर, कभी पुलिस ऑफिसर बनकर, और कभी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बनकर, कभी रिक्रूटर बनकर, और कभी ऑनलाइन फ्रेंड बनकर। दोस्तों, इस पर बातें अभी बहुत सारी होंगी, क्योंकि अलर्ट रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, इस ब्रेक के बाद हम वापस आ गए अपने प्रोग्राम यूथ एक्सप्रेस पे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर हमारे सामने कौन कौन से स्कैम्स हैं जिन्हें आज युवा सबसे ज़्यादा समझ नहीं पाता है और सावधान रहने की इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं फेक लिंक्स की और फिशिंग स्कैम की। आपके पास मैसेज आता है, आपका पार्सल होल्ड पर है, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपकी KYC अपडेट नहीं हुई है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, या फिर आपके नाम कोई लीगल कंप्लेन है, और नीचे दिए हुए लिंक पर बस एक क्लिक कीजिए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कई बार ये वेबसाइट्स बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसी दिखती हैं, लोगो भी, लैंग्वेज भी और डिज़ाइन भी। आपको लगता है कि आपने बैंक, डिलीवरी कंपनी या फिर किसी सरकारी सर्विस वेबसाइट पर लॉगिन किया है, लेकिन असल में वो फेक वेबसाइट होती है जिसका मकसद आपका लॉगिन कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, OTP या दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करना होगा। RBI और CERT लगातार ऐसे फिशिंग और इम्पर्सनेशन फ्रॉड्स को लेकर थोड़ा सावधान कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहला गोल्डन रूल होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए कि अननोन लिंक देखते ही स्टॉप, पहले वेरीफाई करें फिर क्लिक करें। किसी भी मैसेज में आए लिंक को सीधा जाने के बजाय संबंधित सर्विस या ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऐप खुद खोलिए। किसी अननोन लिंक, APK या फिर इंस्टॉल ऐसी फाइल्स को इंस्टॉल मत कीजिए। CERT ने 2026 में फेक ई चालान RTO मैसेजेस के जरिए ऐसे एंड्रॉयड APK जो फाइल्स होती हैं इसके बारे में चेतावनी भी जारी की है। अब आते हैं उस स्कैम पर जिसका नाम सुनते ही आजकल बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। हमारे सोशल मीडिया पेज पर, यानी उस पर एक पेज आया है, कोई फीड आई है, टेलीग्राम पर कोई ग्रुप आया है, व्हाट्सएप पर कोई एक्सपर्ट आया है और हमारे सामने दावा करता है हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए, गारंटीड प्रॉफिट होगा, हमारे पास इनसाइडर स्ट्रैटेजीज हैं, मार्केट से रोज कमाएं, 5,000 लगाएं और 10,000 निकालें। शुरुआत में कभी कभी आपको छोटा सा प्रॉफिट दिखाया भी जाता है ताकि आपका जो भरोसा है ना वो एकदम बैठ जाए उनके ऊपर, फिर आपसे ज़्यादा पैसे लगाने को कहते हैं और जैसे ही विड्रॉल की बारी आती है आपके सामने आ जाता है प्लेटफॉर्म चार्जेस भरिए, प्रोसेसिंग फीस दीजिए, PDF चार्जेस या फिर ITF जैसे चार्जेस दिखा के आपसे ढेर सारे पैसे वसूलते हैं, अकाउंट एक्टिवेट कराइए, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराइए, तब जाके आपको आपके पैसे मिलेंगे और फिर ना पैसा, ना एक्सपर्ट, ना ग्रुप। 14C ने फेक ट्रेडिंग एप्लीकेशन, सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स और अनरियलिस्टिकली हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट ऑफर्स के बारे में बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। इसलिए याद रखिए, प्रॉफिट जो है उसकी कोई गारंटी आप जब भी ऐसे सुने तो आप सबसे पहले उसमें प्रॉफिट नहीं खतरा देखिए। और हाँ, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के नाम सुनते ही आपको इसलिए भरोसा करना कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो है वो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहा है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो वॉलेट, माइनिंग, USDT, बिटकॉइन ट्रेडिंग बोट, ये शब्द इम्प्रेसिव बहुत लगते हैं, लेकिन कोई भी टेक्निकल शब्द किसी भी ऑफर को ऑटोमेटिकली जेन्युइन नहीं बना देता। टेक्नोलॉजी समझना अलग बात है और किसी अननोन व्यक्ति के हाथ में पैसा देना बहुत अलग बात है, खासकर सोशल मीडिया पर मिलने वाले इन्वेस्टमेंट ऑफर्स में पहले प्लेटफॉर्म, कंपनी और एडवाइज़र की जो वेरिफिकेशन है वो ज़रा चेक कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। और अब जो छोटी सी बात अगर मैं कह दूं तो वो है, जो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि फेक जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स, घर बैठे रोज़ कमाए 5,000 रुपये, बस लाइक कीजिए, सिंपल डेटा एंट्री, कैप्चा भरिए और लाखों कमाइए, रजिस्ट्रेशन फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंबरशिप अपग्रेड, धीरे धीरे आप कमाने नहीं पैसा जमा करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सभी आपके लिए जो आज हम कहते हैं ना एक रेड फ्लैग वो रेड फ्लैग्स हैं, इनसे दूर रहिए और अपने पैसों को ऐसी किसी भी फालतू जगह पर लगाने से साफ साफ बचिए। अगर कोई जॉब आपसे काम शुरू करने से पहले ही पैसा मांग रही है तो एक बार रुकिए, पूछिए नौकरी है या कोई जाल।

सुनता दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूथ एक्सप्रेस और आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम और साइबर अवेयरनेस की। अब आते हैं एक ऐसे स्कैम पर जिसने लोगों के डर को ही हथियार बना लिया है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। मतलब किसी का फोन आता है, आपके नाम से इलीगल पार्सल मिला है या फिर आपके फ़ोन से किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी की गई है, और मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफिस से, तो आप बेशक डर जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आपका आधार किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल हुआ है, आपके खिलाफ केस है, आपको वीडियो कॉल पर रहना होगा, किसी से बात मत कीजिएगा, कैमरा बंद मत कीजिएगा, और फिर शुरू होता है प्रेशर। याद रखिए, साइबर क्रिमिनल्स अक्सर अथॉरिटी का डर पैदा करते हैं। RBI ने भी इम्परसिनेशन और इंटिमिडेशन और सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड्स को लेकर चेतावनी जारी की है। ऐसे समय में पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। कोई जेन्युइन अथॉरिटी आपको डराकर, लगातार प्रेशर बनाकर और तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर नहीं करता। और आपके नाम पे अगर वाकई में कोई अरेस्ट वारंट होगा तो आपको थाने से डायरेक्ट फ़ोन किया जाएगा कि आप वहां पर आकर अपनी सिग्नेचर्स या अपनी हाज़िरी लगाएं। कोई भी पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस आपको फ़ोन करके इस चीज़ के लिए पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगेगा, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सतर्क रहें। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, OTP आपका सीक्रेट है, UPI पिन आपका सीक्रेट है, पासवर्ड आपका सीक्रेट है। कोई भी बैंक ऑफिशियल, कोई भी कस्टमर केयर एजेंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, कोई दोस्त का दोस्त या कोई भी आपकी सेंसिटिव बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो पहले वेरीफाई कीजिए। दोस्तों, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा रुकिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि साइबर फ्रॉड में कई बार सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं, सोशल इंजीनियरिंग होती है। यानी सामने वाला आपको हैक नहीं कर रहा, आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, कभी डर से, कभी लालच से, कभी अर्जेंसी से, कभी भरोसे से। और इसलिए आज का हमारा साइबर सेफ्टी फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रुकिए, सोचिए, जानिए और फिर एक्शन लीजिए। जिस समय मैसेज में लिखा हो अभी करो, वहीं सबसे पहले खुद को रोकिए और मन में बताइए कि पहले वेरीफाई कर लेते हैं। जिस ऑफर में लिखा हो 100% गारंटी रिटर्न, वहीं पूछिए रिस्क कहाँ है। जिस जॉब में लिखा हो पहले पैसे भेजो, वहीं पे आप अपने आप को रोक दीजिए, क्योंकि कमाने तो मैं आया हूँ या जमा करने। जिस लिंक में लिखा हो अर्जेंट, वहीं याद रखिए अर्जेंसी उसको हो सकती है लेकिन फैसला मेरा होगा। और दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात, आपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी अपने सीरियसली लेना शुरू कीजिए। स्ट्रॉन्ग और अलग पासवर्ड बनाइए, जहाँ संभव हो वहाँ 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कीजिए। अननोन डिवाइसेस या लॉगिन एक्टिविटी चेक करते रहिए। पब्लिक जगहों पर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओपनली शेयर मत कीजिए। अपना OTP, पिन, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ मत शेयर कीजिए, क्योंकि RBI भी कहता है दोस्तों, जानकार रहिए, सतर्क बनिए।

तो दोस्तों अब आते हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पे, क्योंकि हमने बहुत सारे अवेयरनेस की बात तो कर ली कि अगर गलती से हमारे साथ स्कैम हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही छोटी बात कही जाती है दोस्तों, लेकिन वो थोड़ी सी सुनने में कड़वी है कि समझदारी का और पढ़ाई का कोई मेल नहीं है, क्योंकि समझदार इंसान भी कभी ना कभी फ्रॉड का शिकार हो ही जाता है। तो बात यह है कि अगर हम स्कैम का शिकार हो जाए तो हम क्या करें? सबसे पहले शर्मिंदा होना बंद कीजिए। मैं कैसे फंस गया, लोग क्या कहेंगे, घर में कैसे बताऊंगा, कैसे ये बात फैल जाएगी तो फिर लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, ये सब सोचना बाद की बात है दोस्तों। ये सोचिए कि नुकसान और भी बढ़ सकता था, और जैसे ही आपके साथ ऐसा कुछ हो, 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर तुरंत ही साइबर सिक्योरिटी में आप इसकी रिपोर्ट करें। अगर फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ है तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर रिपोर्ट कीजिए, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिए। आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल के अनुसार 1930 साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो तुरंत ही वेरीफाई की जाएंगी, तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स, स्क्रीनशॉट, फोन नंबर्स, मैसेज लिंक्स और पेमेंट रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड में सबसे ज़्यादा स्पीड मैटर करती है। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और उतनी ही जल्दी आपके पैसे रिकवर होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों आज की पूरी बात बस यही थी कि एक लाइन में मैं से बस समेटना चाहूँगी कि डिजिटल दुनिया में स्मार्ट वही है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रिक्स को भी पहचानता है। हम ऑनलाइन हैं तो अलर्ट भी ऑनलाइन रहना पड़ेगा। हमारे साथ फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हम समझदार बनेंगे, सतर्क रहेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो बेशक हमारे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो चेन है ये भी बनाया ही ह्यूमन का है, और इसे तोड़ भी एक ह्यूमन ही सकता है। तो आप अलर्ट रहेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता।

तो दोस्तों आज इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद कि हर चमकता हुआ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सोना नहीं होती, तो आप इस आज की पूरी बातचीत से थोड़ा सा तो अलर्ट हुए ही होंगे कि कोई भी पेज, कोई भी अननोन इन्वेस्टमेंट मैसेज, कोई भी लिंक, कोई भी आपका ऐसा ग्रुप हो जिसमें आपसे पहले पैसे मांगे जाएं या फिर आपसे पहले कहा जाए कि आप इस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो पैनिक मत कीजिए, कॉल लगाइए 1930 पर और तुरंत रिपोर्ट रजिस्टर कीजिए। तो हमारा जो आज का इतना ब्यूटीफुल सा यूथ एक्सप्रेस था, इसी के साथ ख़त्म होने को है, समाप्त होने को है। और आप अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिए yuvvaniald@gmail.com और 8004926250 पर। इसी के साथ मैं दिव्या द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्रोग्राम। गुड बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे यूथ एक्सप्रेस मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 126 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12 बज रहे हैं। लीजिए आप सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन

0: प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपने स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 6:30 पे विश्व रेजर दिवस पर चर्चा होगी हेलो पंचायत घर पे। शाम 7:31 पे संस्कृत कार्यक्रम होगा, इसके अंतर्गत सुनिए हरिदत्त शर्मा का काव्य पाठ। शाम 7:45 पे सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, इसके अंतर्गत SK घोष के गाए गीत व भजन होंगे।

रात 8 बजे संसद समीक्षा होगी, जो कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा। रात 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण।

लीजिए आप सुनिए खोए हुए व्यक्तियों की सूचना। चंद्रेश पटेल की सूचना के अनुसार शुभम पटेल, आयु 18 वर्ष है, चेहरा लंबा है, इकहरा मजबूत बदन है, आंखें सामान्य हैं। इनकी जन्म तिथि 15 जुलाई 2007 है, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है, बाल काले हैं, इन्होंने गुलाबी शर्ट, काला पैंट और हवाई चप्पल पहन रखी है। ये 1 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें। चंद्रशेखर कुमार पटेल, पुत्र सुमेर पटेल, निवास ताजुद्दीन मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 9462891706।

लीजिए एक और सूचना सुनिए। शिवप्रसाद दुबे की सूचना के अनुसार हेमंत कुमार दुबे, इनकी आयु 45 वर्ष है, दोहरा बदन है, चेहरा गोल है, सामान्य काली आंखें हैं, ऊंचाई 5.5 फीट है, रंग गोरा है, इनके बाल काले हैं, इन्होंने सफ़ेद पैंट शर्ट पहन रखा है। ये 1 अगस्त 2025 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दे, सोनपुरा अफसरा देव देवसरा जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 9467087921। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाहिद परवेज का सितार वादन राग है शुद्ध सारंग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाहिद परवेज का सितार वादन। राग था शुद्ध सारंग, तबला पे संगत की थी अनूप कुमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं चिरमिरी कुबासरा खालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी हमारे साथ हैं। तो इंद्रभान जी, कौन सा गीत चुना है आपने?
1: आज मैं सुनूंगा मेरा फिल्म का नाम है जॉन, और गीत के बोले वो खाई के पान बनारस वाला, गायक किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन जी का फिल्म का गाना है। सबसे पहले गीत आपको, निर्देशक साहब को, प्रयागराज में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, पूरे भारत
0: आपको सुनवा रहे हैं डॉन फिल्म का ये गाना।
2: ओ खई के पान बनारस वाला।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
2: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
1: एमपी से हारून जी ने कॉल की, तो हारून जी कौन सा गीत चुना है आपने?
2: जी फिल्म का नाम है जान की कसम।
1: जी
2: गाने के बोल हैं बरसात हो रही है, बरसात होने दे।
1: और आपकी तरफ भी बरसात हो रही है?
2: जी हमारे इधर भी मौसम बना हुआ है, अभी सुबह बारिश भी हो रही थी।
1: चलिए अच्छी बात है कि बारिश तो होनी ही चाहिए ताकि हम लोग भी इन बूंदों का आनंद ले सकें और गरम गरम चाय भी पी सकें साथ।
2: चाय भी लेकिन मक्का का और सोयाबीन की फसल के लिए जरूरी है ना
1: जी,
2: बारिश।
1: जी जी बिल्कुल, फसलों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हारून जी आपकी पसंद का जान की कसम फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: इस दुनिया में अगर रेडियो ना होता तो चैन सुकून किस अदाओं पे खोता। राजेंद्र कुमार नाम है मेरा, पर प्यार से लोग मुझे कहते हैं विविध भारती के श्रोता।
0: विविध भारती के श्रोता राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। तो भाई राजेंद्र जी, कौन सा गीत चुना है?
1: हाँ, गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ से मैं राजेंद्र हूँ और फिल्म का नाम है सावन को आने दो।
0: जी, सावन को
1: और
0: आने दो,
1: इसके
0: सावन आ गया।
1: को मैं ढालूंगा। जी जी हाँ, सावन आ गया और सावन
0: तो
1: में
0: लग
1: आपकी
0: चुका
1: हमारी
0: है।
1: बातचीत भी हो
0: जी
1: रही है।
0: जी सावन तो लग चुका है।
1: जी
0: तो भाई सावन वाला गीत राजेंद्र जी ने फरमाइश की है, सावन को आने दो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: किसी नाम लेना चाहते हैं मैम
0: हाँ
1: दोस्तों
0: हाँ
1: के?
0: हाँ हाँ लीजिए।
1: हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति ने बहुत नियमित सोता है
0: जी
1: इस पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम के, और अक्सर उनका फोन भी आता है, हम लोग सुनते भी हैं।
0: हाँ हाँ
1: और इन्हीं में से हमारे प्रभाकर तिवारी भी हैं जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
0: जी जी
1: जी हाँ, और विकास जी हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं।
0: हाँ
1: हाँ, ये भी हम मतलब इनका भी हम नाम लिए, नितेश आर्या हैं, ये सारे रेगुलर कॉलर हैं इस फोन इन कार्यक्रम के। तो
0: जी
1: इन सब के लिए डेडिकेटेड गीत रहेगा और सभी सुनने वाले श्रोताओं को।
0: देखिए कितनी अच्छी बात है। इन सब से चाहे आपकी भले ही मुलाकात ना हुई हो, लेकिन आप लोग एक मित्रता की डोर में बंध गए हैं और एक दूसरे का नाम ज़रूर लेते हैं।
1: जी जी मैम जी
0: तो ये बहुत ही अच्छा मंच है अपने साथ लोगों को जोड़ने का, और हम तो जोड़ते ही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन हमारे श्रोताओं ने खुद को दूसरे श्रोताओं के साथ जोड़ लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: हेलो फरमाइश, माननीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दीदी बहुत अच्छा प्यारा सा खूबसूरत गीत तहसील महमूद साहब ने गीत को गाया है,
0: जी
1: रिम झिम की ही प्यारी प्यारी जी दिल्ली, फिल्म का नाम है उसने कहा था।
0: जी हाँ, और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है सलिल चौधरी जी का, और शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने मथुरा से कॉल करके इस गाने को सुनना चाहा है। तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: शुक्रिया से बोल रही हूँ।
1: जी रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में आपका। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम जी, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है,
1: जी हाँ सावन
0: आगे
1: भी लग
0: सीने
1: गया।
0: में फिर वो लग पड़ी है।
1: क्या बात है, सावन भी लग गया और सावन की झड़ी भी लग गई। बहुत अच्छा
0: ये तो गाना।
1: गाना। अच्छा रेखा जी, सावन में कौन कौन से व्यंजन बनाती हैं आप, कुछ बताएंगी?
0: मैडम जी, जैसे लड्डू हो गया बेसन का,
1: अच्छा
0: और खोए का मिठाई हो गया।
1: अच्छा अच्छा अनरसा नहीं बनाती?
0: नहीं, मैं अनारसा बनाना नहीं आता है, पर
1: हाँ
0: ठुकवा बनाते हैं महुआ का और ये मैदा का मालपुआ।
1: अच्छा। वैसे मैंने देखा है कि सावन के आते ही घेवर और अनरसे की बहार आ जाती है,
0: हाँ मैम,
1: ये तो सावन में जरूर बनते हैं और सावन ही में ही बनते हैं, और उसके बाद तो दिखने ही बंद हो जाते हैं।
0: यस मैम।
1: तो चलिए हम मिठाइयों की बात बाद में करेंगे, और पहले आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का ये गाना। आवाज़ है सुरेश पाटेकर की, लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 31 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पंचायत कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे प्रोफेसर SD मेकार्टी। आप अपने प्रश्न शाम 6:30 से 7:15 तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423-649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-2423-649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे। हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर

इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

की तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग मुनक़िद हुई। इस दौरान वर्चुअल डायलॉग के खाका और दीगर तैयारियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। पूरी कौम आज इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी शहीद उधम सिंह को उनकी 87वीं यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश कर रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अजीम मुजाहिदीन आज़ादी सरदार उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में वज़ीर आला ने लिखा कि अजीम मुजाहिदीन आज़ाद सरदार उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर आजिज़ाना खराज अकीदत, जिन्होंने मादर वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जिस बहादुरी और हिम्मत का मजहरा कि वह हिंदुस्तान की तारीख में सदियों तक मिसाली रहेगी। वहीं आज नावल और मुख्तसर कहानी के मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद की 146वीं यौम पैदाइश है। अदब में उनका मकाम बेमिसाल है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नावल के बादशाह मुंशी प्रेमचंद को उनके यौम पैदाइश पर आजिज़ाना खराज अकीदत पेश किया। गोदान गबन और रंगभूमि जैसी लाजवाल तख्लीकात लिखी। उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए हिंदुस्तानी समाज की हसासतियों को जद्दोजहद और हकीकतों का भरपूर इजहार किया। मुंशी प्रेमचंद यौम पैदाइश के मौके पर उनके आबाई गाँव लम्ही में मुंशी प्रेमचंद मेमोरियल में एक अजीमुशान फेस्टिवल 2026 का इनेकाद किया गया। रियासती हुकूमत ने श्रावण माह और कांवड़ यात्रा के पुरमन महफूज इनकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इकदाम किए हैं। इंतजाम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी एसपी गोला और पुलिस के डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्णा ने कल बरेली में बरेली और मुरादाबाद डिवीजन के जिला मजिस्ट्रेटों और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अहदेदारों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजनौर जिले में शदीद बारिश के पेश नज़र जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। सैलाब जैसी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम वक्त से पहले कर लिए गए हैं। कलीदी तैयारियों में हर तहसील के सतह पर 32 फ्लड पोस्ट, 35 फ्लड शेल्टर्स, 5 कंट्रोल रूम और 25 कश्तियां फौरी रिलीफ और रेस्क्यू के लिए मख्तस है। इंतजामिया दरियाओं के पानी के सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए है। वाराणसी से अयोध्या जाने वाली एक टूरिस्ट क्रूजर गाड़ी जुमे की सुबह तकरीबन 5:15 बजे लंबा इलाके में हादसे का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश के शिवदी के रहने वाले तकरीबन 15 यात्री सवार थे। रास्ते में अचानक पीछे का टायर फट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए लम्बा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और मेडिकल टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई और जख्मियों का इलाज शुरू कर दिया। रियासत के कई अजला में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत के डायरेक्टर जनरल और पुलिस डीजीपी को बलिया पुलिस कांस्टेबल के मुबैना ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि रियासत में अमन अमान बरकरार रखने के बजाय पुलिस स्टेशन मुसलसल तजारती सरगर्मियों में मसरूफ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो रहे हैं। लीजिए अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: खुशी एक महक की तरह होती है। जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे, दूसरों को कैसे महका सकते हैं?
1: इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। मैं गुंजन
0: और मैं पूनम।
1: श्रोताओं नमस्कार।
0: बहनों, अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय। जैसे कि कभी दूषित पानी की वजह से, कभी सड़कें खराब होने की वजह से, कभी धूल मिट्टी

0: और यदि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गीली सड़कों की वजह से गिरने का डर। तो अब ये जो भी समस्याएं हो रही हैं वो दूषित पर्यावरण की वजह से ही हो रही हैं, जिसे शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं।
1: लेकिन घर परिवार में पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत सबसे पहले हम महिलाओं से ही होती है ना? जल और बिजली की बचत, रसोई के कचरे का उचित प्रबंधन, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का यूज करना, है ना? और अपने परिवार के सदस्यों को भी

0: बचत, रसोई के कचरे का उचित प्रबंधन, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का यूज करना, है ना, और अपने परिवार के सदस्यों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, ये सब ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भाई हमारी जिम्मेदारी है। इनमें प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना भी हमारी पहली प्राथमिकता होती है।
1: हाँ, और इसके साथ ही जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर अगर हम जैविक खाद और प्राकृतिक तरीकों को अपनाना शुरू करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, जल प्रदूषण कम होगा, जिससे पर्यावरण भी काफ़ी हद तक हमारा सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल, लेकिन इसका आपको पता है कि इसकी शुरुआत यानी कि पर्यावरण सुरक्षा की पहल सबसे पहले हमें खुद से यानी स्वयं से ही अपने घर से करना होगा। क्योंकि देखो, सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, उसकी सही ढंग से देखभाल करके उसको बचाना भी पड़ता है भाई।
1: और साथ ही गुंजन, जैसे कि हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे पेड़ लगाना चाहिए जो कि हमें लाभदायक हो हमारे लिए और जो कि आगे चल के हमें काम दें, जैसे कि बरगद के पेड़ हो गए या नीम के पेड़ हो गए या फिर और पेड़ हो गए। जैसे कि होता है ना कभी कभी कि जो भी पेड़ मिल जाए उसको लगा दिया, चाहे वो जंगली पेड़ हो चाहे जैसा पेड़ हो, तो वैसा नहीं करना है। और बहनों, हमारे और प्रकृति के बीच में एक दूसरे के सम्मान के साथ साथ भरण पोषण का भी गहरा रिश्ता है, और प्रकृति के साथ सभ्यता संस्कृति के इस रिश्ते को महिलाओं ने बहुत ही बखूबी निभाया भी है और संवारा भी है। और हमारा पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त उपहारों में से ही एक है, और उसकी पूजा करने से हमारी परंपरा ने इस रिश्ते को और भी गहरा बना दिया है।
0: तुलसी विवाह हो, अक्षय नवमी, वट सावित्री पूजा, छठ पूजा, इन सभी के जरिए खासकर महिलाओं ने इसमें जो एक है अपना एक स्पिरिचुअल यानी एक आध्यात्मिक अपना रोल बखूबी निभाया है। पर्यावरण संरक्षण की पहल करना हमारी विशेष और अति आवश्यक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारी अमूल्य संपदा है जो कि हमें ऑक्सीजन, फल फूल देने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, सूखा और बाढ़ जैसे भाई कई आपदाओं से भी बचाता है।
1: बिल्कुल, और वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण गंभीर संकट का सामना हम सबको करना पड़ रहा है ना?
0: तो फिर बहनों, आइए बातें हम और भी करेंगे, पर उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस प्यारे से गीत के साथ अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता प्रेमचंद के कथा संसार की स्त्रियां, पीड़ा से प्रतिरोध तक। वार्ताकार हैं डॉक्टर सरोज सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: प्रेमचंद हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो स्त्री के प्रश्नों पर वैज्ञानिक समझ का परिचय देते हैं। उनके लिए स्त्री और उसकी समस्या राष्ट्रीय एवं लिंगीय समस्या है। प्रेमचंद के कथा संसार की स्त्रियां किताबी चरित्र नहीं है। उन्हें लेखक ने अपने जीवन क्रम में अपने समय और समाज से मुठभेड़ करते हुए खुली आंखों से देखते परखते हुए अपने आसपास की दुनिया से हासिल किया है। प्रेमचंद का कथा संसार बहुत विपुल है। उनके इस कथा संसार की स्त्रियां नवजागरण की चेतना से अनुप्राणित हैं। वे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, पारिवारिक संपत्ति का अधिकार के समर्थक थे तथा बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह और पर्दा प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने स्त्री के शोषण को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उठाया। उनका मानना था कि शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर स्त्री ही सही मायनों में समाज की शक्ति बन सकती है और तभी वह इस पुरुष वर्चस्व वाले समाज में शोषण, अन्याय और अतिचार के खिलाफ लड़ सकती है। उनकी अनेक कहानियां और उपन्यास ऐसे हैं जिसके चरित्र कालजयी हैं। उनकी नारियां पीड़ा को झेलती तो हैं लेकिन

उसके खिलाफ उठकर खड़ी भी होती हैं। अनेक प्रकार की स्त्रियों के समस्याओं को उन्होंने उभारा है। प्रेमचंद ने अपने कथा संसार में स्त्री के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसकी जिंदगी से जुड़े सवाल उभारे हैं। उनके उपन्यासों की जो स्त्रियां हैं वे अनेक समस्याएं झेलती हैं, जैसे सेवा सदन में बेमेल विवाह एवं पुरुष की अंतहीन लालसा, निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह और पुरुष के सक्की मिजाज को झेलती हैं, गबन में स्त्री के गहनों की लालसा के बहाने पितृसत्ता की समस्या को उठाया गया है, गोदान में भी स्त्री चरित्र को गंभीरता से चित्रित किया गया है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में स्त्री की बधिया छवि का निषेध करते हैं। उन्होंने स्त्री की ऐसी इमेज निर्मित की है जो स्त्री की स्टीरियोटाइप छवि से भिन्न हो। यह ऐसी स्त्री है जो पितृसत्ता के खिलाफ संघर्षरत है। प्रेमचंद ने नारी पराधीनता के लिए सबसे बड़ा कारण विवाह संस्था को माना है। प्रेमा, प्रतिज्ञा, वरदान से लेकर निर्मला तक वे इस समस्या को व्यक्त करते हैं। सेवा सदन में उनकी मान्यता है कि विवाह भावर या सिंदूर बंधन नहीं, बंधन केवल मन का भाव है। इसी तरह सांता के माध्यम से भी वे कहते हैं कि हम विवाह को धर्म का बंधन समझती हैं, हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। प्रेमचंद स्वयं विवाह संस्था की क्रूरता को भोग चुके थे, झेल चुके थे, इसलिए उस रवैये से उन्हें असंतोष था। सेवा सदन में थानेदार कृष्णचंद्र की बेटी सुमन इसका शिकार बनती है और गृह त्याग कर उसे वेश्या बनने पर विवश होना पड़ता है। वस्तुतः सेवा सदन नारी जीवन की पराधीनता का दस्तावेज है। सुमन के संघर्षपूर्ण जीवन के माध्यम से उन्होंने स्त्री मुक्ति का प्रयास भी किया है। इसी तरह गबन उपन्यास की जो नायिका है जालपा, उसके माध्यम से उन्होंने गहनों की समस्या को उभारा है। स्त्री की स्वाभाविक लालसा गहनों के प्रति जो होती है उसको उन्होंने प्रबल रूप से व्यक्त करने की कोशिश किया है, किंतु जालपा पारंपरिक विवाह और उसकी विधियों को स्वीकार नहीं करती। मान्यता है कि स्त्री को मायके से विदा करके ले जाना होता है, लेकिन सीधे सीधे गबन की जालपा यह निर्णय स्वयं लेना चाहती है। सास के मायके जाने रोकने पर वह साफ कहती है, मैं उन बहु बेटियों में नहीं हूँ, मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। ये घरेलू स्त्रियां हैं और इनमें भी एक विद्रोह की भावना जागृत दिखाई देती है। इसी तरह से रमानाथ की पत्नी होने का उसे जो गर्व है वह उसके अहंकार को कहीं ना कहीं धूमिल करता है। एकमात्र देवी दिन खटीक की पत्नी इस उपन्यास में जागो है, जो आत्मनिर्भर है, पैसे कमाती है और उसे गहनों की कोई लालसा नहीं है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में स्त्री के इस रूप को व्यक्त किया है कि समय आने पर उसके व्यक्तित्व का रूपांतरण भी होता है। जालपा अपने गहने बेचकर सरकारी रुपए जमा करती है, किंतु प्रेमचंद अपने नारी विजन में अंतर विरोध के कहीं न कहीं शिकार दिखाई देते हैं। एक तरफ वे समाज में स्त्री की स्थिति के प्रति संवेदनशील हैं, तो दूसरी तरफ नारी विषय पुराने आदर्शों के प्रति भी उनमें मोह है। सेवा सदन की शांता हो, प्रेमाश्रम की श्रद्धा और विद्या हो, रंगभूमि की इंदु हो, निर्मला की निर्मला हो, कर्मभूमि की नैना हो, ये सारी स्त्रियां प्रेमचंद ने आदर्श रूप में निर्मित की है। रंगभूमि की सोफिया और कर्मभूमि की सुखदा और गोदान की मालती जैसी सतेज और विद्रोहिणी स्त्रियां भी अंततः परंपरागत आदर्शों की कहीं ना कहीं शिकार हो ही जाती हैं। कर्मभूमि उपन्यास में स्त्री अबला के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में

के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाली सशक्त और कर्मठ नायिका के रूप में उभरी है। सुखदा, मुन्नी, सकीना, नैना और रेणुका देवी इस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन में अपनी सक्रियता का परिचय देती हैं। प्रेमचंद ने मुन्नी को तो एक वीर नारी और संघर्ष की प्रतिमूर्ति के रूप में चिन्हित किया है, जो तमाम जीवन की विपत्तियों का डटकर सामना करती है। किंतु इसके विपरीत निर्मला है, जो निर्मला उपन्यास की नायिका है, उसके जीवन में दुख और पीड़ा का पारावार है। अनवरत रूप से आजीवन वह उस दुख को झेलती है। इस उपन्यास में केवल उसकी एक सहेली सुधा है, जो आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली है। अपने समय की बदलती हुई सामाजिक स्थिति का जितना सफल और सार्थक चित्रण प्रेमचंद ने गोदान में किया है, उतना अन्यत्र दिखाई नहीं देता। गोदान के प्रमुख नारी पात्रों में धनिया, सिलिया, मालती, झुनिया, सोना, रूपा और गोविंदी हैं। गोदान के चरित्र सृष्टि में प्रेमचंद की रचनात्मक क्षमता निखरी हुई है। इस उपन्यास की पात्र धनिया स्वाभिमान, स्पष्टवादिता, निर्भीकता, मातृत्व, करुणाशीलता और पर दुख कातरता के साथ ही सहज नारित्व की गरिमा से विभूषित है, किंतु वह विरोधों का सामंजस्य है। वह स्वभाव से प्रखर है, किंतु कहीं न कहीं वह अपनी विनम्रता का भी परिचय देती है। जब होरी सिर झुकाकर दंड स्वीकार करता है, तो धनिया उसे अस्वीकार करती है। पंचों से कहती है, मैं न एक दाना अनाज दूंगी और न एक कौड़ी डाण, जिसमें बूता हो वो आकर मुझसे ले। धनिया के जीते जी यह सब नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। इस तरह उसके जो तेवर हैं, वह एक सशक्त नारी के रूप में हमारे सामने लाते हैं। इसी गोदान उपन्यास की नायिका मालती नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। वे पुरुष मनोविज्ञान की जानकार हैं। वास्तविक जीवन स्थितियों से उपजा मालती का यह चरित्र उसका बुनियादी स्वरूप है, किंतु गोविंदी मिल मालिक खन्ना की धर्मपत्नी है, शिक्षित है, संस्कारशील है, किंतु उसमें विद्रोह का अभाव है। लेकिन झुनिया विद्रोही है। वह अपने सशक्त रूप में एक पुरुष के द्वारा छेड़े जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं अहिर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नुचवा दूंगी। इसी तरह पुन्नी भी दमड़ी मंसूर द्वारा छेड़े जाने पर उसकी पिटाई करती है। प्रेमचंद के उपन्यासों में स्त्रियां सामाजिक बंधनों और स्वीकृत प्रथाओं के कारण पीड़ा झेलती हैं। रंगभूमि में अभिजात्य वर्गीय इंदु की विवश स्थिति यह सिद्ध करती है कि स्त्री चाहे वह संपन्न वर्ग की हो, चाहे वह दरिद्र घर की हो, दास्ता की जंजीरों में जकड़ी हुई है। प्रेमचंद के कथा साहित्य की स्त्रियां अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति बेचैन हैं, विद्रोह करती हैं, लेकिन उसे काफी दूर नहीं ले जा पाती। वैचारिक रूप से प्रेमचंद नारी की सामाजिक स्थिति से निरंतर असंतुष्ट दिखाई देते हैं। प्रेमचंद एक कालजयी कथाकार हैं। उनके उपन्यासों की भांति ही उनकी कहानियों के पात्र भी अपनी जीजी विषा के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद की कहानियां भारतीय भाषाओं की कहानी परंपरा में विशिष्ट मानी जाती हैं। उन्होंने स्त्री जीवन पर आधारित अनेक कहानियां लिखी हैं, जैसे आहुति, शांति, बड़े घर की बेटी, कायर, बूढ़ी काकी, निष्कासन, घास वाली, विमाता, सुभागी, ज्योति, ठाकुर का कुआं, स्त्री और पुरुष तथा बेटों वाली विधवा।

प्रेमचंद ने पूरी संवेदना के साथ स्त्री पात्रों की मनोदशा का अंकन किया है। सबसे पहले अगर हम बूढ़ी काकी कहानी को देखें तो हम पाते हैं कि इसमें लेखक ने वृद्धत्व की समस्या को उभारा है और बुढ़ापे की त्रासद वास्तविकता को उजागर किया है। रूपा और बुद्धिराम के जिस अमानुषिक व्यवहार को प्रेमचंद उनके शब्दों और व्यवहार में मूर्त करते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में दृष्टिगोचर होता है। बुढ़ापे के यथार्थ से जुड़ी त्रासदी अपने पूरे उत्कर्ष में त्रास, पीड़ा और करुणा की सम्मिलित अनुभूतियों के साथ मूर्तिमान हो उठती है। इसी तरह से बड़े घर की बेटी कहानी में भी प्रेमचंद ने उस समस्या को उभारा है जहां संयुक्त परिवार व्यवस्था है और उसके विघटन में स्त्री की सोच ही महत्वपूर्ण है। अगर वह बंटवारा कराती है तो वह मिलाप भी करा सकती है। आनंदी अपने धैर्य, सहनशीलता और गांभीर्य से अपने पूरे परिवार को टूटने से बचा लेती है। इसी तरह घास वाली कहानी की जो मुख्य पात्र है मुलिया, मुलिया अपने चारित्रिक वैशिष्ट्य के कारण महत्वपूर्ण है। वह चैन सिंह के जो आचरण है उसका विरोध करती है और ये दर्शाती है कि भद्रता, इज्जत, आबरू केवल भद्र लोगों की बपौती नहीं है बल्कि वह सामान्य लोगों के जीवन की भी आशा है, जिंदा रहने का सहारा है। माँ कहानी की जो नायिका है उसके जीवन में भी अपार दुख है। ठाकुर का कुआं में गंगी ठाकुर साहब के कुएं से जल तो नहीं लेती लेकिन पा भी नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर जो दहकती हुई आग है वो सामाजिक विद्रोह को दर्शाती है। बेटों वाली विधवा स्त्री केंद्रित कहानी है जिसमें प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार की क्षुद्रताओं, स्वार्थपरता, विसंगतियों और तुच्छेपन को व्यक्त किया है। किंतु इसी तरह से शांति कहानी है जिसमें एक नितांत स्वाभिमानी स्त्री गोपा के जीवन की कहानी है। वह अपने जीवन का सर्वस्व लगाकर किसी तरह से अपने परिवार को आगे ले जाती है। सुभागी भी स्त्री केंद्रित कहानी है जिसमें गांव की एक कन्या सुभागी के कर्मठ चरित्र को उजागर किया गया है और वह कर्मठ ही नहीं बहुत सशक्त तेवर वाली भी है। स्वामिनी कहानी ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाओं, विडंबनाओं का आख्यान तो है लेकिन साथ ही साथ इन विडंबनाओं के बीच निकलती राह काफी द्योतक है जहां स्त्री अपने लिए राह निकालने हेतु आगे आती है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का कथा साहित्य भारतीय स्त्री जीवन के बहुआयामी रूप को यथार्थ रूप से अंकित करता है। उनके कथा साहित्य में स्त्री कभी एक शोषित पीड़िता के रूप में दिखाई देती है तो कभी साहसी, विद्रोहिणी और जूझती हुई दृढ़ नारी के रूप में भी है। प्रेमचंद की नायिकाएं न केवल सामाजिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व करती हैं बल्कि वे उन परिवर्तनों की संभावनाओं की ओर भी संकेत करती हैं जो स्त्री की भूमिका को एक निष्क्रिय इकाई से एक सक्रिय सामाजिक इकाई की ओर ले जाती है। प्रेमचंद का कथा साहित्य हमारे समाज का दिग्दर्शन कराता है और इतना ही नहीं, वह स्त्री के उस चुप्पी को तोड़ने का कारण भी बताता है। यहाँ नारी केवल करुणा की प्रतिमा मात्र नहीं है बल्कि समानता, आत्मसम्मान और गरिमा की जिज्ञासु भी है। प्रेमचंद ने स्त्री को सामाजिक संस्थाओं और पारिवारिक ढांचों में एक सशक्त इकाई के रूप में आवाज देने का प्रयास किया है। प्रेमचंद की नारी मुक्ति की संकल्पना न केवल व्यक्तिगत स्वाधीनता पर आधारित है बल्कि वह सामाजिक पुनर्रचना की मांग भी करती है। गंगी, सुभागी, जालपा, धनिया, सिलिया और अनारकली जैसे अनेक स्त्री पात्र प्रश्न करते हैं और सामाजिक असंतुलन को संतुलित

0: करने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य महज साहित्यिक धरोहर नहीं बल्कि स्त्री जीवन के संघर्ष, चेतना और मुक्ति की यात्रा का साहित्यिक दस्तावेज है। वे आज भी हमें नारी के प्रश्नों को नए सिरे से सोचने, समझने और पुनर्परिभाषित करने की प्रेरणा देती हैं।
1: बहने अभी सुन रही थी वार्ता प्रेमचंद के कथा संसार की स्त्रियां, पीड़ा से प्रतिरोध तक। वार्ताकार थीं डॉक्टर सरोज सिंह।
2: और आइए अब हम सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं पहल में। आज पहल में है दुख में उलाना कितना उचित। इसमें वाचन स्वर है नेहा गुप्ता।

0: वंदना जी,
1: जी नेहा जी,
0: मैंने एक कहावत सुनी है।
1: अच्छा, कौन सी?
0: लोहा लोहे को काटता है, सुना है ना आपने?
1: खूब सुना है।
0: और मैंने इसका दूसरा तर्ज भी देखा है, जैसे दुख दुख को काटता है। तो मैंने पूछा बगल वाले पड़ोसी से कि भाई आप लोहा तो लोहे को काटता है जी, हमने सुना था, ये दुख दुख को काटता है। बोले कि नहीं, देखिए अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जिससे परेशान है उसको खूब बकबक कर दीजिए, और जितनी परेशानी आपके मन में चल रही है बस उनको थोड़ा परेशान कर दीजिए, आप देखिए आप पाएंगी कि बहुत शांत हो गई। तो मैंने कहा कि भाई अपने दुख को कम करने के लिए सामने वाले को दुखी कर देना, मतलब दुख का ट्रांसफ़र कर देना, वो भी किसी को अपना दुख ट्रांसफ़र करेगा, तो ये तो मतलब दुख को बदला नहीं गया, ये तो ट्रांसफर वाला गेम हो गया ना।
1: बिल्कुल सच करी है नेहा जी, और हर जगह पर एक ही उदाहरण या एक ही युक्ति या जो अभी आपने कहावत बोली है,
0: हाँ,
1: नहीं बैठती है, क्योंकि लोहे लोहे को काटता है, ये बिल्कुल सही बात है
0: जी।
1: लेकिन दुख दुख को काट दे,
0: हाँ,
1: यानी कि किसी को दुखी करके अगर अपने दुख को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो नितांत अपना जो स्वार्थ वाला व्यवहार है वो हम दिखा रहे हैं सामने वाले को, और ये कहीं से भी क्षम्य नहीं होता है, और ये हमारे व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा दबा देता है।
0: अब जैसे देखिए कि इस स्थिति में मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपशब्द बोलते हैं
1: जी,
0: कई बार गाली भी देते हैं, या ऐसी कोई बात कहते हैं सामने वाले को जिससे कि उसका अस्तित्व हिल जाए
1: जी।
0: हो सकता है उसके परिवार से संबंधित कोई टिप्पणी हो या व्यक्तित्व से संबंधित कोई टिप्पणी है। तो जब आप इस तरह की बात बोल रहे होते हैं, वो गर्मा गर्मी का माहौल होता है, टोन बहुत ऊंची, आवाज़ बहुत ऊंची होती है, तो मुझे लगता है कि उसका असर भी उतना ही ऊंचा होता है। आपने बोलने को तो बोल दिया और सामने वाले ने भी सुना, और कहीं ना कहीं उसके भाव दुखी हुए, उसका मन मस्तिष्क भी उबल पड़ा है, और मुझे लगता है कि वो यादों में शामिल हो रहा है ना।
1: और ये यादें बड़े ही कसैली होती हैं नेहा जी, जो मन को पीड़ा से भर देती हैं, और व्यक्ति फिर बचने लगता है, उस व्यक्ति के पास जाने से कतराता है जो अपने दुख को ट्रांसफर करता है इस तरह से कि किसी दूसरे को अपशब्द बोल दे, उलाहना दे, है ना, इस तरह की बातें करे कि जो मन को पीड़ा से भर दे। हो सकता है कि जिसको आप ब्लेम कर रहे हो वही कारण हो आपके दुख का, लेकिन अगर हम एक तरह से सोचें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलें, तो हमें ये लगता है कि इससे बचा जा सकता है। ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ निर्मित नहीं होनी चाहिए जिसके कारण कल हमारा व्यक्तित्व इस तरह से सामने आए लोगों के, कि जिससे लोग बचना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो अपनी पीड़ा का सोल्यूशन हम खुद के अंदर ही कहीं ना कहीं खोजें।
0: लेकिन ये बात जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि कई बार देखिए जब हमारे अंदर से क्रोध उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, करुणा का भाव उमड़ता है या केयर का भाव उमड़ता है, तो शायद हर किसी के वश का नहीं है इन भावों को दिशा दे पाना।
1: नेहा जी, बात ये सिर्फ इतनी होती कि हमने इसको इतना कठिन मान लिया है, जबकि जीवन इतना सरल है। जीवन की तमाम तरह की जो विसंगतियां हमारे आसपास निर्मित होती हैं, वो हमारे इसी तरह के जो कटु व्यवहार होते हैं या असहनशीलता होती है, इन सब से ज़्यादा उभर कर आते हैं। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने आप को थोड़ा सा समझने का मौका दे दें।
0: हाँ, जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, ऑलिजवेल, फिल्म में ऑलिजवेल बोलते हैं
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं मतलब आपको ना अपने आप को ये समझाना होगा कि सब ठीक हो जाता है, ये जो बकबक हम करेंगे या कर ली है इससे बहुत कुछ नहीं बदलता, कहीं ना कहीं एक गलत आदत का निर्माण ही हो रहा है व्यक्तित्व में, और वो गलत आदत जब आप अपने आप को

0: ही 2-4 दिन बाद देखते हैं, अपने कहे हुए अपशब्दों पर गौर करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत पछतावा होता है ना।
1: सच करिए नेहा जी, और हम अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं उस समय। और ये मनुष्य का मनोविज्ञान भी होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दुख से उभर जाते हैं अपनी ही इच्छा शक्ति से, अपने धैर्य, अपने साहस, अपने आत्मबल के कारण। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कहीं आसपास लोगों को खोज रहे होते हैं कि जिसके ऊपर हम सारी स्थितियां परिस्थितियां उसको उनके सर पर डाल दें और हम अपने आप को एक विक्टिम कार्ड की तरह से पेश करें।
0: हाँ, लेकिन ना ये जो कारण वाली बात, अगर आप अपना अप्रोच चेंज कर लें कि दुख का कारण कोई और नहीं है, है ना, जिस
1: जी
0: समय ये बात आपको भान में आती है कि नहीं, अगर हम दुखी हुए या कुछ बात हो गई तो हमें अपनी ही दिशा बदलने की ज़रूरत होती है। अब जैसे कोई गाड़ी चला रहा होता है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है या बगल से कोई गाड़ी साए से निकल रही, तो हम क्या करते हैं, एकदम सजग हो जाते हैं, पहले अपनी स्थिति को देखते हैं और चुपचाप एक छोटा सा रास्ता लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, किसी और के चक्कर में पड़ते ही नहीं है।
1: देखिए, छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें
0: हाँ
1: नेहा जी, तो हम इन सब बातों से बाहर निकल सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को और भी निखार सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि जैसे कभी भी ऐसी परिस्थितियां आएं, तो पहली बात तो अपनी समझदारी की जो रोशनी है उसको अपने पास रखें, पहले उसको जला लें उस चराग को, और उसकी रोशनी में देखें आसपास का वातावरण कैसा है। यानी कि आपको बहुत सारे जुगनू नजर आएंगे जो आपकी इच्छा शक्ति के रूप में, साहस के रूप में, आपकी समझदारी के रूप में, जो कि जगमगाते हुए से दिखाई पड़ेंगे। बस उनका दामन थामना है और थोड़ा सा ठहरना है, समय को थोड़ा सा और वक्त देना है कि ये समय जो अगर इस समय दुख का है तो सुख का भी समय एक आएगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें तो क्या जाता है।
0: बिल्कुल।
2: अभी आप सुन रहे थे पहल दुख में उल्हाना कितना उचित, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नेहा गुप्ता जी और वंदना राठौर। और आइए बहनों, आइए सुन लेते हैं हम एक और प्यारा सा गीत।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।

0: हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

0: स्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़े कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे

0: ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है, बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल छनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
3: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 17 टीमें, SDRF की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता

0: संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खोरदा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेडिवेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
3: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
3: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
3: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक

0: ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
0: जी,
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
0: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
0: जी,
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
0: जी,
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
0: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं, लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
0: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदरदास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर

0: वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
1: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
0: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
4: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
5: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
4: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
5: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
4: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
0: फिर क्या था, ऋषि मतंग

0: और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
1: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें। लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूं।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता यह था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकटमुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
3: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को

0: निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
2: लयात्मक प्रस्तुति।
1: शीर्षक है
2: अभी न होगा मेरा अंत।
1: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं। लीजिए एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 31 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे प्रोफेसर SD मैकार्टी। आप अपने प्रश्न शाम 6:30 से 7:15 तक फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970-462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आकाशवाणी प्रयागराज की ये सभा समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें, विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद। बच्चों कैसे हैं आप सब? आज मैं आपकी पूनम दीदी आपका पसंदीदा प्रोग्राम नन्ही दुनिया लेकर आई हूँ। हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, जो साथी हैं, उम्मीद है कि वो सब बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि देखिए कैसे वो पूरा ध्यान लगाकर अपना पसंदीदा कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुन रहे हैं, है ना बच्चों? बच्चों हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथी हैं, वो समाज और परिवार का भविष्य होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो बचपन से ही बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम बच्चों को बहुत सारी बातें बताते हैं, सिखाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, और ये सारी चीज़ें तो हमें अपने घर में, अपने परिवार में ही मिलती हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही ज़रूरी सीख है बच्चों कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए, जिसकी वजह से हमारे दोस्त, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे भैया दीदी या फिर कोई भी नाराज़ हो जाए या फिर उसको बुरा लग जाए, तो उस गलती को हमें स्वीकार करना आना चाहिए। वो भी पूरे मन से और पूरे ईमानदारी के साथ आप माफ़ी मांगिए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया या फिर अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई, लेकिन वो माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि गलती की माफ़ी मांगना कोई बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि कमज़ोरी है। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा या फिर कमज़ोर हो जाता है, बल्कि क्षमा मांगना या फिर अपनी गलती के लिए किसी को सॉरी बोलना साहस, ईमानदारी और बहादुरी की निशानी है। जो बच्चा अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखता है, वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है, सबका विश्वास जीतता है, और बच्चों वही बच्चा सबकी नज़रों में गुड बॉय या गुड गर्ल बनता है। बच्चों इतनी सारी बातें तो हो गई, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: इक्कड़ दुक्कड़ भंबे भो 80 90 पूरा 100 100 का लोटा तीतर मोटा

बच्चों, स्वागत है आप सबका। इस प्यारे से गीत के बाद हम वापस आ गए आपके प्रोग्राम नन्ही दुनिया में। तो आज हम जानेंगे आओ जाने में कि चंद्रमा यानी कि जो चंदा मामा होता है वो कभी पूरा और कभी आधा क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों, रात के समय आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, क्योंकि ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कभी ये पूरा गोल दिखाई देता है तो कभी आधा, कभी बहुत पतला तो कभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो बच्चों, आपके मन में भी ये चंदा मामा यानी कि चंद्रमा को देखकर ये सवाल तो जरूर आता होगा कि ये कभी पूरा तो कभी आधा क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों, वास्तव में चंद्रमा का आकार नहीं बदलता, बल्कि हमें उसका प्रकाशित भाग अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके वो चमकता है। जबकि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब होता है, तब उसका प्रकाशित भाग यानी कि जो चमकने वाला भाग है वो हमारी ओर नहीं होता। तो इस स्थिति में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिसे कि अमावस्या भी कहते हैं। और बच्चों, चंद्रमा का जो आधा भाग हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित रहता है। हमें केवल वही हिस्सा दिखाई देता है जो उस समय पृथ्वी की ओर होता है यानी कि जमीन की ओर होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि चंद्रमा कभी पूरा कभी आधा है, बल्कि वास्तव में उसका आकार हमेशा लगभग एक जैसा रहता है। हमारी जो भारतीय पंचांग है, कैलेंडर है, जो त्योहार हैं, कृषि, समुद्र में आने वाले जो ज्वार भाटा हैं, इन सब पे भी चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। और बच्चों, प्राचीन समय से ही यानी कि बहुत पुराने साल से ही लोग चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन करते आ रहे हैं। चंद्रमा का कभी पूरा कभी आधा दिखाई देना एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना है। इसका कारण चंद्रमा का आकार बदलना नहीं, बल्कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की बदलती हुई स्थितियां हैं। और ये घटना हमें प्रकृति के अद्भुत नियमों और विज्ञान के महत्व को समझने का भी अवसर देती है। तो बच्चों, समझ में आया कि चंद्रमा का आकार कभी पूरा तो कभी आधा क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों, ये तो हो गई चंद्रमा की बात। अब हम बात करेंगे कि मौसम बदल रहा है, तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का, अपने भैया का, दादा दादी का, सबका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो अब बड़े हो रहे हैं और समझदार भी हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने ध्यान में रखिए और उसको फॉलो भी करिए कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अगर खाने का मन भी कर रहा है तो अपनी मम्मा से बना के टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाएं, जो कि सेहतमंद भी रहेगी और स्वादिष्ट भी रहेगी। और साथ ही ये जो मौसम चल रहा है ठंडी का, कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो बाहर से आके तुरंत एसी या कूलर बिल्कुल ना चलाएं। और इस समय मच्छर का भी बहुत ज़्यादा आतंक है, प्रकोप है, तो उससे भी बचे रहें। अगर आपको मच्छर काटें तो अपनी मम्मा को बताएं, फिर वो नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगाएंगी तो आपका जो खुजली है या फिर जो दाने निकल रहे हैं चेहरे पे, वो सब एकदम से छूमंतर हो जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना बच्चों, ये सब आप अपने जीवन में अपनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा पूनम दीदी के साथ, ये हमें ज़रूर बताएं अपने मम्मा से, अपने पापा से बोल के। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। नंबर एक बार फिर से नोट करें बच्चों, 8004926250।

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों. उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे. और हाँ, अगर आज का दिन थोड़ा टेंशन भरा रहा हो तो घबराइए मत. आप अपनी सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाइए, क्योंकि हम लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट शो युवानी. और जहाँ आज मैं हूँ आपकी होस्ट सेजल, और मेरे साथ है
1: सुधांशु। वैसे सेजल, जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है जानती हो?
0: क्या?
1: हर नया दिन जो अपने साथ एक अच्छी यादें लेकर आता है,
0: बिल्कुल.
1: और उस पन्ने पर कोई अपनी नियति लिखता है तो कोई अपने सपने लिखता है।
0: ठीक कहा तुमने. हमारे पास वैसे 24 घंटे ही होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई घंटों में सिर्फ सपने देखता है और कोई उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता खोज लेता है. और भाई, आज के यूथ्स भी तो कुछ ऐसे ही हैं. वो सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहते, वो बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं. और शायद सुधांशु, यही
1: हाँ,
0: वजह है कि आज छोटी सी सोच भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन रही है.
1: वैसे सेजल, यही तो है नए भारत की पहचान।
0: बिल्कुल.
1: लेकिन ये नए अवसर बनते कैसे हैं? कैसे एक छोटा सा आइडिया किसी भी शख्स की का पूरा जीवन बदल देता है, बल्कि हजारों लोगों की लाइफ चेंज भी कर सकता है। और क्यों आज इनोवेशन को सिर्फ तरक्की नहीं, बल्कि रोजगार का सबसे बड़ा इंजन माना जा रहा है? क्योंकि आज का दौर सिर्फ जॉब सीकर बनने का नहीं है, बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का दौर है। कहते हैं कि एक नया विचार सिर्फ सोच नहीं बदलता है, बल्कि समाज की तस्वीर भी बदल सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है रोजगार सृजन में नवाचार का योगदान।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोज़गार सृजन में नवाचार का योगदान। शायद आपको सुनने में थोड़ा बड़ा नाम लगे, लेकिन यकीन मानिए, बहुत आसान है। देखिए, रोज़गार मतलब काम, सृजन का मतलब कुछ नया बनाना, और नवाचार यानी कुछ नया सोचना, नया आइडिया अपनाना, या फिर किसी प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन खोजना जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा हो। मतलब अगर आप वही काम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं और उससे किसी की लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए, तो आप समझिए कि आपने कुछ इनोवेट कर दिया है।
1: और सोचिए कि कभी टैक्सी बुक कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, और आज बस एक ऐप से कुछ मिनटों में गाड़ी आपके दरवाजे पर होती है। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव के पीछे एक नई सोच, एक नया नजरिया और कुछ अलग करने का साहस, यानी कि इनोवेशन। साथियों, इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई

0: मशीन्स या कोई इन्वेंशन करना नहीं है, किसी काम को पहले से बेहतर, आसान, तेज और अधिक उपयोगी तरीके से करना भी नवाचार है। यानी दोस्तों, सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं है, आइडिया के साथ स्किल और कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस ही हमें सक्सेस तक पहुंचा सकता है।
1: और आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में शामिल है। लाखों युवा अपनी आइडिया को बिजनेस में बदल रहे हैं। कोई एआई पर काम कर रहा है, तो कोई हेल्थ केयर पर, तो कोई एजुकेशन पर, कोई एग्रीकल्चर पर, या फिर डिजिटल सर्विस पर नए सॉल्यूशन तैयार किए जा रहे हैं।
0: और 100% की डिग्री इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, मार्केट्स बदल रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, और ऐसे में अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो शायद हम पीछे रह जाएंगे।
1: और अगर हम कुछ साल पीछे देखें तो बहुत से काम ऐसे थे दोस्तों जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एआई, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में लाखों लोग काम कर रहे हैं। यानी इनोवेशन ने सिर्फ इंडस्ट्रीज को नहीं बदला है, लोगों की थिंकिंग में भी एक भारी बदलाव लाया है। और कमाल की बात ये है कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी है, चाहे हैंडमेड प्रोडक्ट हो, उनको सेल करना हो, ऑनलाइन क्लास चलाना हो, डिजिटल मार्केटिंग का मैटर हो, या फिर कुछ और। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसमें क्रिएटिविटी या क्रिएटिव स्किल है जो सीखने की चाह, यानी कि न्यू आइडिया पहली बार में भले ही सफल ना हो, ज़रूरी नहीं है कि सफल हो ही जाए, लेकिन हर कोशिश कुछ हमें नया सिखाती है।
0: और वैसे जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो सवाल तो ये आता है ना कि हमें गाइडेंस कौन देगा? मतलब क्या सिर्फ आइडिया होना ही काफ़ी है? तो साथियों, यूथ्स के सीखने की इच्छा और कुछ नया करने की हिम्मत को देखते हुए सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें फर्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। ये पहल उन लोगों के लिए है जो अपना नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। इसमें फंडिंग और मेंटरशिप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
1: दोस्तों, दूसरी है डिजिटल इंडिया। इस पहल के तहत सेवाओं को ऑनलाइन लाना, इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाना और लोगों को डिजिटली टेक्निक से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है।
0: और थर्ड है पीएम मुद्रा योजना। इसमें छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना में शिशु, किशोर और तरुण तीनों कैटेगरीज को जरूरत के अनुसार लोन मिलता है।
1: और दोस्तों, सफलता एक दिन में तो मिलती नहीं है, उसके लिए हमें बहुत समय देना होता है। रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं, पर हर सफल इंसान ने कभी ना कभी असफलता का सामना तो ज़रूर किया है। कुल मिलाकर इनोवेशन केवल न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लाता, बल्कि नई अपॉर्चुनिटी, नए बिजनेस को भी लेकर हमारे सामने आता है।
0: और जब बात इनोवेशन की हम कर रहे हैं तो अपने आसपास पर भी नज़र डालते हैं। किसानों की बात करें तो वहाँ भी इनोवेशन ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है, जिसमें मॉडर्न फार्मिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं बहुत यूज़फुल हैं।
1: और अक्सर हम कहते हैं ना कि काश कोई मौका मिल जाता, लेकिन कई बार मौका मिलता नहीं, मौका बनाना पड़ता है। और इनोवेशन हमें यही सिखाता है कि प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है।
0: बिल्कुल, बदलाव का इंतजार मत कीजिए, बदलाव का हिस्सा बनिए, नई चीज़ें सीखिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। तो सुधांशु, ये थी हमारे आज की चर्चा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद है कि दोस्तों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा।
1: हाँ,
0: तो क्यों ना बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को आगे और सुनवाते हैं ये हमारा नेक्स्ट सॉन्ग।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों आज है 31 जुलाई और आपको पता होगा कि आज ही के दिन लम्ही में मुंशी

0: प्रेमचंद का जन्म हुआ था। एक बहुत अच्छा उद्धरण है, उन्हीं की पत्नी ने उनके लिए लिखा है, शिवरानी देवी ने, कि अब मेरी समझ में ये बात आती है कि वे कितने महान थे। वे बुरों के साथ भी भलाई का व्यवहार करते थे। ये हिंदुस्तान की खासी विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठीक नहीं पहचान पाता। हाथ से खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी ये दशा ना होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ, वैसे वैसे कलेजे पर छुरियाँ सी चलती हैं। वही मैं हूँ, सब बातें उस तरह से हैं, समय वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिवस के इस शुभ अवसर पर हम आपको सुनाते हैं एक वार्ता। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, वार्ताकार हैं हर्षिता श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: एक महानतम भारतीय लेखक जो हिंदी साहित्य के कथानायक और उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, मुंशी प्रेमचंद। उर्दू साहित्य के उपन्यासकार नवाब राय जब हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए तो उपन्यास के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। भारत के हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का नाम अमर है। हिंदी कहानियों को एक नई पहचान और नया जीवन देते हुए उन्होंने अपनी कहानियों में मनुष्य के सच्चे जीवन का चित्र खींचा है। प्रेमचंद उर्दू का संस्कार लेकर हिंदी में आए थे और हिंदी के महान लेखक बन गए। आम आदमी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उनकी समस्याओं पर खुलकर कलम चलाई। समाज की सच्चाई को साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। अपने मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से पहचाने जाने वाले प्रेमचंद को पढ़ने का बचपन से शौक था। उनकी शिक्षा की शुरुआत उर्दू और फारसी जैसी भाषाओं से हुई और उनके इसी शौक ने उन्हें हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट बना दिया। 8 वर्ष की उम्र में माता आनंदी देवी के निधन के बाद उन्हें माँ के प्रेम से वंचित होना पड़ा। बस इतना ही नहीं, दुख ने यहाँ ही उनका पीछा नहीं छोड़ा था। 14 साल की उम्र में ही पिता मुंशी अजयब लाल उन्हें छोड़ चले। पिता के निधन के बाद रोजी रोटी कमाने की चिंता उनके सिर पर आ गई। पैसों के लिए उन्होंने विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाने का निर्णय लिया और न सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाई बल्कि मैट्रिक्स भी पास किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक स्कूल में शिक्षक बन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा का नारा दिया तो प्रेमचंद गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित हो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दिए और कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में काम करना शुरू कर दिए, पर यहाँ भी ज्यादा दिनों तक टिक न पाए। 1901 से धनपत राय ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की और इस कथानायक की कलम से लिखी गई पहली उपन्यास जो कि उर्दू में लिखी गई थी वो 1902 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था प्रेमा। उसके बाद 1904 में हम खुरमा हम साहब के नाम से उन्होंने दूसरी उपन्यास लिखी। 1908 में सोजे वतन नाम से देश प्रेम से भरी उनकी 5 कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। देशभक्ति से भरी ये कहानियां प्रकाशित तो हुई पर अंग्रेज सरकार ने इस पर रोक लगाते हुए सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली और धनपत राय को दोबारा ऐसी कहानी ना लिखने की चेतावनी दी। इस घटना के बाद जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दयानारायण निगम ने धनपत राय को प्रेमचंद के नाम से लिखने को कहा और इसी के बाद प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था बड़े घर की बेटी।

0: मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। अपनी कहानियों में उन्होंने गांव के जीवन को बताते हुए भारत की संस्कृति को दर्शाया है। सैकड़ों कहानियां लिखने वाले प्रेमचंद्र की रचनाओं के कई रंग देखने को मिले। सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने साहित्य रचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। प्रेमचंद ने अपनी कला को शिखर पर पहुंचाने के लिए काफी प्रयोग किए थे। खुद को सफल बनाने के लिए उनके पास कोई विरासत न थी सिवाय बंगाल साहित्य के। उन्होंने चीजों को खुद गढ़कर एक आकार दिया, हिंदी में कहानी की एक परंपरा को जन्म दिया। केवल साहित्य ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना रुतबा बनाए रखने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी लिखी हुई कहानी पर बनी पहली फिल्म 1934 में प्रदर्शित हुई, पर फिल्मी दुनिया उन्हें रास ना आई और अपना कॉन्ट्रैक्ट अधूरा छोड़ वो बनारस वापस लौट गए। प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर बंगला निर्देशक सत्यजीत राय ने उनकी दो कहानियों पर फिल्में बनाई। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसे तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अपने लिखने की कला से प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पन्नों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से मिली वो और किसी विधाओं से न प्राप्त हुई। 1918 में उन्होंने हिंदी उपन्यास की दुनिया में अपना पहला कदम सेवा सदन नाम की उपन्यास से रखा। उसके बाद निर्मला, गोदान, रंगभूमि जैसी कई प्रमुख उपन्यासों के लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कहानियों में भी खूब नाम कमाया, जिनमें से पूस की रात, ईद का, बूढ़ी काकी, मंत्र, कफन उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। कहानी के क्षेत्र में भले ही प्रेमचंद के साथ दूसरों का भी नाम गिना जाए, लेकिन इसे शायद ही कोई इनकार करेगा कि उपन्यास क्षेत्र में अभी तक उनका स्थान ज्यों का त्यों बना हुआ है। 18 अक्टूबर 1936 में मंगलसूत्र नाम की उपन्यास को आधा अधूरा छोड़ मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद उनकी लिखी हुई कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भाग में प्रकाशित हुई। कौन कहता है कि कोई अमर नहीं हो सकता? जब तक ये दुनिया है, प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा सभी के दिलों में अमर रहेंगे। अपने छोटे से जीवन काल में ही प्रेमचंद हमें हिंदी साहित्य में इतना कुछ दे गए जो आज भी हमें राह दिखाती है। 34 वर्ष की अपनी रचनाओं से भरे जीवन काल में प्रेमचंद ने बहुत कुछ संजोया है और ऐसी विरासत सौंप गए हैं जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित है। उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में योगदान अतुलनीय है।
1: दोस्तों, कहते हैं कि अन्याय करने वाले को चाहे वो अन्याय हमारे साथ करे चाहे दूसरे के, बलवान आदमी कभी नहीं देख सकता। इसीलिए वो पैदा हुआ है कि वो अन्याय का अंत करे। शिवरानी देवी।
2: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और वार्ताकार थी हर्षिता श्रीवास्तव। तो बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट में। बढ़ने से पहले
1: दोस्तों, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, गीत की ये आखिरी तान जब हवा में घुलती है ना, तो दिल का कोई कोना अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भागती दौड़ती जिंदगी ने कुछ पल के लिए सांस ली हो।
1: सच कहा, संगीत की यही तो खूबसूरती है। ये हमें हमारे अपने ही करीब ले जाता है, और जब मन इतना सहज और शांत हो तो विचार भी गंतव्य की ओर बहने लगते हैं। दोस्तों, शुरू के इस सुहाने पड़ाव के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने बेहद खास और आत्मीय सिलसिले की तरफ, यानी कि प्रेरणा पुंज।
0: जी हाँ, प्रेरणा पुंज, जहाँ हम और आप मिलकर उन शख्सियतों को याद करते हैं जिनके विचारों की रोशनी आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। और आज जब हम प्रेरणा पुंज की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसे इंसान की याद आना स्वाभाविक है जिसने बिना किसी आडंबर के बेहद सादगी से पूरे भारतीय समाज की आत्मा को अपनी कलम से उकेर दिया। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उपन्यास सम्राट, कहानीकार, मुंशी प्रेमचंद।
1: मुंशी प्रेमचंद, नाम सुनते ही आंखों के सामने गांव की वो कच्ची

0: पगडंडियां तैरने लगती हैं। सुधांशु है ना, वो फूस के छप्पर, पीपल की छाव में बैठा बुजुर्गों का चौपाल, और वो आम इंसान जो रोज अपनी रोजी रोटी और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत ही यही थी कि उन्होंने किसी काल्पनिक दुनिया की कहानियां नहीं गढ़ी, उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने देखा, जो सहा और जो अपनी आंखों से महसूस किया।
1: बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। उनका समय मूल्यवान है। कामिनी देवी, लिखते तो वो लोग भी हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वो क्या लिखेंगे। हाँ, गोदान कर दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। दोस्तों, जब हम गोदान पढ़ते हैं ना, तो होरी सिर्फ एक पात्र नहीं लगता है, लगता है कि हमारे अपने ही पड़ोस का कोई सीधा साधा किसान है, जो जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान को सहेजने में जुटा हुआ है। जब आप ईदगाह पढ़ते हैं तो छोटा सा हमें ये सिखा जाता है कि अपनों का ख्याल रखना और त्याग करना किसी उम्र का मोहताज होना नहीं होता है।
0: सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया, हामिद ने अपने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, ये मूक स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ।
1: प्रेमचंद जी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए खुद लिखा था कि साहित्य वही है जो हमारे भीतर सच्चाई की तलब पैदा करे, जो हमें संघर्ष की ताकत भरे और जो हमें सुंदर का पारखी बनाए।
0: कितनी सटीक बात कही थी उन्होंने। आज का दौर ऐसा है सुधांशु, जहां लोग अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं या बाहरी दिखावे की दौड़ में अपनी पहचान खो बैठते हैं, तो ऐसे समय में प्रेमचंद की पंक्तियां किसी मरहम की तरह काम करती हैं।
1: विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला।
0: यानी मुश्किलें हमें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की असली ताकत को निखारने आती हैं। और जिंदगी का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि आपके पास साधन कितने हैं, बल्कि इस बात में है कि विषम परिस्थितियों में भी आपकी नियत और संवेदना कैसी है।
1: वाह सेजल, और बात सिर्फ संघर्ष की ही नहीं है, प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण समाज में न्याय और समानता को लेकर भी बहुत स्पष्ट था। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों पर सीधा प्रहार मिलता है, लेकिन उनका लहजा कभी नफरत का नहीं रहा, वे हमेशा इंसानियत के पक्षधर रहे। पंच परमेश्वर की वो कालजयी पंक्तियाँ तो लगभग सबको याद होंगी कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। यानी जब आप किसी न्याय के पद पर बैठे हों तो आपको अपनी पसंद नापसंद हटा देनी चाहिए, सिर्फ सत्य और धर्म की ही बातें करनी चाहिए।
0: और सुधांशु, मुंशी प्रेमचंद की साहित्य साधना में मुख्य रूप से लगभग 300 प्रसिद्ध कहानियां, 12 कालजायी उपन्यास, 3 नाटक और कई निबंध तथा पत्रिकाओं का ऐतिहासिक योगदान शामिल है।
1: उनकी कहानियों को मानसरोवर शीर्षक 8 भागों में संकलित किया गया है, जिनमें ईदगाह, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, शतरंज के खिलाड़ी,
0: बूढ़ी काकी, आत्माराम, मंत्र, 2 बैलों की कथा और सदगति जैसी अमर रचनाएं प्रमुख हैं।
1: वहीं उपन्यासों में सेवाग्राम यानी कि सेवा सदन, प्रेमांचल यानी कि प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, वरदान, मनोरमा और उनका अंतिम अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र सम्मिलित है। इसके अलावा उन्होंने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी नाम से 3 नाटक लिखे, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया और समाज साहित्य पर केंद्रित अनगिनत विचारोत्तेजक निबंध भी रचे हैं।
0: बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी का जीवन भी उनकी कहानियों का सादा और महान दस्तावेज है। फटे हुए जूते पहनकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा लेना वाला ये महान लेखक हमें सिखा गया कि बड़प्पन कपड़ों या

0: हार्ट बाट से नहीं विचारों की ऊंचाई से आता है। तो क्यों ना आज हम सब अपनी रोजमर्रा की आपाधापी से कुछ पल निकालें और प्रेमचंद के विचारों की इस छांव में बैठकर खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम अपनी सादगी और संवेदनशीलता को बचा पा रहे हैं।
1: बहुत ही प्रासंगिक सवाल है दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद के विचार बीते हुए कल का इतिहास तो एकदम नहीं है, वे आज के दौर की जरूरत है। तो मित्रों, आज के प्रेरणापूर्ण सेगमेंट से आपसे यही सवाल है जो सेजल ने आपसे पूछा कि अगर आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करिए। गीत के बाद हम आपसे अपना वो एड्रेस शेयर करेंगे जहां पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।

0: तो दोस्तों, अब अपने आखिरी सेगमेंट पे हमारा क्वेश्चन आंसर का भी तो सेगमेंट बचा।
1: हाँ
0: तो दोस्तों, कल का प्रश्न था, इल्बर्ट बिल किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? और इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। और जिन लोगों ने इसके सही उत्तर दिए हैं, उनमें नाम है हर्षित आहूजा फ्रॉम हरियाणा।
1: हिमांशु कन्नौजिया फ्रॉम इलाहाबाद।
0: तो सुधांशु, आज का प्रश्न भी भाई बता दो।
1: दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, हमारे प्रेरणा पुंज से ही प्रश्न है कि प्रेमचंद का आखिरी अधूरा उपन्यास कौन सा है। प्रश्न एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि प्रेमचंद का आखिरी अधूरा उपन्यास कौन सा है। आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं और वो उत्तर भी आप भेज सकते हैं जो सेजल ने आपसे सवाल किया था, और इस उत्तर को भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 800-4926-2500 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com पर।
0: तो यानी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल
1: और मुझे यानी कि सुधांशु पांडे को
0: दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ही बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मोपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे हेलो पंचायत घर। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा हरिदत्त शर्मा से काव्य पाठ। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर और रात 10 बजे आज हम आपको सुनवाएंगे मुंशी प्रेमचंद की मूल कहानी कफन का रेडियो नाट्य रूपांतर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पद्मा तलवलकर का गायन। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:30 पर सुनिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट और रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में। पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती का समय होगा रात 9:30 पर और रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर भास्कर शुक्ला से की गई बातचीत इस पखवाड़े के कृषि कार्य। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:45 पर और दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे राजेश कुमार का सितार वादन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम होता है सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे दिव्या श्रीवास्तव के स्वर में गीत और भजन। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी सुनिएगा सुबह 10:05 पर। इसमें आप सुनेंगे उमेश चंद कनौजिया और अनिता नाथ के गाए लोकगीत। 10:30 पर हमारे संग्रहालय से इस श्रृंखला में सुनिएगा सुप्रसिद्ध रचनाकार अमृत राय से सत्य प्रकाश मिश्र की भेंट वार्ता। कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय होगा दिन में 12:30। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी ज्योति शुक्ला से की गई बातचीत शिक्षा और कौशल। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे ओंकार नाथ के गाए लोकगीत। किसान वाणी कार्यक्रम होगा शाम 6:50 पर। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे अनिल सिद्धार्थ की वार्ता स्वतंत्रता आंदोलन में इलाहाबाद नगर की भूमिका। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। हेमंत कुमार दुबे, जिनकी उम्र है 45 वर्ष, कद 5 फुट 5

टिंट रंग गोरा, दोहरा बदन, चेहरा गोल है। ये दिनांक 30 मई 2026 से ग्राम सोनपुरा देवसरा प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें अरविंद कुमार दुबे से। इनका मोबाइल नंबर है 9452015645। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9452015645। जलाल खान जिनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये दिनांक 31 मई 2026 से ग्राम रानीपुर पट्टी प्रतापगढ़ से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें खुशनूर बानो से, जिनका मोबाइल नंबर है 7234917363। नंबर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं 7234917363। कौशल्या जिनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, चेहरा लंबा, इकहरा बदन है। ये दिनांक 25 मई 2026 से ग्राम परसरा कोखराज कौशाम्बी से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें बुद्धन से। इनका मोबाइल नंबर है 7840910948। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 7840910948। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
4: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
3: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: पंचो राम राम। और भैया बदरी, कहाँ का हाल बा?
1: मनु भैया, देखा इतना अच्छा मौसम में हाल चाल अपन और खेते के दुन्नो
0: भैया देखा हो एकदम बदरे बदर बदरी बदरी खूब लगत बा।
1: सही
0: मुला देखा, एक बात बताई।
1: हाँ भैया,
0: कि बरसात तो होत बा,
1: हाँ,
0: लेकिन अब हिन देखत बाटी न कि कहीं पानी चहपा कई के बहत बा मेड़ से। तो मेड़बंदी इस समय अगर कहीं भी तनको लगे कि भैया मेड़बंदी बढ़िया से ना भयबा, तो हम तो कहब कि पंच भैया कायदे से पहले मेड़बंदी करें।
1: एकदम सही बात भैया, सबसे पहले किसान भाई काम करें कि जैसे अपन खाना पीना रोज खोत, नहाना धोना रोज खोत, सुबह उठाए या जौने समय आपका समय मिले अपने खेते का चक्कर जरूर काटे, मेड़े डाणे जरूर जाए और देखे कि का कहूं मेड़ कटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा हो, कहा जाता ना कि खेती किसानी पशु परानी है।
1: हाँ।
0: तो पशुधन भी बहुत महत्वपूर्ण होते खेती किसानी में। और आज देखा हो, जैसन की जानत हुई है पंच भैया लोग हैं,
1: हाँ,
0: पहले में से पता हुई।
1: सही
0: तो आज देखा अपने बीच डॉक्टर ST मैकाडी भैया बैठल बाट।
1: हाँ।
0: और भैया एकर जानकार है भैया पशुधन का है।
1: हाँ।
0: तो इनसे जवन भी समस्या हुई पंच भैया का, वो लोग तो जानकारी लेबे करिए पूछबे करिए। एक बात भैया बदरी और कहा।
1: हाँ भैया,
0: कि देखा एक तरीके से देखल जात यूथ में, युवा में, पीढ़ी में बेरोजगारी का समस्या भी बा है।
1: सही है।
0: और देखा काम काज करे खातिर लोग कहाँ कहाँ दूर दराज लोग जाते हैं, कितनी दिक्कत कितनी परेशानी, जितनी कमाई ना हो तो

0: उतना खर्चा हो जाता
1: है। सही बात है भैया, एकदम
0: सही। मुला हम कहीं कि अगर घरे खेत बा है माटी बा, तो मटिये के सोना कहा जाते हो।
1: सही बात है भैया।
0: और युवा में तो इतनी ताकत होते है, तो आज के जो युवा पीढ़ी है ना, पढ़ी लिखी पीढ़ी बा, ओके थोड़ा सा यह दिशा में भी सोचल बहुत जरूरी है।
1: ये भैया आप बहुत सुंदर बात करा, और ये बात से मैं इतना ज्यादा सहमत है कि एकर और गहन चर्चा का विषय है। लेकिन भैया देखा, आज अपन पंच भाई किसान भाई लोग डॉक्टर साहब से बात करे खातिर कि कुछ सवाल पूछ लीन जाए, बड़ा तैयार है और जोहत है कि कोनो हमका बात करे के मिले।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो बात करवा फिर हमान का बतकही तो होते रहे।
1: हाँ भैया देखा, एक टाकर अपने साथ है, अब उनसी भैया बातचीत की जाए और डॉक्टर साहब को बात करावा जाए।
2: हेलो।
1: हाँ राम राम भैया।
2: भैया राम राम
1: भैया, के बोला था और कहाँ से बोला था?
2: भैया हम राम अवतार बोला था, कटवारूपुर गांव इलाहाबाद से।
1: अरे राम अवतार भैया, का हाल चाल बाप का?
2: भैया हाल चाल ठीक बाटे।
1: दिखाई
2: हमारे एक सवाल रहा।
1: हाँ हाँ राम अवतार भैया,
2: कि हम जैसे पशु प्राणी पाले है।
1: हाँ हाँ,
2: तो अमन भैया ये बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होता है, कबो मुंह में कुछ दिक्कत हो जाता, कबो तमाम जगह पे रोग बेरामी जोन हो जाता।
1: हाँ हाँ।
2: हमारी सवाल रहा है ऐसे कैसे बचा जाए, का है कि जब एक बार बीमार हो जाए तो पशु तो बहुत पैसा लगा था हमारे पचन का।
1: अच्छा देखा, डॉक्टर साहब बैठा है और तो हाँ प्रश्न सुनी ले हैं। हाँ,
0: सुन ले।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, ये कैसे बचा जाए ऐसे जो ही तमाम तरह का जो समस्या हो जाता।
3: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है इस समय के अनुसार, क्योंकि ये बरसात का समय है। इस वक्त ख़ास तौर से जो आपने सवाल पूछा है वो पूरी तरह से इसी समय के ही लिए है, और ऐसे मौसम में जब बरसात होती है और हमारे पशु जो हैं वो हरा चारा चरने के लिए चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि हरा चारा ही चारा फैला रहता है, तो इस वक्त थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। और वो ये देखना पड़ता है कि जो हमारे हरे चारे जो हमारे अगल बगल उग रहे हैं, उन हरों चारों में कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ और ऐसे जहरीले पेड़ भी उगते हैं जो हमारे पशुओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव रखने के लिए हमें अपने पशुओं को, जब भी हम उनको चराई के स्थान पर छोड़ते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो हम उनके साथ जो भी चरवाहे रहते हैं वो पशुओं के साथ साथ रहें, और थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि इस वक्त जो है दो चीज़ें होती हैं, एक जो होती है कि वो जहरीली घास वगैरह खा लेते हैं, और दूसरी चीज़ कि कुछ सांप कीड़े मकोड़ों से उनको बड़ा खतरा रहता है इस वक्त, क्योंकि जब ये बरसात होती है तो ये सारे सांप और कीड़े मकोड़े जो हैं ये पशुओं के ही जाकर के आसपास छिपते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान इसलिए ऐसे रखा जा सकता है कि आप इनका समय समय पर इनके मुंह को हमेशा ध्यान देते रहें कि इनके मुंह पर जो है वो छाले ना पड़ने पाएँ, और जब भी ये खेतों में जाते हैं और चर करके वापस आते हैं तो KMNO4 होता है, कैल्शियम वो लाल दवा जिसको कहते हैं गांव में, हमारे किसान भाई सभी जानते हैं लाल दवा जो कहलाती है, वही लाल दवा जो होती है इसका घोल बना करके रखें, और इसका घोल जो है उसकी मात्रा जो होती है वो करीबन 10 लीटर में एक चुटकी के बराबर इतना आप इसको डाल दें, और जब भी आपका पशु आता है तो उसके खुर को और उसके मुँह को इसी लाल दवा से धो दें, तो इससे आपके पशु पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और हर तरह से किसी तरह से विष के संपर्क में नहीं आएंगे।
1: तो देखा भैया, राम अवतार भैया का फोन और डॉक्टर साहब का जवाब
0: सलाह,
1: देखा यह कहा थी कि भैया जो अनुभव हो था ना, जो विशेषज्ञ भैया रहे नोतिन, यह हम आप बतियाई थी पंचायती में, रोज यह बात करी थी, लेकिन तब हमका लगा था कि बहुत छोटी सी बात कह ली, लेकिन डॉक्टर साहब कितना अच्छे तरीके से धीरे धीरे सारी बात बताए।
0: बिल्कुल भैया, एक वैज्ञानिक कारण काबा वैज्ञानिक ढंग से कोने ढंग से देख रेख किया जाए। और देखा हम कहीं ना कि अब जैसे राम अवतार भैया जो बात पूछे,
1: हाँ
0: तो एक जानी के ना
1: सही
0: बहुत लोगों का समस्या बा है, तो ढेर लोग जो ने कि इस समस्या से समाधान पाई हैं। और भैया देखा हम कहें कि जो बात होत रही युवा पीढ़ी की बात होत रही, तो खेती किसानी भी अगर देखा जाए तो आज के समय में व्यावसायिक खेती भी होता,
1: बिल्कुल
0: आए तमाम जो ना औषधीय फसलन का खेती होता, फूल का खेती होता, तो युवा पीढ़ी अगर अपने सोच में बदलाव लावे और दूर दराज जाके भैया और बहुत पैसा भी ना बचा पाओते, बहुत खर्च होता, वो

0: बढ़िया अगर खेती किसानी में अपने दिमाग लगावें तो निश्चित रूप से भैया, जो कहा जाता ना कि अपने देश का माटी सोना उगलत है, वो
1: सही
0: है
1: बात
0: सोना
1: है,
0: उगली भैया। और वो करी
1: बिल्कुल।
0: साथ साथ भैया देखा पशुपालन भी एक बहुत बढ़िया व्यवसाय के रूप में अपना सकते।
1: और
0: युवा
1: का
0: पीढ़ी देखा एकदम पढ़ी लिखी भैया पूरा ऊर्जावान उत्साह से भरल होता, तो अगर पशुपालन के भी वैज्ञानिक तौर तरीका से वो करत हैं तो बहुत से लोग यमन भी अपन मिसाल कायम की हैं भैया करके।
1: एकदम सही कहा था भैया। और आज के युवा के पास तो भैया ज्ञान बा, विज्ञान बा, वो मोबाइल से, मौसम विभाग से,
0: तकनीकी ज्ञान
1: कृषि,
0: भी है भैया
1: हाँ,
0: पूरा है।
1: और उसी इतनी बढ़िया खेती के लिए थी। अच्छा देखा डॉक्टर साहब बैठा है तो भैया हमारों कुछ बात करे मन होता यह है
0: अरे कहे
1: कि
0: नहीं कहे नहीं।
1: डॉक्टर साहब एक बात आपसे जैसे पूछा जाए, जैसे हम लोग अपने भाई पंचायती घरे जावे ना तो तुरंत हो कि हर दूसरा तीसरा किसान भाई एक के बात कहा भैया कि पता नहीं कहे भैया चारा तो बहुत खियावत है लेकिन हमरे जो जानवर है जो मवेशी है उकर दूध घट जाता है। डॉक्टर साहब ये बड़ी समस्या आवत है, एकर का बारिश के मौसम में खास कोनो परेशानी होता है या दूध ऐसे घट जाता है, कुछ बताओ एकरे बारे में।
2: हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले मैं उस बात पे थोड़ा सा विचार प्रकाश डालूँगा जिस पर आप अभी बता रहे थे कि हमारे जो नई पीढ़ी है, जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो युवा वर्ग जो है ज़्यादातर आजकल अपनी जगहों से पलायन कर जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: ये बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश की है, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की। ये इस तरह की समस्या है कि हमारे यहाँ का युवा जो है वो पढ़ लिख लेता है तो उसके बाद फिर वो यहाँ से पलायन कर जाता है और बड़े बड़े शहरों में जा कर के गाड़ी धोना, पेट्रोल भरना, इन सब कार्यों को करेगा और उसके बाद जब वहाँ से आएगा तो गांव में एक दिखाता है कि हाँ भाई हम बहुत बड़ा अच्छा काम करे थे अभी वहाँ। लेकिन हमारा जो शिक्षा का केंद्र जो होता है, जब हम शिक्षित हो जाते हैं,
0: जी
2: इसी को कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की प्रवृत्ति को मुक्त करने के लिए है।
0: सही पूरा पूरा
1: कह
0: व्यवहार में बदलाव लावत है
2: जी,
0: भैया।
2: हमारी सोच में बदलाव, हमारे हर चीज़ में बदलाव। तो शिक्षा जब हम लेते हैं तो शिक्षा हमें ये नहीं सिखाती कि हम अपने खेतों को, अपने जानवरों को, अपने पुराने लोगों को छोड़ के और पलायन कर जाएं। शिक्षा हमें ये सिखाती है, जैसे आज की बात अगर हम करें आज के युग की, तो हमारा जो नौजवान है, जो शिक्षित वर्ग है अभी हमारे साथ, वो ये सोचता है कि जो खेती बाड़ी पशुपालन है ये जो है वो हमारे बाप दादाओं का काम है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा ये काम नहीं है कि हम जा करके खेती करें और कीचड़ में जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम कहें कि इस सोच में एक बदलाव लावे की जरूरत,
1: एकदम सही बात,
0: एकदम सोच में
2: सही कहें,
0: बदलाव लावे की
2: एकदम
0: जरूरत।
2: सही कहे हैं। अत इमे जोन है वो सोचत हैं कि हमार जोन बूढ़ पुरनिया हैं जो पढ़े लिखे नाई हैं, ई का जा करके खेते में काम करें, कीचड़ में काम करें, गोबर के साथ काम करें, हमार हम पढ़ लिख लिए ही ग्रेजुएट हो गई है, हम जा कीचड़ में काम करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो
0: भैया,
2: ये वाली चीज़ जब आपकी सोच आ जाएगी तो आप दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जा करके पेट्रोल भरना, गाड़ी साफ करना।
0: तमाम ऐसा काम भाई काम तो देखें कर ही के पड़ते हैं। मूला हम कहें कि अगर अपने माटी में, अपने गांव में, अपने घर में
2: जी
0: अगर यह तरह का सुविधा मिल जाते करत हैं तो बहुत बढ़िया हुई भैया। देखा बातचीत होत रही
1: हाँ
0: मूला,
1: हाँ
0: और एक लोगों से बात किया जाए। हाँ भैया,
3: मैं बुखार से दबरे। हेलो
0: हाँ भैया, हाँ
3: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार, राम राम भैया।
3: जी सर, हमको जैसे पशुपालन से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए थी सर। तो जैसे हम जानवरों को कीड़ी लगभग महीने में दे सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मतलब कितने दिन में एक बार हम कीड़ी की दवा दे सकते हैं?
0: कीड़ी की दवा?
3: जी सर।
0: अच्छा, तो एकदम डॉक्टर साहब बैठल हो, बात भी सुनत हो, डॉक्टर साहब
2: हाँ
0: बतावें।
2: नमस्कार सर, जो भी आपने नाम नहीं बताया अपना।
3: जी, मेरा नाम शैलेन पांडे है सर,
2: अच्छा
3: मेरा घर
2: शैलेन जी,
3: नवाबगंज।
2: नमस्कार।
3: जी सर, नमस्ते।
2: और देखिए, कीड़े की दवा जो होती है ये बहुत ही
3: जी सर।
2: महत्वपूर्ण दवा होती है पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। और
3: जी
2: इसको जो है, हम जब बच्चा पैदा होता है, गाय का जब बच्चा पैदा होता है, उसके हम 6 महीने के बाद देना शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद हम उसको पहली खुराक देते हैं, उसके बाद 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, और फिर उसके बाद हम इसको साल में 2 बार देते हैं। जब वयस्क हो जाता है पशु तो साल में 2 बार देते हैं इसको।
3: जी सर।
2: तो ये जो आपने जो पेट के कीड़े की दवा पूछी है ये बहुत ही
3: जी सर।
2: महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान
3: जी
2: रखिएगा।
3: जी
2: इसको डिवर्मिंग कहा जाता है और इससे जो है हमारे

0: अरे सिर्फ पशु ही नहीं, अगर इंसान भी अपना स्वास्थ्य ठीक रखना हो तो उसको अपना पेट ठीक रखना होता है। अगर पेट
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है तो फिर सारा शरीर ठीक है। तो इसीलिए
1: जी
0: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इसको ध्यान में रखते हुए कि पशुओं का जो देखभाल, हम समझते हैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा।
1: जी सर, जी सर,
2: बहुत बढ़िया भैया। देखा सवाल पूछा गया और डॉक्टर साहब का जवाब भैया इतना बढ़िया
1: अरे
2: रहा
1: भैया
2: था।
1: देखा हो पहलवा तो जो ने कि हम अनो की कीड़ी का दवाई खाए के पड़े है,
2: हाँ सही
1: और
2: बात
1: डॉक्टर
2: है,
1: लोग कोनो अगर रोग बेरामी होखे
2: हाँ
1: तो एक ठे टिकिया पकड़ा दे लो,
2: सही
1: तो
2: बात
1: पशुअन
2: है,
1: के भी जरूरी होते हैं। मुला हम कहीं कि देखा बात बतकई हो तो पंच भैया कान रोप के बैठा हुई है, सावन का महीना बा,
2: हाँ
1: झमाझम
2: हाँ हाँ
1: बरसात बा,
2: हाँ
1: तो एक ठे कजरी हो जाए।
2: अरे क्या बात भैया, कजरी सुनवा दे, समझा दिन भरे के थकान आज एकदम दूरे हो जाए। सुनवा भैया।

0: बात भैया, मतलब गहुआ गहुआ कजरिया घोय
1: बिल्कुल
0: जात
1: भैया,
0: है।
1: देखा हो फिर से फोन आवत बा।
0: हाँ भैया देखा, अपने साथे कोनो फोन लाइन पे आए गया। हाँ डॉक्टर साहब से बात करे चाहता है। हाँ हेलो हेलो
1: हेलो
0: भैया, के बोलता
2: हेलो,
0: है और कहाँ से बोलता है?
2: हम अवध नरेश बोल रहे हैं, या करवी चित्रकूट से। हाँ
0: अच्छा, राम राम भैया। देखा डॉक्टर साहब अपने साथे लाइन पे हैं, आप सीधे उनसे बात करा भैया और अपन प्रश्न पूछा।
2: जी, डॉक्टर नमस्ते। डॉक्टर
1: हाँ नमस्कार नमस्कार
2: साहब ये बताएं, जैसे हम ये गाय भैंस रखे हुए हैं, तो इनका हम चरे खातिर जैसे छोड़ दें, तो जैसे चर के आए तो इनके पेट वेट में फूल जाता है, तो ऐसा कैसे होता है और किस कारण।

0: होता है और इसका उपचार कहाँ है?
1: अच्छा, देखिए जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ये परेशानियाँ होती हैं कि पेट फूलना और इनके मुंह पे छाले निकल आने, इस तरह की बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला ये है कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिए में आप पशुओं को चरने के लिए छोड़ते हैं, उस एरिए का जो घास होती है या उसमें ये एक सुनिश्चित करना पहले से पड़ता है, जो भी लोग वहाँ पे अपने जानवर ले जाते हैं वहाँ ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि वहाँ कोई जहरीली घास तो नहीं हो रही है। और कभी कभी क्या होता है कि पशु जब बरसात में कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हरी चीज़ें आ जाती हैं तो जानवर जो है वो बहुत अधिक तादाद में हरा चारा खा लेता है, जिसकी वजह से उसके पेट में गैस बनने लगती है और वो गैस इस लेवल पर बनती है कि उसका पेट फूल जाता है और 4 से 6 घंटे में जानवर की मौत हो जाती है। हाँ, तो इसमें बहुत ख़ास ज़रूरी चीज़ है कि जब आप सवेरे के वक्त जब उसकी बूंदें घासों पर पड़ी रहें तब आप पशुओं को चराने के लिए ना भेजें, ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि जब चर करके पशु आता है तो इसके बचाव के लिए मान लीजिए कुछ जहरीला खा लिया या किसी तरह का कोई चीज़ इस तरह का हो जाता है, पेट फूलने लगता है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि उसको अपने घर में जो भूसा जब बांध करके आप देते हैं दुहाई के टाइम में, तो भूसे में थोड़ा सा गुड़ मिला के, ठीक है, गुड़ मिला करके भूसे में ज़रूर पशु को दें अपने। इससे जो है उसके अंदर का जितना भी जहर होगा वो भूसा जो है वो सोख लेता है। तो ये प्रक्रिया जो है, और पानी की मात्रा, शुद्ध पानी पिलाएं पशुओं को, तो उससे आपके ये परेशानी की जहरीला वाला जो पेट फूलने की परेशानी है ये नहीं होगी।
2: बहुत बढ़िया जानकारी भैया डॉक्टर साहब दे दें। इस सही बात देखें डॉक्टर साहब, एक पारंपरिक रूप से अगर गांव में देखी तो एक नियम बना हुआ रहा कि सुबेरे सुबेरे केवल आपका अपने हौदा में चारा खियावे कहा है और दोपहरिया में लेके जानवर का खेते में जावा जा रहा। तो देखें उनका वैज्ञानिक कारण कितना बढ़िया बा कि सुबह सुबह ओस पड़ी रहत रही और उसी नुकसान के तरीके से गैस बन सकत रहा, ओकरे खातिर नियम बना हुआ।
3: बिल्कुल सही बात भैया, हम कहें कि चारों तरफ हरियर हरियर हो जाते हैं और भैया देखा खाए वाली चीज होता कि अगर मनई का जीव ललचा जाता है तो पशु भी जहां देखते भैया हरियरी है एकदम सोचते कि कितना खा लें कितना चर लें, ओके तो नुकसान कई जात है। भैया एक जो बात चलत रही विशेष करके युवा पीढ़ी का, डॉक्टर साहब मैं जानना चाहब कि जैसे बहुत से युवा ऐसा भी है ना कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा बाटे भैया, है चाहे खेती किसानी का बात हो के, चाहे डेयरी उद्योग का बात हो के, चाहे बागवानी का बात हो के, बहुत से युवा बहुत बढ़ चढ़ करके मन काम करते हैं। मुला अगर कोई हम कहें कि बहुत कम पूंजी में छोटे स्तर पर अगर क्यों चाहत हो कि भैया 2-4 पशु रख के हम कुछ पशुपालन करी और डेयरी उद्योग का शुरुआत करी तो कौन ढंग से उकर शुरुआत कर सकते हैं?
1: देखिए
3: विशेष करके युवा पीढ़ी अगर चाहते हैं।
1: हाँ, तो इसमें हम अपने युवा पीढ़ियों को, जो पढ़े लिखे हमारे हमारा समाज है, जो हमारे नए युवा पीढ़ी निकल करके आ रहे हैं, जो कार्य के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे हमारे PM साहब का एक उनका सपना भी है कि हम आत्मनिर्भर बने, किस तरह से हम आत्मनिर्भर बने, उस चीज़ को देखते हुए आजकल क्योंकि नौकरियां जो हैं वो बहुत कम हैं और हमारे जो पढ़ाई करके जो ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो बच्चे निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
3: बिल्कुल,
1: तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि हम आत्मनिर्भर बने, उसमें हमारा एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत काम आता है, पशुपालन उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
2: सही बात है।
1: और इसको शुरुआत करने के लिए हम ये समझते हैं कि आप इसमें कई तरह के उद्योग अलग अलग हैं, जैसे कि मुर्गी पालन है, बकरी पालन है और भेड़ पालन है, गैया पालन है, सुअर पालन है, इस तरह के तमाम ऐसे हमारे उद्योग हैं जो कि बहुत ही जल्दी
3: बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं भैया। हम कहीं कि देखा हो अब जो ना कि फोन पर भी बात कर लिया जाए। हाँ भैया,
0: हेलो।
3: हाँ हेलो।
0: हाँ हाँ सर जी नमस्ते।
3: अरे नमस्कार, राम नाम भैया, कहाँ से बोलत है, का नाम बा
0: भैया? हम जो नहाए सुराओं के लगे से बोलत है जो नहाए।
3: हम्म,
0: हमारा रंजीत नाम बटे भैया।
3: रंजीत हम

0: भैया बतावा, का हाल चाल बा?
1: बढ़िया भैया। जो ना है और आपके जो ना कार्यक्रम हम हमेशा सुनत रही थी। अच्छा
0: बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम सुनत
1: अच्छा
0: रहें, बहुत काम के
1: तो
0: जानकारी दिया जात है। तो
1: हाँ
0: सीधे
1: भैया
0: आप बात
1: बिल्कुल।
0: करें, का आपका समस्या बा, कौन आपका प्रश्न बा डॉक्टर एसडी मैकाटी साहब से?
1: अच्छा, भैया
0: हाँ सीधे बात
1: जो
0: करें,
1: ना
0: लाइन
1: है।
0: पर
1: ठीक
0: हैं।
1: भैया।
2: हाँ रंजीत जी नमस्कार,
1: नमस्कार भैया। भैया
2: कैसे हैं आप?
1: हम बढ़िया हैं भैया। जो ना है हमका पशुपालन से संबंधित जो ना है एक जानकारी चाहता था।
2: हाँ पहले ये बताएं आप कौन कौन से जानवर पाले हैं अपने पास?
1: भैया हमारे पास गाय और भैंस है।
2: अच्छा बहुत अच्छी बात है, और आगे क्या जानना चाहते हैं आप?
1: भैया जो ना एक हमारे गैया के जो ना दिक्कत ये रही कि उसके जो दूध है बहुत खुनखार दे लागे है। हाँ
2: अच्छा, हम समझ गए समझ गए।
1: तो ओके हम दवाई भी बहुत कराए लेकिन जो ना है देसी उपाय किंगवा लेकिन ओमे अब
2: चलिए इसको
1: कोनो जो ना
2: समझ
1: है।
2: लीजिए,
1: जी
2: इसको
1: जी भैया
2: समझ लीजिए, इसमें परेशानी क्या है। देखिए जब गाय जो होती है दूध देती है, जितने भी हमारे दूध देने वाले पशु होते हैं है ना, इनकी छिमी होती है, और छिमी के ऊपर जो है अडर होता है जहाँ पे दूध इकट्ठा होता है, ठीक है।
1: जी
2: तो जितने भी नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, नुकसानदायक कीटाणु होते हैं, ये दो ही चीज़ में पैदा होते हैं, एक दूध में और एक खून में, ठीक है। तो
1: जी
2: ये
1: भैया
2: जो दूध हम निकालते हैं, ये दूध को इसीलिए खौलाया जाता है ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई विषैला जीवाणु ना आ जाए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हम लोग जब थन में से दूध निकालते हैं तो हमारी दुहाई का जो प्रक्रिया होती है, वो दुहाई की प्रक्रिया अलग-अलग तरीके से होती है जो कि सही नहीं होती है।
1: जी
2: जब एक कुछ लोग जो होते हैं वो अंगूठे को मीच करके करते हैं, एक लोग कुछ लोग जो होते हैं चुटकी विधि से निकालते हैं, और कोई लोग होते हैं कि वो पूरे हाथ से दूध निकालते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि कभी-कभी छिमी के आकार पे भी निर्भर करता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो आप बात बता रहे हैं, इसमें हमारा जो पूरा दूध बनने का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि 7 से 9 लीटर खून जब फिल्टर होता है तब जाके 1 लीटर दूध बनता है। उसके पोषण तत्व जो होते हैं ना, जो पोषण तत्व होते हैं, वो पोषण तत्व सभी खून में होते हैं। खून कोई खराब चीज़ नहीं होती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात।
1: जी
2: खून जो
1: भैया
2: है
1: जी
2: जैसे पानी होता है, इसी तरह से खून भी होता है, लेकिन बस उसमें लाल रंग होता है, उसमें इसमें रेड सेल्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उसको दिखने में वो लाल दिखाई देता है। और जो पानी होता है वो शुद्ध पानी होता है, तो उसमें जो है वो रेड सेल नहीं होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लोग दूध निकालते हैं, और दूध निकालने के बाद दूध थन में बचा रह जाता है, आप समझे। तो जो दूध थन में बचा रह जाता है, उस दूध के बचे रह जाने से उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं उसके छिमी के छेद के द्वारा। और जब वो छिमी के द्वारा उसमें प्रवेश करते हैं, तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि दूध को जा करके फाड़ देते हैं वहाँ। और जैसे ही वो फाड़ते हैं तो दूध जो है वो नली जो है वो बंद हो जाती है, और नली बंद होने के बाद उसमें अंदर जो है वो खराबी शुरू हो जाती है। जिस प्रोसेस से दूध बन के आता है फिर वापस उसी प्रोसेस में जाने लगता है, मतलब खून से बन के आता है तो फिर वापस खून बनने लगता है। तो इस क्रिया में जैसा आपने बताया अभी कि वो थोड़ा मटमैला रंग का और नमकीन टाइप का, और थोड़ा दही की तरह भी निकलता होगा, जब कई दिन हो जाते हैं तो वो दही के प्रक्रिया में निकलने लगता है। तो इसके लिए आप एक इलाज है, बहुत सीधा सा इलाज है, इसमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, और वो जगह के अनुसार जहाँ वहाँ पे आप जाएंगे, जहाँ पे आपकी उपलब्धता जिस तरह के एंटीबायोटिक की होगी, वो आप अपनी जगह से लेकर के किसी भी पशु के चिकित्सक उससे मिल करके आप उसमें लेंगे। तो एक ट्यूब होता है, वो जैसे कि आप कॉलगेट हम लोग पेस्ट करते हैं, इसी तरह का एक ट्यूब होता है। उस ट्यूब में जो है एक आगे चोंच लगी होती है बहुत लंबी सी, उस चोंच को पूरे उसके थन में डाल करके उसको एक बार में प्रेस कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया कम से कम 15 दिन करते हैं तो
0: ऐसे
2: वो
0: जो ना
2: दूध
0: कि
2: साफ हो
0: समस्या
2: जाता
0: से
2: है,
0: समाधान
2: समाधान
0: मिल
2: मिल
0: जाते
2: जाता
0: भैया।
2: है।
0: एक जानी और जुड़ा बाटे तो इन्हों से बात किया जाए। हाँ भैया,
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: अरे नमस्कार, राम राम भैया, राम राम।

0: नाम का
1: राम
0: बा
1: राम
0: आपका?
1: भैया। छतपाल सिंह पटेल पूर्व प्रधान सल्लापुर बोल रहे हैं सर।
0: अरे छतपाल सिंह, हाँ भैया बताओ क्या हाल चाल बा?
1: हाँ हाल चाल सब एकदम लगा दे भैया।
0: आ खेती किसानी बढ़िया बा?
1: खेती बाड़ी बहुत बढ़िया है, बारिश खूब बढ़िया हो गया, धान वो
0: हाँ
1: सब लगा है,
0: बिल्कुल, बारिश तो
1: बैगन
0: बढ़िया
1: वगैरह
0: भय
1: लग
0: बा।
1: गए हैं सब।
0: तो देखा एकदम डॉक्टर साहब बैठा बाटे, तो खेती
1: हाँ
0: किसानी के छोड़ के पशुपालन के बारे में जवन आपके जानकारी
1: हाँ
0: लेवे को के सीधे लाइन पे जुड़े हैं डॉक्टर साहब, बात करें आप।
2: हाँ छतपाल जी नमस्कार,
1: नमस्ते डॉक्टर
2: बताइए
1: साहब। हाँ सर,
2: आपको क्या किस तरह की परेशानी है?
1: सर दिक्कत ये है, भैंस पाले हैं, एक पंजिया है, 4 साल की हो गई है, वो गर्भ धारण नहीं कर रही, न चिल्ला रही है, उसको क्या किया जाए।
2: अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें जो है ये
1: हाँ
2: थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, और
1: हाँ
2: उसमें कई
1: डॉक्टर,
2: कारण हो सकते हैं गर्भ धारण ना करने के, जिसमें से एक
1: हाँ
2: बहुत
1: हाँ
2: बड़ा, सबसे बड़ा जो कारण होता है वो इन ब्रीडिंग का होता है। हम इन ब्रीडिंग का मतलब हो गया आपस में ही संबंध बनाना। जैसे हमारे गांव में देखा गया है, जनरली क्या होता है कि पशु जो होते हैं हमारे गांव में, मान लीजिए एक 10 पशु हैं, तो 10 पशुओं में जो है वो 10ों जो हैं बच्चा देंगी तो एक 5 नर देंगी, 5 मादा देंगी, यही तो होगा ना। अब उन 5 मादाओं को तो हम रख लेते हैं, लेकिन नरों को हम भगा देते हैं अपने घर से। ये हमारे गांव की एक बड़ी खराब विडंबना है। तो वो जो 5 नर हम भगा दिए, वो उन्हीं 5ों की बहन बहन भाई हुए ना वो, तो जब हम उनको निकाल देते हैं अपने यहाँ से, तो वो बेचारे भाग के जाते नहीं हैं, वो गांव के इर्द गिर्द ही घूम करके और अपना भोजन आप जीवन यापन करते हैं, है ना। और जब हमारे ये पशु जो हम उनकी बहनें होती हैं, ये जब बड़ी होती हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये दोनों भाई बहन हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब वो गर्म होती है तो अरे बेटवा देख है एका एका ले जा, वही पीपल के नीचे जो सड़वा है ना, सफेद का सड़वा, वही से धनवाई दिए, यही तो करते हैं ना गांव में। तो अब वो ले जा करके जब उन साड़ों से उसकी सर्विसिंग हो जाती है, वो कंसीव भी कर जाती है, बच्चा भी पैदा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन परेशानी कहाँ होती है कि उसके जेनेटिकली प्रॉब्लम आ जाती है इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो गैया 4 लीटर दूध देने वाली होगी, अगर उसमें इन ब्रीडिंग हो जाएगा तो अगला उसकी अगली जो मादा होगी वो दूध ही नहीं देगी। तो इसका कोई इलाज नहीं होता है, इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप उसको देखना पड़ेगा, पशु को आप अपने चिकित्सक के पास ले जाइए और दिखाइए उसको, चेक करवाइए कि क्या परेशानी है उसको, क्योंकि
1: ठीक
2: ये
1: है सर,
2: परेशानी कई तरीकों से होती है। एक आपको मैंने बहुत खास वजह बताई हमने, जो हमारे यहाँ के,
1: समझ गया डॉक्टर साहब।
2: हाँ तो ये हमारे यहाँ बहुत होवत है। और दूसरा जो कारण है कि हमार जो पशु है वो गर्म होता है ना, और जब गर्म होता है तो हमका ये नहीं पता चलता है कि कब हमका धनवाए चाहिए, समझ गए।
1: डॉक्टर साहब जैसे कितने दिन में गर्म होती है, एक बार गर्म है दोबारा फिर कितने दिन में गर्म हो
2: हाँ
1: जाएगी।
2: ये जो 1.5 साल में, देखा जानवर का बड़ा वयस्क होता है 1.5 साल में, ठीक है, और 1.5 साल के बाद जब वो गर्म होता है, पहली बार गर्म होता है, तो पहली बार में गर्म होने में 24 घंटे से 30 घंटे तक इसकी गर्मी रहती है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग ले जा करके जैसे ही शुरुआती गर्मी भाई, तो इनकी ओवरी होती है जो अंडा निकलता है ओवरी में से, तो वो ओवरी में से अंडा जो है 25 से 30 घंटे बाद निकल करके बच्चेदानी में आता है, और उसके बाद जो वहाँ पे बीज जा करके तब वहाँ पे वो बच्चा बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अंडे को निकलने ही नहीं देते हैं 25 से 30 बार, शुरुआती 16 से 18 घंटे के बीच में ही ले जाके धनवा देते हैं। तो जब
1: सही
2: अंडा
1: बात है सर,
2: निकलेगा ही नहीं तो आप उसमें 2 किलो बीज डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन थोड़ी सी हम लोग की जानकारी के अभाव के कारण हमारा पशु खराब हो जाता है ना। तो हमेशा कोशिश करें, जैसे आज गर्म हुई है तो आज गर्म होने पे जो है उसको कम से कम दूसरे दिन उसको सर्विस कराएं, और ये जो गर्मी है इसकी हर 21 दिन के बाद होती है, ठीक
0: तो
2: है।
0: बहुत बढ़िया। देखा रंजीत भैया के इतना अच्छे से जानकारी दे दिया गवा कि अब देखा सबसे पहले तो यह काम करिए कि अपने चिकित्सक को जरूर दिखा लें कि का समस्या आ है। और देखा
2: बिल्कुल
0: आज
2: भैया,
0: एक अपने फोन लाइन पे और

0: जिन्हें साहब से जुड़ा है, डॉक्टर साहब से बात करे बोले भैया के बोला था। हेलो
1: जी भैया, जय राम जी।
0: जय राम जी की भैया, कहाँ से बोला था
1: भैया? हम फूलपुर के से बोलते ही।
0: अच्छा, नाम का है भैया? तो है
1: नाम हमारा ओम प्रकाश है।
0: ए ओम प्रकाश भैया, देखा डॉक्टर साहब पंचायती में अपने बैठा है, सीधे वो नहीं सवाल पूछा भैया, पूछा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: हाँ ओम प्रकाश जी नमस्कार।
1: जी भैया, जय राम जी।
2: जय राम, बताएं।
1: डॉक्टर साहब हमारा सवाल ही है आपसे कि अबे हम तो मान ले घर पे हमारे ये एक दो गाय भाई है और अब हम चाहते हैं कि बकरी पालन के हम काम शुरू करें चाहते हैं, तो ओके विषय में आप हमका सलाह दे दें कुछ।
2: देखिए बहुत अच्छी सोच है आपकी, हमेशा कोशिश करिए। हम सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उनके सपना है कि हम लोग हमेशा जब भी खेती करें तो जो भी हमारा खेत है उस खेत को का 50% जो है एग्रीकल्चर करें, 30% जो है उद्यान वाला बागवानी उद्यान या और 20% पशुपालन, ठीक है ना। अब इस पशुपालन में आपके अलग अलग तरह के पशु आते हैं, तो इसके लिए हम आपको एक राय देंगे, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और ये बत्तख पालन, ये सभी जो हैं आपके श्रेणी में आते हैं और आप इसको बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। आप कहाँ से हैं?
1: हम फूलपुर से हैं साहब।
2: अच्छा, फूलपुर से। तो फूलपुर छाता में जो है ना एक कृषि विज्ञान केंद्र है।
1: अच्छा,
2: आप उस कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए और कृषि विज्ञान केंद्र में आपको हर एक विषय की अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, खास तौर से पशुपालन में बकरी पालन का और मधुमक्खी पालन का और तमाम तरह के जितने भी पालन होते हैं उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसको आप ट्रेनिंग ले, वहाँ पे 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है और आप ट्रेनिंग ले करके एक उचित व्यवसाय अपने यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे आपको जानकारी ना मिले तो नैनी शुआर्ट्स में आप आकर के वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें।
0: बहुत बढ़िया जानकारी देन भैया।
3: हम कहीं कि देखा हो इतना बढ़िया बढ़िया लोग अपन प्रश्न करते हैं और वही तरीके से देखें डॉक्टर साहब बिल्कुल देसी तरीका से भैया
0: सही बात
3: समझावत है बतावत है। बहुत साधारण बात जो उनके कि लोग समझे ना, लेकिन फिर भी पहले गांव में लोग ओके किया करते रहे पहले।
0: सही बात है।
3: हम कहीं कि देखा एक बार जो है कि डॉक्टर साहब का फिर से जो है परिचय करा दिया।
0: हाँ हाँ बिल्कुल भैया, किसान भाई जाने तो इतनी बड़ी शख्सियत से बात करता है।
3: तो भाई देखें प्रोफेसर SD मैकाटी, आप शोध निदेशक है भैया स्वार्ट्स।
0: हाँ हाँ,
3: तो हम कहीं कि जहके भी कोनो तरह का जानकारी लेबे के होके है भाई, हम कहीं कि देखा तो एकदम बिल्कुल ज्ञान का गंगा बहत है,
0: सही
3: बात है। ऐसे बढ़िया मौका ना मिली है, अपन फोन उठावे और सीधे सीधे बात करें। और जो एक बात डॉक्टर साहब मन कर शुरू भय रहा विशेष करके युवा पीढ़ी के, और बात यह रही कि जैसे युवा पीढ़ी है भाई बेरोजगार है, पैसा है ना उनके पास, बहुत कम पूंजी है, थोड़ी बहुत पूंजी में उनके कुछ करे के है, अगर वो थोड़ी बहुत पूंजी में अगर पशुपालन कर ही चाहते हैं तो आपकी तरफ से का सुझाव है उनके, कौन तरीके से वो करें, कौन पशुओं का पालन करें कि कम पूंजी में बढ़िया ढंग से वो कर लें। लेकिन हम कहें कि भैया देखें ये बात कही होके कि पहले एक जानी और कालर आ गए हैं जुड़ गए बाटे, तो इनसे बात किया जाए। हेलो
4: हेलो,
3: हाँ नमस्कार, राम राम भैया।
4: नमस्कार, राम राम भैया।
3: हाँ भैया, कहाँ से बोलत हैं?
4: हम भैया प्रयागराज से श्याम नारायण बोलत है।
3: अरे श्याम नारायण भैया, कैसन चल रहा खेती किसानी?
4: हमें जानकारी मिली भैया कि आज अपने पंचायती में एक जानकार भैया आए हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया, शोध निदेशक स्वार्ट्स बैठा है डॉक्टर साहब SD मैकाटी जी, सीधे लाइन पे जुड़ा है, सीधे आप अपन समस्या अपन प्रश्न रखें।
4: हमारी समस्या ये बा कि हमारे भैंस बा ओके बच्चा होई वाला बा, ठीक बा, एक थनैला जो रोग बा, थनैला रोग से कैसे बचावा जाए और ओकर का उपाय किया जाए कि हमारे भैंस के वो दिक्कत ना हो या आराम से हो जाए बच्चा और कोनो यात्रक समस्या ना आवे।
2: हाँ नमस्कार सर जी।
4: नमस्कार।
2: देखिए थनैला रोग का बच्चा होने से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और थनैला रोग आपके एक

0: छीमी में हुआ है या दो छीमी में हुआ है या चारों छीमी में है?
1: दरअसल डॉक्टर साहब, एक एक हमारे पास भैंस पहले रही, तो वो बच्चा होए के समय ही वहां दिक्कत रहा, दो छीमी में जो
0: हाँ।
1: थन होता भैंस का, तो यही वजह से अब जोन बा तो फिर से दूसरे भैंस के ना हो, यह वजह से हम आपके जानकारी बदे फोन करे हैं।
0: नहीं, देखिए, जो थनैला रोग होता है उसका कारण जान लीजिए। उसका थनैला रोग होने का कारण यह है कि आपके दुहाई करने के तरीके में गड़बड़ी है, ठीक है?
1: हाँ
0: आप पूरा दुहाई करना चाहिए, थन में दूध नहीं छोड़ा जाता है। जिस पशु के थन में दूध छोड़ा जाता है वो उसको थनैला रोग हो जाता है, या आप जानबूझ के नहीं छोड़ते होंगे, किसी कारणवश छूट जाता होगा। असल में होता क्या है कि 5 से 7 मिनट तक जो है दूध निकलने की प्रक्रिया चलती है, ये ध्यान
1: हाँ
0: रखिएगा, 5 से 7 मिनट, ठीक है? जो ऊपर से प्रेशर पड़ता है, जो निकलता है दूध, उसकी छीमियाँ जो हैं लंबी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं ना, ये 5 से 7 मिनट तक सिर्फ होता है। 5 से 7 मिनट के बाद अगर दूध होगा भी तो छीनियाँ चुचक के वापस वहीं छोटी हो जाती हैं और दूध नहीं
1: अच्छा
0: निकलता है। तो इस
1: अच्छा डॉक्टर
0: परिस
1: साहब, एक बात और हम जानना चाहते हैं, क्या ये पहली बार बच्चा जो हम देते हैं पशु उन्हीं की हो सकता है?
0: नहीं, ऐसा नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। और आपकी पशु बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी तरह बच्चा देगी, कोई परेशानी नहीं होगा और थनैला रोग भी नहीं होगा उसको, ये हमेशा ध्यान रखें। आप ये मत सोचें कि दूसरे से
1: अच्छा
0: हमारे पशु को लग गया या हमारे एक पशु को है तो दूसरे पशु को हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसमें क्या है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक कर लें, सुधार लें, तो कोई भी किसी भी तरह का थन को साफ करें, दूहने से पहले थन को साफ करें, बच्चे को पिलाने के लिए थन में दूध ना छोड़ें, कि बच्चा को जो पीना हो वो अलग से ऊपर से दूध पिलाएं। थन के द्वारा पीने में बच्चा भी छोड़ देता है या बच्चे की वजह से भी छूट जाता है और उसकी वजह से भी थनैला रोग हो जाता है।
2: बहुत बढ़िया, देखें जानकारी भैया लगे पहुंच गए।
3: अब वही डॉक्टर साहब, संक्षेप में हम आपसे जानना चाहें कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं।
0: देखिए, बिजनेस जो है कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे हम एक मुर्गी पाल करके बिजनेस करें, चाहे हम 100 मुर्गी पाल करके
2: सही
0: बिजनेस करें,
2: बात है।
0: बिजनेस तो बिजनेस होता है, उसको बिजनेस के तरीके से करना चाहिए और उस बिजनेस को उसके पीक तक पहुंचाना चाहिए, ये आवश्यक है। हमारे यहाँ के जितने भी हमारे हम लोग हैं या हमारे युवा पीढ़ी है, वो ये सोचती है कि एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाएं,
2: सही कहें,
0: तो
2: यह तो
0: ये
2: गड़बड़
0: वाली
2: है
0: प्रक्रिया
2: भाई।
0: जो है वो किसी भी इस तरह का कोई जिन्न नहीं निकलता है कि वो एक दिन में आपको हजारों करोड़ों रुपया दे देगा। इसके लिए मेहनत और आपकी लगन जो है बहुत आवश्यक है।
2: सही कहें भैया, और बहुत बढ़िया जानकारी। देखें युवा से भैया शुरुआत भय रही, और युवन के साथ में हम चाहब कि अपने पंचायती में एक ठी डॉक्टर साहब, वाल्मीकि रामायण में जब एक घटना हुआ था कि भगवान राम जब लंका जीत ले थीं, तो बोला थीं कि आप ही स्वर्णमयी लंका, ना मे रोकचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गदापि गरीयसी। यानी हे लक्ष्मण, पूरी ये सोने की लंका जो कुछ है ये मुझको प्यारी नहीं है, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि वाली वही हमारे लिए सर्व कुछ है। तो
0: बहुत
2: भैया
0: अच्छे, बहुत
2: ऐसी
0: अच्छे।
2: बढ़िया किसानी का हुई कि अपने गांव चला, खेती करा। और
3: हाँ, अरे
2: वो
3: अपन माटी,
2: हाँ
3: अपन परिपाटी, अपने गांव का सुगंध भैया जो ना, अपन पगडंडी, ओकर
2: हाँ
3: आनंद अलग है भैया। सेहत बढ़िया रही और देखा आमदनी भी बढ़िया हुई। एक
2: हाँ
3: बात देखा हम कहब हो
2: हाँ
3: कि सबसे पहले तो देखा इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दिए
2: हाँ
3: डॉक्टर साहब अपने बीच में आए, तो डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
3: और देखा हो हम कहें कि पशुपालन में भैया, पशुपालक भैया लोग, पंच भैया लोग बढ़िया बढ़िया सवाल किए, इस सवाल से और भी बहुत लोगों के जानकारी हुई, इस सभन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देखा हो बुन्नी बरसात का मौसम बा है, तो हम कहें कि बुन्नी बरसात का मौसम बा, मौसम के अनुसार खेती किसानी में भी ध्यान रखे के
2: सही
3: चाहिए,
2: बात। आये
3: है?
2: मनु भैया घरेती कहे रहन कि समय से चलो हुआ वही कहा है, तो देखा आओ घरे चले को समय होता है भैया। डॉक्टरों साहब का धन्यवाद दीन जाए, और साथ ही साथ पंच भाइयों का सलाह दे दीन जाए कि देखा बारिश में भीग गया तो बहुत संभल के
3: बिल्कुल,
2: आपन
3: मेड़बंदी
2: ख्याल
3: बढ़िया
2: जरूर
3: से
2: रखा।
3: करें और चला भैया भीगे के पहले, पंचों राम
2: राम
3: राम राम।
2: राम।

0: अभी आपने सुना देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

0: दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए वो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
4: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित

0: हित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल भगवान बुद्ध की तपोस्थली सिद्धार्थनगर में विपश्यना केंद्र और कपिल वस्तु स्थित बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन माह के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐसे में सभी प्रकार के वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अम्बेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
1: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उस पे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंधा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत और बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयाग

0: राज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में प्रस्तुत है हरिदत्त शर्मा का काव्य पाठ।
1: प्रथमं योद्धुं प्रवर्तन्ते इति शीर्षकेण अहं स्वकीयं गीतमेकं प्रस्तौमि। युयुत्साह वर्धतेत्यन्तं जना योद्धुं प्रवर्तन्ते न शान्ति स्थाप्यते विश्वे विवादा वै वितन्यन्ते विरोधा प्रतिद्वीपं रे सुदेशा वैर प्रतिबद्धा कलह निरता जना सर्वे न मित्रं कमपि मन्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते। इतो हीरानदेशोऽयं ततश्चेज्राइलो देश विपक्षे स्थितो ह्यमरीका मिथो मनुजा विहन्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते भृशं बमवर्षणं विहितं नगर जन भवन विध्वंस मिसाइल शस्त्र संपातै रहोगे हा विदीर्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते। यतो जनजीवनं भर्तुं भवति बहु तैल संपूर्ति भवति बहु तैल संपूर्ति समेते तैल रस पूरा विघातैर्बहु विखण्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वै वितन्यन्ते। निरुद्धो होर्मुजो मार्गो न लभ्यं तैलसौविध्यं सुवाहनयानमवरुद्धं न यन्त्राण्यपि प्रचाल्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते न तैलं जलडमरुमध्ये सुमार्गोद्घाटनं नोचेत् जनानां जीवनं तैले समैस्तैलानि याच्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते। ऋतेगैसं न दाहकता तु भोजन पाचनं रुद्धं जनानां पङ्क्तयो दीर्घा स्थिता पूर्तिं प्रतीक्षन्ते

प्रपीड्यन्ते विवादा वै वितान्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते उभौ पक्षौ तु मदमत्तौ उभौ पक्षौ तु मदमत्तौ न विरतौ युद्धतो जातौ सुभीषण बम्ब विस्फोटैर्जनाधूलिषु निपात्यन्ते सुभीषण बम्ब विस्फोटैर्जनाधूलिषु निपात्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वै वितन्यन्ते इतो हूतिस्ततो हूतिर् इतो हूतिस्ततो हूतिर् युवैत सिंहनादा वै द्विराष्ट्राध्यक्ष हुंकारा द्विराष्ट्राध्यक्ष हुंकारा सकल दिग्भ्यो निशाम्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वै वितन्यन्ते हता वै

ना वै कुचौर्यं यापणे वृद्धं कुचौर्यं यापणे वृद्धं कुधूर्तैर्धनपिशाचैरे सुलोका।

वीक्ष वही हृदयानिकंपन्ते विवादा वही वितन्यन्ते। भयंकर ड्रोन राकेटई मिसाइल बॉम्ब विस्फोटई भयंकर ड्रोन राकेटई मिसाइल बॉम्ब विस्फोटई सभ्यता ध्वंसमाप्नोति सभ्यता ध्वंसमाप्नोति। सुदेशा नाशमाप्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वही वितन्यन्ते। विनष्टा यंत्रशाला वही विनष्टा यंत्रशाला वही विदग्धा रुचिर गृहशाला। हा विद्यालया ध्वस्ता चिकित्सालया पात्यन्ते हा विद्यालया ध्वस्ता चिकित्सालया पात्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वही वितन्यन्ते। युयु

नीति न जाने किम करिष्यति रे, न जाने किम करिष्यति रे, प्रलय मेघा प्रसार्यन्ते, जना योद्धो प्रवर्तन्ते, युयुत्सा वर्धते त्यन्तम्, जना योद्धो प्रवर्तन्ते, विवादा वै वितन्यन्ते। पुनः रपरम गीतमेकं प्रस्तौमि निवृत्तिर्भवेत् इति शीर्षकेण। नो सुखं नैव दुःखं मनां मानसे, नो सुखं नैव दुःखं।

लेखने या पिता वैक्षणा पाठने लेखने अक्षय कोश आप्तो निधिर्वार्जितो अक्षय कोश आप्तो निधिर्वार्जितो नैव शिष्टा स्पृहा वै धनस्यार्जने चातकानां वियुक्तेस्तु भाव्या ध्रुवम् शुक्लराका भवेत् कृष्णरात्रिर्भवेत् शुक्लराका भवेत् कृष्णरात्रिर्भवेत् मेनुवृत्तिर्भवेत् वा निवृत्तिर्भवेत् पापकर्म प्रयोगैरनेकैस्वया यद्य राज्यं बृहस्थापितं भ्रामकं ध्वंस्यते तत् कदाचार कार्यै स्वयं ध्वंस्यते तत् कदाचार कार्यै स्वयं भाविकालेन भूयो हितं।

एस के घोष के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर

नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2 स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था।

आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री

0: खान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सभी सुनने वालों को अंशुमान का नमस्कार। आवाज जो दिल को सुकून दे, आवाज जो दर्द को जुबा दे, आवाज जो मोहब्बत को एहसास बना दे और आवाज जो बीते हुए लम्हों को आज भी हमारे सामने जीवंत कर दे। आज हम याद कर रहे हैं उस महान फनकार को जिनकी आवाज भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया का एक ऐसा अनमोल अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब की। आज उनकी पुण्यतिथि पर यादों की उस दुनिया में चलते हैं जहां हर मोड़ पर रफी साहब की आवाज सुनाई देती है।

कहते हैं इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी कला और उसकी यादें हमेशा हमारे बीच रहती हैं। रफ़ी साहब भी आज हमारे बीच शारीरिक रूप से भले ना हो, मगर उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों दिलों में उसी गर्मजोशी और मिठास के साथ मौजूद है। रफ़ी साहब की आवाज़ में मोहब्बत का इजहार भी था और जुदाई का दर्द भी।

रफ़ी साहब की गायकी की सबसे बड़ी खूबी थी हर गीत को उसके किरदार की आत्मा बना देना। चाहे पर्दे पर दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, शमी कपूर हो, धर्मेंद्र हो या फिर हो राजेंद्र कुमार, रफ़ी साहब की आवाज़ हर अभिनेता पर बिल्कुल अलग ढंग से ढल जाती थी। जब पर्दे पर शमी कपूर का अंदाज आता था तब रफ़ी साहब की आवाज़ में जैसे मस्ती की बिजली कौंध जाती थी।

0: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं।
1: रफ़ी साहब सिर्फ रोमांस और मस्ती के गायक नहीं थे, उनके सुरों में दर्द की एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वाला अपने दुख भूलकर गीत में खो जाता था। जिंदगी की तन्हाइयों में जब कोई अपना याद आता है तो दिल से यही आवाज़ निकलती है।

रफ़ी साहब के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था उनकी सादगी। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद वो बेहद विनम्र और सहज इंसान थे। उनकी आवाज़ में इंसानियत की मिठास थी और शायद यही वजह है कि जब वो देशभक्ति के गाने गाते थे तो हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता था।

श्रोताओं, आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हम आपको बताए देते हैं। अब्दुल्ला, हीर राजा, जंगली, गाइड, हकीकत और पगला कहीं का। अब आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त करने के लिए मुझे यानी अंशुमान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: क्या आप
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। के समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर।

0: राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों

0: लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों

0: का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi.

0: प्रीति पवार, जैस्मिन लिमोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पांघल अपने अपने मुतालिका मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को 5,070 करोड़ रुपए की कुल मालियत के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि यह स्कीम 5,000 मेगावाट पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर का अहाता करती है, जिसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के ऐसे निजाम भी तामीर किए जाएंगे जिनकी 2 घंटे की कम अज कम जखीरा अंदोजी की सलाहियत कुल 10,000 मेगावाट पर आवर होगी।
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर PV फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
0: मरकजी काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर माली बरस 2030-31 तक अमलावरी होगी। जनाब वैष्णव ने बताया कि स्कीम समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की पूरी वैल्यू चेन में मदाखलतों के एक जामे सेट का अहाता करती है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है।
0: मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि 5 साल की मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के मजमुई माली अखराजात की मंजूरी दी गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि मंजूरी हुकूमत के इस अज़्म की तौसीख करती है कि किसानों की खुशहाली कौमी खुशहाली की बुनियादें इस्तवार करती है। मरकजी काबीना ने खेलो इंडिया स्कीम को वसत अदा करने की भी मंजूरी दी है, साथ ही उसने खेलों के कौमी फेडरेशनों के लिए तावुन में भी इजाफा किया है, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक की मुद्दत के लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन की काबीना की जानिब से मंजूरी भारत के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने की जानिब काया पलट कर देने वाली एक जस्त की अलामत है और इससे समुद्र के किनारों की वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि सरमायाकारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महारत से भरपूर इंसानी असासे और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जाने पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे उनके

0: उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमलावरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान यह बिल पेश किया। यह बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फे सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाज़त देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवात की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के इख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए इख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह के इख्तराअत का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहिमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार दिया था, जिन पर फसादात के दौरान एक हुजूम ने हमला किया था। बाद में उनकी लाश एक नाले में पाई गई थी। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद इंतखाबात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तौहीन आमेज अवामी रद्द अमल का इजहार करते हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन शहरियों के खिलाफ जारहाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में 40 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं। اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے کیونکہ بالائی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ

0: से महानदी और उसकी माविन नदियों में तुगयानी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा के 15 जिले मुतासिर हैं, जहां गांव, सड़कों और हजारों हेक्टेयर काश्त की जमीनों के सैलाबी पानी में डूब जाने से रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। हीराकुंड बांध के 22 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिनसे सैलाब के पानी का इखराज हो रहा है। हीराकुंड बांध में पानी की सतह 625 फीट से ज्यादा हो गई है। बांध में कसीर मकदार में पानी की आमद लगातार जारी है, जिससे मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इन हालात में महानदी के तास में शदीद सैलाब के खदशात बढ़ गए हैं। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कोइंझार जिलों का फिजाई दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। भद्रक में एहतियाती कदम के तौर पर सभी स्कूल बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: गुजरात में रेड अलर्ट के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनूबी और वस्ती खित्तों में रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ा है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि बारिश से मुतासिर जिलों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा और सूरत समेत रियासत के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता है। इस खेल में भारत ने पहली बार सोने का तमगा जीता है। स्मिता ने कनाडा की क्वेंच को खातिन के 48 किलोग्राम जुमरे में 2-1 से हराया। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पांघल अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गए हैं, जिससे भारत के लिए कम अज कम चांदी के 2 तमगे यकीनी हो गए हैं। वहीं अंकुश पांघल ने आज हुए सेमीफाइनल मैच में कनाडा के जोशुआ ओफरी को 5-0 से शिकस्त दी। इस तरह पांघल मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक 18 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4, चांदी के 9 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां।

कभी कभी दिल की गहराइयों में उठी हुई एक आवाज शब्दों का रूप ले लेती है, और जब वही शब्द किसी सुरीली आवाज में ढलते हैं तो वो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही एहसास है जगजीत सिंह की आवाज में सजी इस बेहद खूबसूरत गजल का, जिसमें तन्हाई है, इंतजार है, दर्द है और किसी अपने से मिलने की एक अनकही सी चाहत भी है।

कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं। जो बात लफ्ज नहीं कह पाते उसे अक्सर आंखें कह जाती हैं। मोहब्बत में कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है तो कभी आंखों का मिलना पूरी दास्तान बयां कर देता है। अब सुनते हैं एक ऐसी खूबसूरत गज़ल जिसमें मोहब्बत की कशिश भी है, आंखों की भाषा भी है और दिल की एक प्यारी सी गुजारिश भी है। चित्रा सिंह की पुरकशिश आवाज़ में पेश है ये गज़ल।

मोहब्बत की दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ किसी की एक मुस्कान दिल को अपना बना लेती है, किसी की एक नज़र बेचैन कर देती है और किसी की खूबसूरती देखकर दिल बस यही कह उठता है, कहीं ये दिल फिर से किसी के प्यार में ना पड़ जाए। अब आपको सुनवाते हैं तलत अजीज की आवाज़ में बेहद दिलकश गज़ल, जिसमें इश्क की मिठास भी है, दिल की बेचैनी भी है और महबूब की खूबसूरती का वो जादू भी है जिससे बच पाना शायद मुमकिन नहीं।

कभी कभी रिश्तों में दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि पास होकर भी इंसान बहुत दूर नजर आता है, और कभी कोई शख्स दूर रहकर भी दिल के बेहद करीब होता है। यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरी कहानी है। अब आपको सुनवाते हैं गजल सम्राट गुलाम अली की आवाज में, वो गजल जिसमें कुछ पल की दूरियों को नाम करते हैं जो रिश्तों के बीच आकर भी दिलों को अलग नहीं कर पाती।

मोहब्बत में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। कुछ पर्दे ऐसे होते हैं जिन्हें उठाने की बजाय उनकी ओट में छिपे एहसासों को महसूस करना ज़्यादा खूबसूरत होता है। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की गाई वो दिलकश गज़ल, जिसमें मोहब्बत की शरारत भी है और राज को राज बनाए रखने की एक प्यारी सी गुजारिश भी है।

पंकज उदास की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर उनकी ही कहानी कफन का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं मंजुल किशोर वर्मा और सुनीता सिंह।

0: Sí.
1: ए माधव, माधव उठा हो, माधव, ए माधव उठा था। सूरज देवता कपारे पर चढ़ आई ले और तोहन लोगों के सुतले से फुर्सत नहीं खे। माधव उठा हो, उठ जा, इतना दिन चढ़ आयल, आज कोनो काम काज नहीं करे के बका। ऐसा कुंभकर्ण मदन सुतल हुआ सा। माधव, ए माधव उठा लगा के डाली पानी हमा, उठा,
2: हाँ, सोवा तेरे बुधिया, जाड़ा के दिन में कहाँ बिहान से चीखा चिल्ला लगली,
1: हाँ, तो नहीं देखा था कितना बिहान बाय,
2: बिहान बाय, बिहान
1: बाय, मिल लग गया बाना, जाड़ा का दिन, जाड़ा का दिन, हर देखा है तो थोसा मारे, भोसाउल देखिए नंत, आज हम हो ना जाए काम पे जा, हाँ, आज ना ही हमके नीक लगत बा, मर मर के काम थोड़े करब, हाँ, उठ जा, जाई पानी ले आई। ए माधव, तू उठ जा और बाबू की उठाएगा, कह दे थे आज ना जी बस काम पे ना तो शाम के खाई पी के कोनो ठिकान ना रही। हां
2: जी आई पता ही मोरन झापत सब डगमगल भूल जाई।
1: हां हां मारा मारा मारा हमके यह तो रह गया ला, यही खातिर ना ब्याह के ले आई ला। बरिस्वर हो गल खटत खटत कबो कुछ कर ही ना का हम। ना ही आजीव पर अंचलत बा तो कहा था मारा था इतना कर के ये तो बोल बा।
3: का रे बुधिया
1: पहला लागू काकी
3: खुश रहा खुश रहा।

0: बचिया ई का रे ऐसन हालत में अपन ख्याल रखल कर बचिया। अठवा महीना में पानी भरल ई बोझ उठाइल ठीक ना हन रे।
1: के करी काकी
0: सब ठीक हो जाए।
1: जौन करम लिखा है के आयल बाड़ी तौन तो भोगही के ना पड़ी। के करी
0: चल तू अंदर चल हम पानी भर दे थे। ई हालत में ऐसा नहीं करे के चाहिए बचिया। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो के तो के देखी बचिया।
2: सुत्तल आराम कर दहली सा ई का बिहान से रोगल धवल मचा ले। सांझी के का होई सांझी के का होई। अरे सांझ का इंतजाम संजिया के हो जाए।
1: हां का
2: तो
1: कुल गांव भर के खेती तोहने समन के खातिर लगल बाए।
2: यह
1: संजिया के जाए के केहू के खेत से ले आई हा आलू तो कहीं से मटर उहे भून भान के खा ली हा जा। और नहीं तो केहू के आगे जाए के हाथ पसार ली हा केहू न के कुछ देई न देई। यह तो जिंदगी भर कैला हा जा। केहू गरियावे चाहे मारे चाहे पीटे कोनो फर्क नहीं पड़ेला। हाथ गोड़ हिलावे के ना पड़े बस। न बर्तन न भाड़ा न कपड़ा न लत्ता कौनो चीज नहीं के का जने कैसे घर का बेड़ा पार लगी।
2: सवेरे सवेरे का कटर कटर करा था रे बुधिया। अरे जे के भगवान जन्म दे ले हुआ उकर बेड़ा पार लग जाला।
1: हाँ हाँ तो हाँ लोगन के ता गौवा में इतना काम बाय खेती का किसानी का मेहनत मजूरी करे वाला का काम है काम बाय। गौवा के कुल किसान करता है ना बाड़ा
2: काम करेगा।
3: हाँ दिन रात हार तोड़ा थे ही लोग और हमहन के नीक नहीं है। अरे भुक्कन तो सवय मरत है बाकी हम के हु सुबा कोल्हू के बैल की ताही खटत जात है खटत जात है। अरे हमहु बेवकूफ नहीं है बुढ़िया खेती करे सब हैं हम सब और घर भरा इनके। अरे तू ना समझ।
1: अरे हम कोल बुझीला ना हम मुँह तो रह तब मजूरी तो हम ही के करे के भाई केहू कुछ ना करी ही रेत में तेल सुखावे से कौनो फायदा नहीं किए। जात है हम
2: जा
1: जात है वही जा ताका पे खाना रख दे है खा लिया जा।
2: हाँ खा लिया जा तू जा जान छोड़ा सो दे।

0: ऐसा पाला पड़त बा कि हाथ गोर कुड़कुड़ाए जात बा। ए माथो तनिया गया सुलगारे।
1: एक गोईठा चलते नहीं के बाबू, दुए दुआ हो जात बा।
0: तनी अलुया कुलेर के देखता भुनाए गल की नहीं। आज खाए पिए के कौनो ठिकाना नहीं है। वो जब से मजूरी से लौटी है उसकी हालत ठीक ना जनात बा। जनात बा बची नहीं, जाता नहीं देखते आ।
1: देख के का करब हम, मुबे के बाद जल्दी मरे। सांझ जबन चीखत बाय की नकचुन कह दे रस।
0: तू बड़ा बेरहम है सारे, ये ठीक नहीं है माधव।
1: वो बात

0: हमसे ओकर हालत नहीं देखल जात बा। बिन पानी के मछली मती नहीं छटपटात है उनकी, का बताई जनात बा। अलविया भुनाए गए
1: तू जा ओके देखा, देख अलविया दे हम छील ले।
0: तही जाए के देखावा ना, हम छील ले अलविया।
1: अरे सरऊ, जब हमार मेहरारू मरी रही तो 3 दिन 3 रात हम ओकरे पास से नहीं हटली। सारा गांव कहत रहा देख घिसुआ के परेम। अरे हमके देख के उ लजाई ना।
0: ई लावलिया खा लालिया। ए बाबू, हम सोचा थे कौन लड़का बच्चा भइल तक का हुई, न सोठ न गुड़ न घी, कैसे कुल इंतजाम हुई हो।
1: अरे तू काहे चिंता कर थे रे, जब कपारे पे पड़ी तब कुल हो जाए।
0: पीला अलुया, ये अलुया अंगार मतिन जिविया जला दे था।
1: चला पेट तो भर दिए तो हाँ।
0: ए बाबू, का सोचत हुआ।
1: अरे वो भोज नहीं भुलात रे।
0: कबन हो?
1: नहीं भुला।
0: कब खिला?
1: ठाकुर साहब की बारात में। अरे 20 बरस पहले हुआ रहा, हम गई रहली। ऐसन खाना दोबारा नहीं मिलन। अरे लड़की वाले सबका भर पेट पूरी खिलाएं, और वो असली घी के।
0: असली घी के?
1: चटनी रायता किसिम किसिम के तरकारी दही चटनी और पापड़ो। अरे का ना रहिल। और माधव कौनो रोक टोक नहीं।
0: रोक टोक नहीं,
1: जितना मन करे उतना खाओ, जितना जी भरे उतना खाओ।
0: ऐसन तब तक चाप के खेल ये लोग
1: आओ नहीं तो का। अरे माधव, आदमी इतना खैले इतना खैले कि केहू के पेट में पानी पिए के जगह नहीं। अरे भैया, हम तो पतरी में उलरी गई, लेट गई कि ना भैया, अब ला डालो फूली फूली कचौरी डाल जाए फेंक जाए। अरे आखिर में पानो इलायची मिली रही।
0: पान इलायची?
1: हाँ, पर पेट में जगह कहाँ रहिल। हम तक कैसे जाए के कथरी ओढ़ के सोई गए।
0: ना बाबू, ए बाबू, अब के हुआ ऐसन भोज काहे नहीं करावे
1: तेरे की। अब के खिलाई? अब ना आदमी के बस चले बचावे के फिक्र में लगा जहा थे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए।
0: दमड़ी ना जाए।
1: ब्याहे में ढेर जिन खर्चा करा, क्रियाक्रम में खर्चा करे से का मिली। यहाँ से वहाँ से बटोरा जा, सारी के बटोरा जा, खर्चा करे के नहीं। ए
0: हाँ,
1: बहुत बोलवाए, तनी पनिया दे हो।
0: पनिया ले? हाँ हाँ, इला
1: नलुआ खाए के।
0: बाबू, रात ढेर हो गई, अब सुतल नहीं।
1: और का ना पाला जाना पड़ा तो सुन। कथरिया उड़ाए दे रे, कथरिया उड़ाए दे, कथरिया।

0: अत्र आज बड़ा शांति वाह जना था सुतल है। आज मजूरी में रजई का चली देखी रतिया के तो सुतल आराम कर ले रहा। ये मेहरारू ए बुधिया बुधिया सुतल है का रे। ए बुधिया ए उठ है जना था मर गई। आ ही राम ये तो मर गई ला। हाँ ये तो मर गई बाबू बाबू हो।
1: हाय
0: अरे बाबू उठा हो बाबू बुधिया मर गई।
1: कहा
0: हाँ
1: रेखा कहा थे?
0: हाँ ये कहाँ हुई बाबू।
1: चल चल देखिए कहा
0: अरे सच कहते बुधिया मर गई ला।
2: अरे हमारी बुधिया मर गई।
3: जनात बा कुछ हो गई?
4: का हो गई है रे?
5: अरे वो माधा हा ना ओकर मेहरारू मर गई बा।
3: अरे वो तो उम्मीद से रही बेचारी हो।
6: बड़ी अभागिन रही कौनो सुख नहीं बहुला सो। भगवान ऐसा जिंदगी के हो के ना दे। राम राम
2: काकी
6: आज बाज हो
2: बाबू ये
3: छुपाए जा। और ये विपत तू ही का तो झेले का पड़ी।
4: जे आयल बा ओके जेही के बाय केहू पहरे चला जात बा तो केहू बाद मा।
3: सबर करा बचवा सबर करा हिम्मत करा बचवा चला उठा जोर जुगाड़ करी।
2: काकी काकी हो ए काकी तू ही जरा अब हम जावा दे कुल इंतजाम करा के लौटा। अब तो भैया जमींदार साहब के आसरा में। हाँ बाबू चलो वही चला जाए। चला चली
7: अरे अरे सरकार भाई बाबू अब तो आप ही के सहारा है।
2: हम गरीबन के आपे दाता है माली।
7: अरे हम तो बर्बाद हुए थे सरकार।
8: कहा है रे घिसुआ है रोहत कहा है? आजकल का तुम्हार दर्शन है दुर्लभ हो गया है।
7: नहीं हुजूर हम तो तुम्हार बुला भाई
2: तुम्हार बुला जी भाई सरकार।
8: हाँ काहे ना काहे ना यही से ना 5-6 महीना बाद तू नजर औले है। हाँ जनात बाय गांव में तो के रहेगा नहीं है।
7: नहीं सरकार नहीं हम बड़े विपदा में हैं।
8: हाँ का हो गया ला
7: ये माधो के मर बुधिया मर गई। चली गई
2: बड़ा तरह तरह के प्राण छोड़ना सरकार रतिया मर गई। चला दे भाई जब मैंने गुजार दे ली भाई तवा दारू जमीन कुछ हो सकत रहे कर ली और हमके दगा दे के चल गई ली मालिक चल गई बुधिया।
7: अरे मालिक अरे अब हम आप के आसरा है आपके सिवा वो के मिट्टी कौन पार लगाई मालिक।
2: अब मन के पास जो न कुछ रहे वो तक कुल दवा दारू में उठ गई। आप बड़ा दयालु बड़ा दानी है मालिक।
7: आपकी कृपा हो जाए मालिक तो के माटी उठ जाएगी।
8: ठीक है ढेर जिन बोल आलसी छो साले काम पड़त बाय तक कैसन खुशामत करत बाय। मिले 2 रुपया और जान छोड़।
7: अरे मालिक की जय हो
8: मालिक की जय
2: मालिक की साथ बनी
7: मालिक के बच्चे जी है।
8: ठीक से क्रिया कर्म कर दी है।
7: अच्छा मालिक
2: जो आगे वाले अच्छा हो जो
3: चोरी आला चोरी।
0: ए बाबू आज तो बड़ा दिल खोल के पैसा देने हैं लोग।
7: अरे जब जमींदार साहब दिए हैं तो बाकी लोग भी दिए।
0: कितना हो गई
4: अरे 5 रुपया हो गई।

0: 5 रुपया? लकड़ी तो हाँ
1: हाँ लकड़ी तो होएगा, बस एक हल्का से कफन और ले लिया जाए।
0: रात ना हो जाए बाबू।
1: अरे
0: ये देखिए कफन सस्ता भाई की मांग।
1: अरे दुनिया जीते जी जेका चीथड़ा ना ही नसीब हुआ, मरे के बाद ओका कफन चाहिए कफन।
0: दुनिया के चाले उल्टी बात।
1: ओ नहीं तो का
0: ए बाबू,
1: ये नियम है ऐसा है। एक काम करा तू दुकान पे देख। हाँ। वो दुकान पे देखी थी।
0: ठीक
1: है
0: जा थे।
1: हाँ जा। चल हम लोग ठेका पे बैठा जाए, कुछ खावा पिया जाए।
2: साजी
3: राम राम साजी,
2: एक बोतल हम
1: के, एक बोतल हम के। लाई लाई लाई
0: तलब तला मछली बा,
1: तला मछली दे दे भैया। ये आएगा ले ले ले, आएगी आएगी या या
2: हमारा।
1: अरे बहुत पुण्य आत्मा रही माधव,
2: मैं
1: पहले पी। देखा होगा देखा, बहुत सार हंसा थे हम लोग पिए थे।

0: कहा था देदा, 2 दिन से अन्न का एक्का दाना पेट में नागा।
1: हे माधव, अरे देखा तो हम से कौनो मांगत है रे?
2: मांगत है?
1: ले ले, खूब खा
2: खूब खा खा
1: खूब खा, आशीर्वाद दे।
2: बारे
1: बारी समाई के
2: हमाऊ के यह दिन दिखा देला तू। वाह
1: बहुत गाड़ी कमाई के, ले खा खूब खा।
2: वो बैकुंठ में जाए बाबू, वो बैकुंठ में जाए।
1: हाँ जाए जाए,
2: वो वहाँ की रानी वानी।
1: अरे वो तो
2: हवाल में रारू, हवाल में रारू, पान प्यारी बैकुंठ की माँ।
1: ये जोन हवाल पतोहु पहुँचाए थे भाई,
2: हमार मेरा
1: कमाई के है, खा खूब खा। अरे दोसो बरस की उमरिया दूजे

0: सारी कमाई के
1: हमाऊ के यह दिन दिखा देला तू। वाह
0: बहुत गाड़ी कमाई के ले, खा खूब खा।
1: वो बैकुंठ में जाए बाबू, वो बैकुंठ में जाए।
0: हाँ जाए जाए,
1: वो वहाँ की रानी वानी।
0: अरे वो तो
1: हवाल में रारू, हवाल में रारू, पान प्यारी बैकुंठ की माँ।
0: ये जोन हवाल पतो पहुँचाए थे भाई,
1: हमार मेरा
0: कमाई के है, खा खूब खा। अरे दोस्तों की उमरिया दूजे लागी है।

छूटले बाप भाई हो, जैसे खाली हाथ आईली वैसे खाली हाथ गईली।

अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर उन्हीं की लिखी कहानी कफन का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतर करते मंजुल किशोर वर्मा और सुनीता सिंह। भाग लेने वाले कलाकार मंजुल किशोर वर्मा, ऋतिक दास, दीपेंद्र सिंह, अंजलि श्रीवास्तव और सुनीता सिंह। प्रस्तुति मंजुल किशोर वर्मा की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित प्रेम कुमार मलिक का ख्याल गायन, राग है पूरिया कल्याण। विलंबित रचना एक ताल में है, बोल हैं आज सुबना। द्रुत रचना तीन ताल में है, बोल हैं मोरे घर आए। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं अनूप बैनर्जी। तो आइए सुनते हैं पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग पूरिया कल्याण में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग पुरिया कल्याण में ख्याल। तबले पर संगत कर रहे थे श्री अनूप बैनर्जी। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडार प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और

0: अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सारलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहा को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation Talks for the 13th Five-Year Plan of Bhutan. During the fifth plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees.